100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की नवी तिथि तदनुसार दिनांक

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम पुष्पांजलि से। एक दंताय शुद्ध गाय सुमुखाय नमो नमः, प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ती विनाशिने। हम माँ पार्वती के पुत्र जिनके एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्त जनों के रक्षक और प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप गणपति को बारंबार प्रणाम है।

मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो मन की तरह तेज वायु के समान वेगमान इंद्रियों को जीतने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पवन पुत्र और श्री राम के दूत हैं, ऐसे बाहुबली हनुमान जी को नमन करते हैं।

मंगल मूर्ति हनुमान जी, आप बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। आपके कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है।

जिनका जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और करुणा का मार्ग दिखाता है, ऐसे मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक प्रभु श्री राम को हमारा नमन है।

हे महादेव, हाथ पैर वाणी मन या कर्म से जो भी भूल हुई हो, जाने अनजानी सभी गलतियों को क्षमा करें। हे करुणामय शंभू, आपको बारंबार प्रणाम है।

प्रेम की पराकाष्ठा, समर्पण की मूरत जो कृष्ण में समाई और स्वयं कृष्ण जिम में समा गए, ऐसी अनुपम राधा रानी को कोटि कोटि नमन। श्रोताओं, आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो। इन्हीं वचनों के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए विनय को।

आप सभी लिसनर्स का वेलकम इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में। आज है आषाढ़ मास की नवी तिथि, शक संवत 1948 यानी 30 जून सन 2026। तीस जून यानी महीने का आखिरी दिन, कभी कभी आखिरी पड़ाव हमें ये सोचने का मौका देता है कि हमने क्या पाया, क्या सीखा और आगे क्या बेहतर करना है। तो आइए इस खास सुबह को एक नई शुरुआत का एहसास बनाते हैं। मैं हूं आपकी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा और अगले एक घंटे तक आपका साथ रहेगा गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में, जहां होंगी लेटेस्ट अपडेट, इन्फॉर्मेशन और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जी हाँ, कुछ ऐसी है आज की ये खूबसूरत मॉर्निंग। वेल, आज की इस मॉर्निंग को और भी खास बनाने के लिए हमने आपके लिए तैयार किया जानकारियों और मनोरंजन का शानदार संगम। आइए जानते हैं हमारी म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी 102.2 FM से कौन कौन से प्रोग्राम्स आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं।

पुरानी फिल्मी महफिल सजेगी। 8:30 पर प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। आज प्रोग्राम रसबहार में बातें होंगी खास वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर, कि कैसे सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी, रिश्तों, शिक्षा और काम करने के तरीकों को बदला, क्यों है ये डे खास, और साथ होंगे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ठीक 9:00। हर रोज 9:45 पर विविधा लेकर आता है एक नया रंग, और आज है रंग राग रंग प्रोग्राम का। और जिस

प्रोग्राम का आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, उसे लेकर आएंगे हम ठीक 11 बजे। बहुत सारी जानकारियाँ, कुछ खास दिन, कोई मोटिवेशनल स्टोरी और रेसिपी, और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास। जानने के लिए जुड़ जाइएगा हमसे और भेजिएगा हमें अपने सुझाव हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और सबसे खास बात, कौन है आज हमारे साथ? तो आज है मेरी हमनवा आरजे वंदना। प्रोग्राम हमनवा सुनिएगा ठीक 11 बजे। दिन में 3 बजे म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिक आर एंजॉय करेंगे आप। आपकी ईमेल्स के साथ तैयार रहेंगे हम आपके पसंदीदा गीतों को आप तक पहुंचाने के लिए। प्रोग्राम आपकी पसंद शाम 4 बजे। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम जिन्हें आप एंजॉय करेंगे रेनबो कानपुर की फ्रिक्वेंसी 102.2 FM पर। फिलहाल अभी है आप मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ। और इसे और खास बनाने आ रहा है हमारा ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

कल वक्त के साथ है, हम हैं और हमारे साथ है मॉर्निंग मंत्रा और देखते हैं क्या कहता है आज हमारा ये मॉर्निंग मंत्रा हमसे। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था, विश्वास वो पंछी है जो अंधेरे में भी प्रकाश का आभास होने पर गाने लगता है। दोस्तों, इस एक पंक्ति में जीवन का बहुत बड़ा एक संदेश छिपा है। इसका मतलब है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर उम्मीद और विश्वास जिंदा है तो हम आगे बढ़ने की ताकत कभी नहीं खोते। जैसे पंक्षी सूरज निकलने से पहले ही चहचहाना शुरू कर देता है, वैसे ही हमें भी सफलता मिलने का इंतजार न करके विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। और देखिए ना, हर नई सुबह हमें यही याद दिलाती है कि रात कितनी भी लंबी रही हो, इसके बाद सवेरा जरूर आता है।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर।
1: मेल मिलाप।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप। 7:23 हो चले हैं और गुड मॉर्निंग कानपुर में। इस वक्त आप सुन रहे हैं आवाज अपनी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा की। और इस प्रोग्राम में चलिए रुक करते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में जाते हैं, जहां हर पल कुछ नया कहता है, कुछ नया सामने आता है। जानते हैं सोशल मीडिया पर आज किन संदेशों और ट्वीट्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो सबसे पहले ये संदेश हमारे देश के माननीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सभी देशवासियों के लिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए हैं। अगला संदेश आप तक हम पहुंचाते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण इसे सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक और अपडेट आई है रेल मंत्रालय से। जी हां, भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में गुजरात के प्रतापनगर में रेलवे स्टेशन का पुनर्विकसित स्वरूप अब आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हो चुका है। जी हां, आधुनिकता और स्थानीय विरासत का सुंदर संगम इस स्टेशन की पहचान बन रहा है और हमारे इस फ्रिक्वेंसी की पहचान हमारे प्रोग्राम और इन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को हम तक यानी आप तक पहुंचा कर है। तो ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ, जहां इस वक्त प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग कानपुर।

और आप सुनिए अपने दिल की आवाज, फिलहाल सुन रहे हैं आप मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर। और अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको कहेगा वेक अप, तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। अलसाई आंखों को खोल दीजिए, खूबसूरत नजारा आपकी बालकनी या विंडो से, और सुनिए हमारा शो गुड मॉर्निंग कानपुर। और चलिए जानते हैं ये खूबसूरत दिन 30 जून क्या कह रहा है, कुछ खास क्या है इतिहास के पन्नों में छुपा। जून 1855 में झारखंड के भोगनाडीह में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई, और इसी के उपलक्ष में भारत में हर साल आदिवासी समाज द्वारा हूल दिवस मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना क्रांतिकारी शोध पत्र ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज 30 जून 1905 को प्रकाशित किया, जिसने भौतिकी की दुनिया में थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी यानी विशेष सापेक्षता का सिद्धांत इसकी नींव रखी। और मानव इतिहास की सबसे बड़ी आकाशीय घटना, जिसे साइबेरिया के ऊपर आसमान में एक विशाल उल्कापिंड या धूमकेतु के विस्फोट से करीब 2150 वर्ग किलोमीटर के जंगल नष्ट हो गए, जिसकी याद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे मनाया जाता है। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में एक गॉन विद द विंड का प्रकाशन आज के दिन यानी 30 जून 1936 को हुआ, और दर्ज हो गया ये नाम इतिहास के पन्नों में। तो इन ऐतिहासिक पन्नों को पलटने के बाद वापस आते हैं हमारे इस शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ, और चलते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। साथ 7:30 हो चले हैं, तो हमारे जो लिसनर्स हमसे हुए हैं अभी भी कनेक्ट, उन्हें हम बता दें प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, आरजे पूर्णिमा है आज आपके साथ।

जी हाँ, सुनिए अपने दिल की आवाज। फिलहाल सुन रहे हैं आप हमारा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर, जहाँ हम पहुँचाते हैं आप तक लेटेस्ट अपडेट द सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम चैनल। जी हाँ, और अब हम जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में खास आज। तो सबसे पहले खास अपडेट आप सभी के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा सफल रहा। इस दौरान भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग समेत 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही भारत ने सेशल्स के विकास के लिए क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में उठा रहा है महत्वपूर्ण कदम। फिलहाल यहां आपके लिए इस पल को स्पेशल बनाने हम ला रहे हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल ट्रैक। एंजॉय कीजिए 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर।

0: Beautiful song with beautiful lyrics. You all have enjoyed only on Kanpur ki musical heartbeat 102.2 FM Rainbow Kanpur, जहाँ इस समय enjoy कर रहे हैं आप program Good Morning Kanpur.
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं. ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं. 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है. इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है. अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं. एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in. सूचना समाप्त हुई.
2: Hi, this is Udit Nagar. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और चलिए जानते हैं हमारे सिटी कानपुर की क्या है कुछ खास अपडेट। तो रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने 6,557 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और 29 जुलाई तक ये जारी रहेंगे। और अगर आपकी बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत है, बिल, मोबाइल नंबर अपडेट या फिर स्मार्ट मीटर समेत कोई भी ऐसी परेशानी है जो केस्को से संबंधित है, तो रिलैक्स हो जाने का है टाइम, क्योंकि नौबस्ता में आज लग रहा है केस्को का मेगा कैंप। ये सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कितनी इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सो गाइज, जो भी ज़रूरी काम है ना, जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि मरम्मत के काम के चलते कई इलाकों की बिजली रहने वाली है गुल। जी हाँ, और वो कौन से इलाके हैं ये हम ज़रूर आप तक पहुँचा देते हैं वो नाम, ताकि कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, वो इलाके हैं पनकी रोड, न्यू शिवली रोड, लाल मंगला, काजीखेड़ा, परदेवपुरवा, सुभाष रोड, किबई नगर और सेवा आश्रम। सो गेट रेडी गाइज, बी स्मार्ट एंड डू योर वर्क स्मार्टली, और कनेक्ट रहिए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ।

0: जी हाँ, इस सुबह को बना रहा है खास हमारा और आपका साथ, और साथ हमारे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर का। तो कनेक्ट रहिए इस फ्रिक्वेंसी के साथ।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
0: कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। जी हाँ, और अब वक्त अपने वाइंड अप मोड की ओर धीमे धीमे चल रहा है आगे, और हम भी जानते हैं कि क्या है खास हलचल खेल जगत में। भारतीय

महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और एशिया की शीर्ष टीम रहने के आधार पर भारत ने ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली है। और यहाँ अब एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक कर रहे हैं आपका इंतजार, सो ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ।

मौसम का हाल। जी हाँ, क्योंकि इसके हाल से मिलानी है हमको अपनी चाल। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 68% और हवा की रफ्तार रहने वाली है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, जितने रंग जिंदगी के इस मौसम में है ना, उतनी ही रंग बिरंगी है ये दुनिया। देखिए ना, जहां कल अभी हमने इतनी गर्मी को महसूस किया, वहां आज सुबह से ही इन बारिश की फुहारों ने हम सबके मन को भिगो दिया। तो चलना है साथ, बढ़ना है आगे और थाम के रखना है हमारे इस फ्रिक्वेंसी का हाथ। माय डियर लिसनर्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग कानपुर। और बस पूर्णिमा को दीजिए इजाजत, इस प्रोग्राम से ले चलूंगी आपको हमारे दिल्ली केंद्र, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।

0: राजकुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर

0: माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
4: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का।

0: केस संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुख पृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य

102.2 एफएम रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल के साथ। अगले कुछ पलों तक सदाबहार नगमों की खुशबू और सुनहरे दौर की यादों को लेकर हम हैं आपके साथ। करते हैं इस गीत से इस महफिल का आगाज लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों के साथ, जहां आनंद बख्शी के बोलों पर धुन सजाई आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम बेताब।

एक बार फिर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, जिसे इस गीत को लिखा SH बिहारी ने और संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और अब एक और खूबसूरत नगमा हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस महफिल से। फिल्म का नाम एक दूजे के लिए, जिसे गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन संवारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और सुरों में पिरोया SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

एक और गीत सुरों की पुरानी महफिल से, त्रिशूल फिल्म का लता मंगेशकर, यशोदास और किशोर कुमार की आवाजों में। त्रिशूल फिल्म के इस गीत के बोल लिखे साहिल लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया खयाम ने।

8:54 और इस वक्त में बस गुंजाइश एक और नगमे की, चलते चलते एक और खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचाते हैं हम कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत दिया नदीम श्रवण ने। इसी के साथ पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से और बने रहिए फिर रेनबो कानपुर के साथ।

हमारे इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ झूम रहे होंगे आप। 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर शुरू हो चुका है म्यूजिकल प्रोग्राम रस बहार, और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं आरजी पूर्णिमा हूँ आपके साथ। वेल, ये मॉर्निंग तो खूबसूरत है ही, जहाँ बारिश की फुहारों ने हम सबके मन को भिगोया है। और आज ये खास दिन जहाँ सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, आज सोशल मीडिया से हम सब घिरे हैं। उसकी शुरुआत 30 जून 2010 को डिजिटल समाचार साइट मैशवेल ने की, और आज ये कनेक्टिविटी और हमारी सोसाइटी को एक साथ लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। That's why आज का ये दिन दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ने और डिजिटल क्रांति का जश्न मनाने का है। और हम भी हैं आपके साथ होने इस जश्न में शामिल, स्टूडियो से इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

दिल धड़कने दो। इस मूवी का ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया आपने हमारे इस प्रोग्राम रस बहार में। फिलहाल दिल की धड़कनों से मिला रहा है ताल से ताल हमारा ये म्यूजिकल हार्ट बीट। जी हाँ, 102.2 जहाँ एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम रस बहार। सोचिए ना, एक टाइम था जब हालचाल जानने के लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी, फिर टेलीफोन आए, और आज एक छोटी सी पोस्ट, एक तस्वीर या एक वीडियो कॉल कुछ ही मिनटों में

दुनिया भर में पहुंच जाती है। तो आज ये जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि उस बदलाव का जश्न है जिसने हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। जी हाँ, दुनिया को जोड़ा और नई संभावनाओं को रास्ते, यानी जो इनकी जो अपॉर्चुनिटीज थी उनके रास्ते भी खोल दिए। और बस 24 आवर्स हम इस सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं, कभी भी कहीं भी। सो माय डियर लिसनर्स, अगर आप घर पर हैं तो अपने इस म्यूजिक यानी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम को बस थोड़ा सा हाई रखिए कि आपके कानों तक हमारे इस प्रोग्राम की जो आवाजें हैं ना वो पहुंच सके। और टाइम 9:13 जहाँ हमारे कुछ लिसनर्स ऑन द वे होंगे या फिर ऑफिस निकलने की तैयारी में होंगे, तो बस कनेक्ट रहिए रेनबो कंट्री की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ और इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

0: जी हाँ, तो बिल्कुल कनेक्ट रहिए रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ, जहां सुन रहे हैं प्रोग्राम रसबहार।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड।

0: मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपनी फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat. तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम। की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप और सुन रहे प्रोग्राम रस बहार, और इन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं आप इस शो में जहां 7 बातें हैं हमारी सोशल मीडिया की। देखिए ना, आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी ना किसी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से जुड़ा ना हो। सुबह आंख खुलते ही खुल जाती है नजरें मोबाइल स्क्रीन पर, और रात को सोने से पहले भी तो आखिरी बार हम सोशल मीडिया जरूर देखते हैं। सोशल मीडिया ने हमें सिर्फ जोड़ने का काम नहीं किया बल्कि दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा करीब भी ला दिया है। आज अगर किसी गांव में कोई अनोखी प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो सोशल मीडिया उसे सीधे देश और दुनिया तक पहुंचा देता है। और अगर कहीं कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी आवाज भी ये सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। जी हाँ, फिलहाल तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी इन बातों के साथ एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक। सो रेडी रहिए और ट्यून इन रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ।

आज हमारे इस प्रोग्राम में बात उसकी जिसके बिना अधूरे हैं हम। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा मंच बन चुका है। आज लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना कारोबार चला रहे हैं। घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प, कुकिंग, शिक्षा, संगीत, कला और पत्रकारिता के हर क्षेत्र में मीडिया ने नए रास्ते खोले हैं और दी है नई पहचान। आज की यूथ कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटर के रूप में अपना करियर बना रहे हैं। यानी सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि रोजगार और पहचान का एक बढ़िया माध्यम भी है। और हमारे और आपके बीच भी कुछ ऐसा ही बॉन्ड क्रिएट करता है, ये रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल प्रोग्राम रसबहार।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार। और दोस्तों जितने करीब ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है ना, उतने ही करीब हैं हम सोशल मीडिया के। आज अगर देश दुनिया में देखे ना, कुछ भी होता है तो उसकी सबसे पहले खबर हम तक आती है और हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन गलत जानकारी, अफवाहें, नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। जी हाँ, तो जरूरी है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता, यानी कि क्या सच ये है या नहीं, जरूर चेक कर लें। ऑनलाइन बिहेवियर भी शालीनता के साथ साथ सोशल मीडिया को पॉजिटिव कन्वर्सेशन का जरिया बनाएं। बिकॉज डिजिटल दुनिया में भी हमारी जिम्मेदारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रियल लाइफ में।

ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय कर रहे हैं आप ओनली ऑन कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट। और हमारा एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है कि क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। बिकॉज हम कई बार घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ हैं हम। That's why जरूरी है डिजिटल वर्ल्ड और रियल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने का, क्योंकि लाइक और फॉलोवर से ज्यादा जरूरी है अपने लोग, अपनी सेहत और अपने रिश्ते। And now we need a musical break.

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और 9:45 का वक्त, जहां हर रोज विविधा लेकर आता है एक नया रंग, और आज रंग है राग रंग प्रोग्राम का। आइए आपको सुनवाते हैं उस्ताद इमरत खां की आवाज में राग सरस्वती।

प्रोग्राम राग रंग में आइए सुनते हैं शोभा गोटू की आवाज में ये दादरा, और इसी के साथ पूर्णिमा को दीजिए इजाजत राग रंग प्रोग्राम से। मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे हम नवा प्रोग्राम में, आज मेरी हम नवा आरजे वंदना के साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के आज सुबह राम मंदिर दर्शन के मद्देनजर अयोध्या शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर में कथित तौर पर धन के गबन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा शामिल है। दूसरी ओर जिला न्यायालय ने कल चंदे

के गबन के मामले में सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वे जेल में ही रहेंगे क्योंकि पुलिस ने हिरासत में लेने की अर्जी नहीं दी थी। प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के समय में संशोधन किया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अब कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जाने का आदेश जारी किया है। वहीं पीलीभीत से भी छात्रों के लिए स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा,
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।

10:05 हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स अब चलेगा ये सिलसिला आपके साथ, मतलब आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और ये तो भाई हमारी प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग है, जहां हम पुराने पुराने गाने थोड़े से जो जिन पे हल्की सी धूल लग जाती है ना, उनको निकालते हैं कि कहीं हमारी मेमोरी में वो कहीं रच बस गए हों, हल्के से धूमिल पड़ गए हों, तो धूल साफ की जाए, उन्हें याद किया जाए, क्योंकि जहन में तो वो हमेशा ही जिंदा रहते हैं ना।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आयुषी के साथ सफर जारी है, सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप 100.7 FM पर। और ये जो सफर है ना, मन कर रहा है खत्म ही ना हो, जाने कहाँ खो गया है।

10:53 और सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला जारी है आपके साथ। मैं हूँ आयुषी। और भाई देखिए, कोई भी कार्यक्रम जब अपने खत्म होने वाला होता है, वाइंड अप की ओर बढ़ रहा होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये वाला कार्यक्रम जल्दी से खत्म हो रहा है। लेकिन अच्छी बात तो यही है ना कि वैरायटी ही वैरायटी है आपके पास, और ये खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। और देखिए ना कैसे समय बीता जा रहा है। सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी लेगी इजाजत, ताकि आपका फेवरेट कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे लेकर उस पार पहुंचूं और आपसे और भी सारी बातें करूं, गाने सुनाऊं और आपके प्यारे प्यारे संदेश पढ़ूं। तो फिलहाल इस ट्रैक के साथ मैं आयुषी आपको छोड़ती हूं, ताकि आप मजा ले सके इस ट्रैक का।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, जहां इस एक घंटे हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत कुछ खास, वो भी खूबसूरत गानों के साथ। और आज इस प्रोग्राम में मेरे यानी मेरी हमनवा है ये आप।

0: या आप खुद गेस कीजिएगा उनकी आवाज सुन करके।
1: दोस्तों आप सभी को वंदना का प्यार भरा नमस्कार। पूर्णिमा शायद मेरा नाम भूल गई थी, आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिले तो शायद मुझे देखकर इतनी खुश हो गई कि आज मेरा नाम ही भूल गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर पूर्णिमा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मौसम आज थोड़ा अच्छा और खुशनुमा हो गया है। थोड़ी गर्मी कम हुई है और टेम्परेचर कुछ कम लग रहा है। तो फिलहाल इस प्यारे से मौसम में हम लेकर हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम हमनवा। तो एक घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ, करेंगे ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गाने।
0: बिल्कुल, और बहुत ही लाजमी है वंदना कि जब रेनबो कानपुर में तरह तरह के प्रोग्राम्स, दिल छू लेने वाले सॉन्ग्स हम उन तक पहुँचाते हैं तो ये जो सिलसिला शुरू हो जाता है ना, वो शुरू तो वैसे 7 बजे होता है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से, लेकिन अब ये जो ये प्रोग्राम लेकर हम आते हैं तो हमारे लिसनर्स उतने ही शिद्दत के साथ हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और इसका जवाब हमें मिलता है उनकी ईमेल्स में, है ना वंदना?
1: बिल्कुल। तो सबसे पहले पूर्णिमा बता देते हैं कि हम आज क्या क्या बातें करने वाले हैं, तो आज के खास दिन पर बताइए, आप शुरू करिए, हम क्या क्या बातें करेंगे, क्या बताएंगे?
0: सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टेरॉयड डे पर, साथ ही बहुत कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस की।
1: जी हाँ, और दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करेंगे। साथ ही आज के बदलते दौर में बच्चों का दोस्त बनना क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे, साथ ही जानेंगे आपकी भी राय।
0: तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ और कीजिए हमें मेल। हमारी मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com और हो जाइए तैयार बिल्कुल हमारे साथ। फिलहाल यहाँ हम स्टूडियो से भी आपको ऐसी ही रिमझिम बारिश में भिगोने वाले हैं।

0: तो वरना हम सब ने सुने इस बरसात की धुन जो रिमझिम कहीं ना कहीं बरस रही है ना।
1: और बहुत अच्छा लग रहा है आज।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और आज की तारीख बहुत खास है दोस्तों, 30 जून और आज विश्व भर में हर लोकतांत्रिक राष्ट्र में सेलिब्रेट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस।
1: अच्छा पूर्णिमा, एक बात मुझे लगती है कि जब भी लोकतंत्र की बात होती है संसद का नाम सबसे पहले आता है ना, लेकिन क्या हम सब ने कभी सोचा है कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है?
0: बिल्कुल, वरना संसद ही तो वो मंच है जहां कानून बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं और वो भी हमारे ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा।
1: जी हाँ,
0: और यहीं पर जनता की सभी समस्याएं उठाई जाती हैं, चर्चा होती हैं और इसीलिए तो ये संसद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।
1: हाँ पूर्णिमा, और आज संसदीयता दिवस मनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम सब नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदों की भूमिका के प्रति जागरूक किया जा सके।
0: और यहाँ ये भी बता दें, इसके लिए ना 30 जून की तारीख इसलिए भी चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की स्थापना हुई और यही दुनिया का सबसे पुराना अंतर संसदीय संगठन है जो विभिन्न देशों के सांसदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
1: अब बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने एकदम सही बात कही। अगर भारत की बात करें तो हमारी संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी है और लोकसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं तो सभी को पता है, और वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और दोनों ही सदन बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
0: बिल्कुल इम्पोर्टेंट है वरना, अरे यही तो नए कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, देश का बजट पारित किया जाता है, कानूनों में संशोधन किया जाता है, जनता की समस्याओं पर सवाल होते हैं, चर्चा होती है, बहस होती है, यहाँ सरकार की बड़ी जो है वो जवाबदेही भी होती है।
1: हाँ पूर्णिमा, और लोकतंत्र एक बहुत बड़ी प्रणाली है। दरअसल लोकतंत्र की मजबूती इसी बात पर डिपेंड करती है कि संसद में देश हित की बातों पर खुलकर चर्चा हो, सबकी बात रखी जाए और सबकी बात सुनी जाए, फिर देश और जनहित में निर्णय लिए जाएं। अच्छा पूर्णिमा, बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है?
0: बिल्कुल, अपना भारत है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिपब्लिक। और हाँ, जो है भारतीय संसद भवन विश्व के प्रमुख संसद भवनों में से एक है।
1: अच्छा पूर्णिमा, ये विषय तो ऐसा है ना कि जिस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन अभी एक बात बताओ कि लोकतंत्र मजबूत हो इसकी जिम्मेदारी क्या केवल सांसदों की होती है?
0: नहीं, ये हर नागरिक का, युवाओं का, मतलब सभी का कर्तव्य है और मतदान जो है हमें सबको जरूर करना चाहिए। संविधान का पूर्ण सम्मान करना, सही जानकारियां रखना और सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूक रहना है। और वरना देखो ना, संसद में कभी कभी विशेष मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि मतभेद तो होते हैं लेकिन संवाद जारी रहते हैं और बेहतरीन निर्णय लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, और ये निर्णय जनहित में निकल कर आते हैं और यही लोकतंत्र की असली सुंदरता है। और पूर्णिमा, इसी विषय को लेकर हमसे जुड़ रही हैं 7th क्लास की एक स्टूडेंट, आइए सुनते हैं इनका क्या विचार है।
2: हेलो डियर लिसनर्स, मेरा नाम आर्या है, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट। नेशनल पार्लियामेंटिज्म डे पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस हम सभी जानते हैं 30 जून को मनाया जाता है, जिससे हम सभी दुनिया भर में मौजूद पार्लियामेंट्स की भूमिका और लोकतंत्रों को पावरफुल बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन के प्रति अवेयर हो सकें। संसद किसी भी देश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ कंट्री वेलफेयर और सिटीजन्स के वेलफेयर में लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं। लोकतंत्र जनता से, जनता का और जनता के लिए होता है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी होता है। आज का दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लोकतंत्र के महत्व को समझाता है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत करने के लिए केवल पार्लियामेंट जिम्मेदार ही नहीं होता, हम सभी आम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल सिविलियंस बने और अपने देश की प्रोग्रेस में हर पल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहें। थैंक यू।
1: तो देखो पूर्णिमा, एक छोटी सी 7th क्लास की बच्ची ने कितनी अच्छी हम लोगों को एक जागरूकता भरी बात बताई और इससे पता चल रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश तरक्की भी कर रहा है।
0: और अब हम आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ।

0: 102.2 की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं आप और इस वक्त आप हैं प्रोग्राम हम नमक के साथ। और दोस्तों देखिए ना, हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत लोगों को एस्टेरॉयड्स यानी शुद्ध ग्रहों के बारे में जागरूक करने और पृथ्वी को उनसे होने वाले जो खतरे हैं उनके प्रति सचेत करने के उद्देश्य से की गई थी। और साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे जो है घोषित किया। वरना
1: हाँ पूर्णिमा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस विचार को भी लेकर, और इस दिन का संबंध 1908 की तुंगुस्का घटना से है जब रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक विशाल क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड को हम कह सकते हैं, इसके विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था। इसे पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह घटनाओं में से एक माना जाता है
0: और इसीलिए तब से हम आज के दिन को इस रूप में मनाते हैं। और इस साल यानी 2026 की थीम है ग्रहों की सुरक्षा और क्षुद्र ग्रह टकराव से जुड़े खतरे, और इसका उद्देश्य वंदना यही है वैज्ञानिक अनुसंधान, क्षुद्र ग्रहों की निगरानी और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना ताकि भविष्य में किसी संभावित खतरे से पृथ्वी की रक्षा की जा सके।
1: बिल्कुल, और अंतरिक्ष की अनगिनत दुनिया में घूमते ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान केवल नई खोजों का नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की सुरक्षा का भी माध्यम है। तो आइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर विज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ाएं और अंतरिक्ष को समझने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, जहां आज विज्ञान और तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही जरूरत अंतरिक्ष में मौजूद संभावित जो खतरे हैं उनको समझने की भी है। क्षुद्र ग्रह लाखों वर्षों से हमारे सौर मंडल का हिस्सा है और वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर रखते हैं ताकि यदि भविष्य में कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़े तो समय रहते के खतरे को कम किया जा सके।
1: अब बिल्कुल पूर्णिमा, ये बहुत खतरे वाली बात है और इससे सुरक्षा हमारे वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, और इसीलिए आज का ये दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें बता रहा है कि अंतरिक्ष की जानकारी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए जरूरी है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान हमें तूफान और बारिश से बचा देता है, उसी तरह अंतरिक्ष की निगरानी भविष्य में किसी भी संभावित क्षुद्र ग्रह टकराव से पृथ्वी की सुरक्षा में मदद कर सकती है।
0: और बिल्कुल, साथ ही ये दिन है, ये जो दिवस है वो बच्चों और युवाओं में विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई खोजों के प्रति रुचि भी जगाता है। हो सकता है आने वाले समय में इसी पीढ़ी का कोई वैज्ञानिक पृथ्वी को किसी बड़े अंतरिक्षीय खतरे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
1: बिल्कुल, क्या बात कही है पूर्णिमा आपने। और ज्ञान ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, और अंतरिक्ष को समझना केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें विज्ञान से जुड़ने और भविष्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा और आज आपके साथ मैं हूं वंदना और मेरे साथ है मेरी हमनवा पूर्णिमा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी की। आज है पुण्यतिथि तो इन्हें श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं और इनकी बात कर रहे हैं। तो पूर्णिमा आप क्या बताएंगी?
1: बिल्कुल, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात विचारक और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: इनका जन्म 4 सितंबर सन 1825 को मुंबई में हुआ था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे और कांग्रेस के 3 अध्यक्ष बने और पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन की संसद का सदस्य चुना गया था।
1: दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी के माध्यम से बताया कि किस तरह ब्रिटिश शासन की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाया जा रहा है और उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने देशवासियों में आज़ादी की चेतना जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और पूर्णिमा, दादा भाई नौरोजी मानते थे कि स्वराज हमारा अधिकार है और देश की उन्नति शिक्षा समानता और आत्मनिर्भरता से ही संभव है। ये
1: बिल्कुल 30 जून यानी आज के दिन 1917 में उनका निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि हमें देशभक्ति, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देती है।
0: तो आइए दोस्तों दादा भाई नौरोजी के विचारों को हम नमन करें और एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।

0: वरना देखो ना, हर किसी को कहीं ना कहीं दोस्त की जरूरत हर पड़ाव पर पड़ती है ना।
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी भी कोई फ्रेंड होगी, हमारी भी कोई फ्रेंड है, जो और
1: यहाँ
0: जिनके
1: बैठी
0: बिना,
1: है मेरे सामने।
0: हाँ बिल्कुल। और कहीं ना जब दोस्त, और जब दोस्त यार सब साथ होते हैं ना, तो मौसम का मजा भी दोगुना हो जाता है, और जो बातें होती हैं उसका तो क्या ही कहना।
1: बिल्कुल, तो दोस्त की तलाश कहाँ से याद आ गई पूर्णिमा?
0: आ गई, क्योंकि बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि जब ऐसा मौसम है ना, और हमारे जब हम सबसे पहले ना कहीं याद अपने दोस्तों को ही करते हैं, और फोन कॉल मिलाते हैं कि अगर वो फ्री है तो हम कहीं ना कहीं
1: दोस्त,
0: मुलाकात हो
1: हाँ,
0: जाए, है
1: मुलाकात हो जाए। और दोस्त हर
0: ना।
1: उम्र में होते हैं। देखो, बच्चे भी अपने जो उम्र के लोगों को, अपने उम्र के बच्चों को देख के और हमेशा उनके साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, चाहे वो भले अनजान हो। कहीं भी
0: बिल्कुल।
1: देखो, अगर छोटे बच्चे एक उम्र के हैं तो वो अनजान ही भले हों, वो 2 मिनट में दोस्ती उनकी हो जाती है। और वही हम बड़ों के साथ होता है, तो दोस्ती की तलाश, तो ये बात एकदम आपने सही कही कि सबको रहती है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े हैं उनके अंदर तो थोड़ी बहुत सामाजिकता या फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे हमारे दोस्त हो तो
0: क्या ही
1: हमें
0: कहना।
1: लगता है शायद बड़ों से ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा उनका उनका दोस्त होना होता होगा।
0: बिल्कुल, और सबसे अच्छा आज के टाइम में इसीलिए बनना है कि हम बच्चों में जो सबसे पहले दोस्त की तलाश अगर उनकी है ना, तो वो पूरी हो जाए अपने पेरेंट्स के साथ ही,
1: हाँ,
0: है ना।
1: पेरेंट्स, ये भी एकदम सही बात कही आपने कि बच्चे अपने पेरेंट्स के भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: बचपन में हमारे बच्चे हमारा ही हाथ पकड़ कर चलना सीखते हैं, लेकिन बड़े होने पर उन्हें हमारा भरोसा पकड़ना चाहिए, मतलब हमें उनका और
0: बिल्कुल
1: उन्हें हमारा भरोसा होना चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत दोस्त होने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और भरोसा तभी बनता है पूर्णिमा, जब हम सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि दोस्त भी बन जाएं। तो आज के समय में बच्चों के पास, क्योंकि मोबाइल है, देखिए इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जहाँ वो दिन भर का अपना एक बहुत लंबा टाइम मतलब व्यतीत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब तो खैर स्कूल खुल गए, इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी छुट्टियों में हम सब ने देखा होगा कि बच्चे बहुत बिजी रहते हैं। टीवी बंद हुआ तो उनको मोबाइल लेना है,
0: बिल्कुल
1: मोबाइल अगर बंद हुआ तो उन्हें खेलना है, और फिर खेल से छूटे तो उन्हें फिर मोबाइल ही चाहिए या तो, है ना। तो अब तो स्कूल खुल गए, ये चीज़ें थोड़ी सी संभव नहीं हो पाएंगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे इन सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं तो उनके पास बात करने के लिए कोई अपना नहीं होता। वो सोच रहे होते हैं कि कोई बात हमारे मन की सुन ले, और ऐसे में अगर घर का माहौल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जहाँ बच्चा अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे वो
0: बिल्कुल
1: ज़्यादा लोनली फील करता है। लेकिन जहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि बच्चा बिना डरे एकदम अपनी बात कह सके, तो उसकी कई मुश्किलें हल हो जाती हैं।
0: बिल्कुल हल हो जाती है वरना, और बच्चे के मन में ना एक पॉजिटिवनेस हमेशा रहती है कि कुछ भी गलती हो गई ना, अगर हम बाहर भी कुछ हमसे गलती हो गई है, या घर में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई बिहेव किसी के साथ कुछ हो गया, तो हम अगर उनमें भरोसा होता है कि हम अगर अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें बताएंगे, उनसे शेयर करेंगे, तो वो मतलब हमें डांटेंगे नहीं, बल्कि उसके यहाँ पे उन्हें समझा सकते हैं उन्हें कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं ऐसे कर सकते हैं, या इन चीज़ों को ऐसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग लाना बच्चों के मन में आज बहुत जरूरी है कि हम कुछ समय अपने बच्चों के साथ जरूर इस तरह का फ्री बिल्कुल होकर के उन्हें समझाएं और बात करें
1: और इसी के ऊपर एक एक छोटी सी मैं
0: कहानी।
1: आपको स्टोरी

0: बताओ कि एक
1: बिल्कुल
0: ना 14 साल का बच्चा था, वो स्कूल से रोज बहुत चुपचाप चुपचाप घर आने लगा। पहले बहुत बातें करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो अपने कमरे में चला जाया करता और एकदम शांति से बैठता और पता नहीं क्या सोचता रहता था। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इस उम्र उम्र ही इनकी ऐसी है, टीनेज है, तो कई बार ऐसा होता है, चलो ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन एक दिन उसके पापा ने डांटने के बजाय उसको बोला कि चलो आज चाय मैं बनाता हूँ, तुम बस मेरे साथ बैठो। और बातों बातों में बेटे से उन्होंने मतलब बहुत
1: बेटे ने अपनी बात
0: दोस्ती
1: कही
0: से धीरे
1: होगी।
0: धीरे से उन्होंने खंगालना शुरू किया उनके पिताजी ने। तो बच्चे ने अपने मन की बात कहना शुरू कर दिया। और हो ये रहा था कि स्कूल में कुछ बच्चे उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे और बहुत परेशान हो रहा था वो बच्चा। तो उसने अपने पापा से जब पूरी बात कह ली तो वो अपने पापा से लिपट कर खूब रोया और उसने पूरी बात कही, अपने दिल की पूरी, जो भारीपन था
1: बिल्कुल,
0: पूरा भारीपन उसका निकल
1: मतलब
0: गया।
1: उसको
0: और
1: सांत्वना भी मिली और
0: बच्चे ने अपने
1: सपोर्ट भी
0: दर्द को
1: मिला।
0: पूरा जब कह लिया तो उसका चेहरा उसी क्षण के बाद एकदम खिला खिला सा रहने लगा। और फिर उसके पापा से उसको अच्छी जो भी मतलब जानकारी थी उसमें वो मिली कि हाँ हमको ऐसा ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए।
1: यानी मतलब इस छोटी सी कहानी से ना तुम्हारी ये मैसेज हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचा कि आज के समय में बच्चों के मन की बात जानना बहुत जरूरी है। अगर उनका बिहेवियर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कोई वजह है, कि स्कूल की है या बाहर की या घर की ही अगर कोई है, तो ये तभी हो सकता है जब हम अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें।
0: देखो पूर्णिमा, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पर इतना प्रेशर नहीं था पढ़ाई का, और ना ही हमारे पर उतना सामाजिक प्रेशर था कि हमें इतने परसेंटेज लाने ही हैं वरना हमारी कहीं हंसी बनेगी, कहीं हमारा प्रेस्टीज इशू आएगा कि अरे
1: बिल्कुल
0: हमारे 92 से कम रह गए परसेंटेज। आजकल तो बच्चों को यही सबसे बड़ा एक प्रेशर है, जो मतलब
1: बिल्कुल
0: ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर उनके दिमाग में घूमते रहता है कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। और कभी कभी उसमें से अगर उस लंबी उस ऊंची सी अपेक्षा से कहीं थोड़ा सा कम रह जाता है तो बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब
1: इवन
0: अपराध बोध होता है कि मैंने ऐसा
1: बिल्कुल
0: मैसेज मुझे कैसे हो गया।
1: वो इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने उस रिजल्ट से, या बात फिर कटना शुरू कर देते हैं, बात कम करना शुरू कर देते हैं। कई बार इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनकी जिंदगी के साथ भी भुगतना पड़ता है
0: और कई
1: ना।
0: बच्चे जो जैसे आपने बताया कि कई बच्चे चुप रहने लगते हैं, तो कई बच्चे इसके विरुद्ध एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, किसी की बात नहीं सुनना, फिर अपने मन की करना, और उसमें उनका जो उनका रास्ता है वो और गलत हो जाए, ऐसी बहुत संभावना बनी रहती है।
1: बिल्कुल। तो इन सारे जब जब इतने सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर होते हैं, जहां पर हमें एक एज की बात अपने करियर की ओर देखना होता है, वहीं पर आज अगर देखें वंदना, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने सबको इफेक्ट किया है। जहां पर इसकी कुछ अच्छाइयां हैं तो इसका एक ये भी है कि हर कोई जो है ना बेहतर दिखना चाहता है आज के टाइम में, और इस में वो, और सबसे पहले ना वो अपनी चाहे मुश्किलें हों चाहे कोई अच्छी बातें हों, सबसे पहले वो शेयर करते हैं तो सोशल मीडिया से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना कि माता पिता से वो बातें छुपा ले जाते हैं, है ना।
0: बिल्कुल। तो माता पिता से बातें छुपाते वो तभी हैं जब माता पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हद से ज्यादा।
1: बिल्कुल
0: तो आप कहते हैं ना कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो आप उनके माता पिता की जगह थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगे उनके दोस्त के रूप में, तो आपको शायद उनके दिल की उनके मन की हर बात आसानी से पता चल जाएगी। तो ये बात आज हम इसी उसमें कर रहे थे कि बच्चों का दोस्त बनना कितना जरूरी है। जब तक
1: बिल्कुल
0: बच्चे छोटे हैं हमारे हाथ में गोद खिलाने लायक हैं, तब तक हम उनके पेरेंट्स बने, उनका बहुत लालन पालन अच्छे से करें, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनके दोस्त बन के ही हमें रहना चाहिए, जिससे घर का माहौल भी अच्छा रहता है, किसी के मन पर कोई बोझ नहीं रहता और बच्चे बहुत अच्छे एक हेल्दी माहौल में बड़े होते
1: मतलब
0: हैं।
1: उनके मन में ये रहता है कि अगर बाहर दोस्तों के साथ मिलकर आ रहे हैं तो घर पर भी हमारे दो दोस्त हमारा इंतजार कर रहे
0: इंतजार
1: हैं,
0: कर रहे
1: है
0: हैं।
1: ना।
0: और इससे ऐसा भी होगा कि हो सकता है वो जितना टाइम बाहर दोस्तों के साथ बिता रहे हैं उससे उतना ही टाइम अपने माता पिता के साथ भी खुशी खुशी बिताए, उन्हें बोरियत ना लगे अपने बड़ों के बीच में।
1: बिल्कुल। तो बस कुछ नहीं करना है, वरना हम अपने लिसनर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ ना जरूर कुछ समय, बहुत ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट जरूर उनके साथ बिताएं, और उस टाइम
0: डेली
1: पर अपने मोबाइल्स को बिल्कुल टाटा बाबा कह दें, है ना। उन्हें सिर्फ ये ना पूछे
0: जी, ये बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि क्योंकि बच्चे ही केवल मतलब बच्चे जो सुन रहे होंगे हमें वो ही सोच रहे होंगे कि ये तो केवल बच्चों को कहे जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि मम्मी पापा भी आजकल मोबाइल्स पे इतने बिजी हो गए कि छोटे छोटे बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा दिया और अपना भी आराम से
1: बिल्कुल
0: मोबाइल दूसरे मोबाइल में लगे कि हाँ ठीक है बच्चा शांति से, लेकिन इससे आप लोगों के बीच में बहुत गैप बढ़ रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है भाई, इसको ध्यान दीजिए, मोबाइल तो कभी भी आपके पास आ सकता है, कभी भी आप सोते समय मतलब कभी भी किसी भी टाइम दिन के खाली वक्त पे आप मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन अपने
1: हाँ।
0: बच्चे को अपने से दूर मत जाने दीजिए।
1: बिल्कुल। और 24 घंटे ना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई ये भी नहीं करना चाहिए,
0: हाँ
1: वरना
0: ये बहुत
1: सवाल
0: मोनोटोनस हो जाता है भाई, बहुत खराब
1: बिल्कुल
0: लगता है,
1: ये भी नहीं पूछना चाहिए कि भाई पढ़ाई कैसी रही, आज क्या पढ़ाया गया, टीचर्स ने क्या
0: बच्चे
1: डिस्कस
0: इरिटेट हो
1: किया।
0: जाते हैं देखो।

0: मतलब बच्चे भी सोचेंगे ना कि स्कूल में भी यही सब सुनते हो आज, मम्मी भी हमारे घर पर हमारे यही सवाल कर रही,
1: देखो
0: तो
1: ये
0: आज
1: एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जिस उम्र में हम होते हैं ना उस उम्र की जो जो जरूरत चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, वो हमें नहीं पसंद आती है ना।
0: नहीं
1: हम
0: पसंद
1: भी जब
0: आती
1: छोटे
0: है।
1: थे तब पढ़ने और खेलने को अगर कंपेयर करें तो हम शायद खेल ज्यादा पसंद करते होंगे, तो
0: बिल्कुल
1: वही आजकल के बच्चे करते हैं। तो ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई दिन भर नहीं करना चाहिए, और बच्चे के मन की भी हर बात अब
0: जानने की
1: हम ये
0: कोशिश
1: कह
0: करनी
1: सकते हैं कि
0: चाहिए।
1: उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए, कि उनसे
0: हाँ
1: जब हम प्यार से उनको पुचकार के बात करेंगे तभी वो अपने मन की हर बात आपको बता देंगे,
0: हम उनसे पूछ
1: है ना।
0: सकते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहा, या कौन सा ऐसा कुछ ऐसा दोस्तों के साथ हुआ, या तुमने ऐसा कुछ क्या किया जिसे तुमने दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेकर आई, या तुम्हें किसी ने हंसाया।
1: बिल्कुल
0: तो और पेरेंट्स भी ना, जब बच्चे कुछ कहें तो उनका उस बात पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उन्हें अच्छे से पूरा सुनिए। उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ भी वो करते हैं घर पर या बाहर या अपने स्टडी से रिलेटेड, उनकी तारीफ करिए। और साथ ही ना ये हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्ट्रिक्शंस या जो अनुशासन है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म कर देना है, बल्कि एक ऐसा बॉन्ड बनाना है, ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें प्यार, भरोसा भरोसा और खुलकर बात करने की जगह जरूर हो।
1: बिल्कुल। तो चलो पूर्णिमा, इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना अपने दोस्तों को सुनवा दिया जाए, और इसके बाद हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे।
0: बिल्कुल।

0: 11:43 हो चले हैं वंदना, और अब हम हमनवा में चलते चलते आ चले हैं हमारे उस सेगमेंट में जहां हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर शेयर करते हैं जो हमारे लिए भी प्रेरणा होती है और हमारे लिसनर्स तक भी ये प्रेरणाएं पहुंचती हैं। और उस सेगमेंट का नाम है तेजस्विनी, तो आज क्या है खास?
1: पूर्णिमा, आज तेजस्विनी में हम बात कर रहे हैं भारत की लेडी टार्जन के बारे में। ये लेडी टार्जन जो इनको पदवी मिली है, ये इनका नाम है, इनका ओरिजिनल नेम जो है वो है जमुना टूडू। और इनको लेडी टार्जन की जो ये पदवी मिली है, ये क्यों मिली, इस पर हम बात करते हैं। तो जन्म इनका हुआ दिसंबर साल 1980 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, और बचपन बहुत ही साधारण रहा। विवाह के बाद जब वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के मुठुर गाँव में इनकी शादी हुई और ये यहाँ पर आकर रहने लगी। वहाँ पर भी बिल्कुल साधारण सा परिवार था और एक बहुत ही बेहद साधारण स्त्री की तरह रहती थी और भरण पोषण के लिए ये मजदूरी करती थी।
0: लेकिन जब ये गांव आई, तो गांव मतलब नई नई आई, तब उन्होंने देखा कि जो आसपास के घने जंगल हैं उनमें उसमें लकड़ी माफिया तेजी से जो है काट रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं। हर दिन लगभग सैकड़ों पेड़ जंगल खत्म होते जा रहे थे, और जिससे वन्य जीव जल स्रोत और ग्रामीणों का जीवन सब प्रभावित हो रहा था।
1: और उसी वक्त जमुना, उस वक्त जो जब ये आपने जो बताया कि ये देखा उन्होंने, उस वक्त जमुना की उम्र 18 वर्ष थी, और इसी उम्र में इन्होंने तय कर लिया कि वो इस विनाश को नहीं होने देंगी और अपने साथ गांव की महिलाओं को लेकर एक सेना बना ली इन्होंने। और इस ग्रामीण महिलाओं की सेना को बाद में वन सुरक्षा समिति के रूप में भी गठित किया गया।
0: बिल्कुल, और गांव में नियमित गश्त लगाना, पेड़ काटने वालों का विरोध करना या रोकना, पुलिस और वन विभाग को सूचना देना, ये सब कार्य होते। कोई पेड़ काटने आता तो पेड़ को लिपट कर कहती, पहले मुझे मारो।
1: और मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही भावुक करने वाली बात है ये कि पेड़ों को राखी बांधती थी जमुना, मतलब पूरे जंगल में जितने भी पेड़ थे उन सब पे वो राखी उन्होंने बांध रखी थी और उससे उनसे अपना एक रिश्ता बना लिया था। और इसी वजह से वो हर एक छोटे बड़े पेड़ के लिए वो एकदम डट के खड़ी हो जाती थी कि इसको मैं नहीं कटने दूंगी।
0: और यहीं से उनका लेडी टार्जन के नाम की शुरुआत हुई। और जमुना के इस काम से लकड़ी माफिया उनके दुश्मन बन गए और कई बार उन्हें धमकियां भी मिली। कितनी ही बार हथियारबंद तस्करों से भी आमना सामना हुआ, लेकिन वो डरी नहीं। इसी निडरता के कारण लोग उन्हें लेडी टार्जन जो है कहने लगे।
1: बिल्कुल पूर्णिमा, और इनके नेतृत्व में हजारों हेक्टेयर

0: जंगलों की सुरक्षा हुई। आज इस अभियान से अनेकों गांव जुड़ चुके हैं, लाखों पेड़ बचे हैं, साथ ही ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति ज्ञान और जागरूकता भी बढ़ी है।
1: इनकी कहानी जीता जागता एक उदाहरण है इस बात का कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी जो है हासिल कर सकते हैं।

0: तो वंदना, बहुत सारी बातें हमने कर ली आज हमारे इस प्रोग्राम हमनवा में, और अब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है कि हम बहुत सारी बातें करें। तो ये जो बातों का सिलसिला है ना, उसे रोक देते हैं और जो हमनवा है उसमें हम हमनवा की रसोई में क्या लेकर आए हैं वो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इसके बिना अधूरा है हमारा प्रोग्राम।
1: भाई दिन के दिन ही पूरा अधूरा है अगर हम कुछ खाना ना खाएं।
0: बिल्कुल। और जब मौसम ऐसा है ना, जहाँ मौसम भी है, दोस्त भी हैं, यार भी है, परिवार भी है, और उसमें खाना जो होता है ना, ये हमारे चाहे स्नैक्स हो चाहे वो लंच हो, वो ना उसकी पूर्ति जरूर करता है।
1: अच्छा बताओ, ऐसा क्यों होता है? ये हमारा जो पेट है, हमारा जो मन है, वो मौसम से इतना कनेक्टेड क्यों रहता है? जहाँ बारिश हुई पकौड़े याद आ गए, जहाँ बारिश हुई गरम गरम अदरक वाली चाय याद आ गई, ऐसा क्यों होता है भाई?
0: बिल्कुल, यही तो है, कहते हैं ना, यही है मौसम का जादू और इससे हमारा कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं मन का जुड़ाव ना हमारे मौसम से जरूर है, क्योंकि देखते ही ना, जहाँ गर्मी देख के हमारी झुलझुलाहट सी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है,
1: यहाँ तक ही खाना खाने का मन,
0: खाना खाने का क्या, इवन खाना बनाने का मन नहीं करता है, बस लगता है बना बनाया जो आगे हमारे सामने हम खा लेते हैं। और यही है, जब मन खुश होता है तो हम फटाफट किचन में चले जाते हैं और जो मन करता है हम बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं।
1: वैसे मैं बताऊं, मैं तो बहुत आलसी हूं, मुझे तो लगता है अगर बारिश हो रही है तो कोई बस पकौड़े और चाय बना बना के देता रहे बस।
0: हाँ, तो ये वाली जो आदत,
1: किचन में चली भी जाती हूँ मैं तो, नहीं जाती।
0: हाँ, ये वाली जो आदत है ना, सबको होती है, सबको अच्छा लगता है। तो आज ऐसी ही ना, हम झटपट से बन जाने वाली ही एक रेसिपी जो है वंदना लेकर आए हैं हम, और वंदना जो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ना, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि आपसे ना कोई ना इंग्रेडिएंट्स छूट जाए या जो हम बताने वाले हैं वो ना रह जाए।
1: तो चलो, जब तक पेपर और पेन लेकर आते हैं हमारे साथी, तब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इस मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है, तुम्हें बताओ।
0: हाँ, सबसे अच्छा तो ना सीजनल फ्रूट्स लगते हैं, और जो हमारा एक फ्रूट है ना, सदाबहार है, वो पूरे साल हमें मिलता है, वो है केले वाला, है ना, नेचुरल मीठा और बहुत ही पसंदीदा फ्रूट है और बहुत अच्छा लगता है। और तो आज ना वंदना, हम इसी की रेसिपी शेयर करते हैं। ये ना,
1: चलो, कच्चे अभी तक तो मुझे लगता है कि शायद हमारे साथियों ने पेपर पेन उठा भी लिया होगा। तो
0: कच्चे केले की टिक्की हम बताने वाले हैं
1: साथियों, आज हम कच्चे केले की टिक्की बनाना बता रहे हैं। तो नोट करिए इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमको चाहिए 3 कच्चे केले और 1/4 कप हरा मटर उबला हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी हींग और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर।
0: ये इसे ना आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं।
1: हाँ, ये जो मिर्च और नमक ये सब है, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ही लीजिए। और सेंकने के लिए तेल, ये भी आप जैसा पसंद करते हो भाई, और जैसा आपके शरीर को सूट करता हो, ठीक है। और इसको बनाने के लिए, कच्चे केले को बिना छिलका उतारे पहले इसको 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में अकॉर्डिंग टू साइज काट लीजिए। फिर 10 मिनट तक टुकड़ों को पानी में उबाल लीजिए, और ठंडा होने के बाद केले को छील लीजिए और मैश कर लीजिए। और मटर, हरी मटर जो हमने रखी हुई है, हरी मटर, मिर्च, धनिया पत्ता, इसको मोटा मोटा काट लीजिए और इस मिश्रण को केले में मिला लीजिए। आमचूर, गरम मसाला, नमक, हींग, लाल मिर्च, इस पाउडर को, ये जो जितना भी इंग्रेडिएंट हमने लिया था इसको भी इसमें मिला लीजिए, और पूरे मिश्रण को बहुत अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर इतनी देर में आप चटनी वगैरह भी बना सकते हैं। और उसके बाद इसको, इस मिश्रण को आप लीजिए और हथेलियों की मदद से मनचाहे आकार में टिक्की बना लीजिए। आजकल तो टिक्की के सांचे भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेप्स में, हार्ट शेप में या फिर ट्रायंगल, बहुत अच्छे अच्छे शेप्स में,
0: बच्चों को भी अच्छे लगते हैं,
1: बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं। और नॉनस्टिक तवे पर 2 से 3 चम्मच तेल डालिए, उसको पूरा फैला लीजिए और एक बार में 5 से 6 टिक्की इसमें आ जाएंगी आराम से। और लगभग 3-4 मिनट सेकिए इसको, देख लीजिए गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके सेक लीजिए और खाइए
0: अपनी मनपसंद चटनी के साथ। और फिलहाल वंदना, हमारा जो है जाने का वक्त आ चला है, तो एक बढ़िया सा गाना हम प्ले करते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।

0: बिल्कुल, जाने का आ चुका है वक्त करीब, और ये ना मॉर्निंग से मैं आरजे पूर्णिमा थी आपके साथ, और अब दिन में 3 बजे आपके साथ रहने वाली हैं।
1: वंदना।
0: तो बस हम कहते हैं आपको टाटा बाय बाय, रखिए अपना खास ख्याल।
1: और दीजिए फिलहाल हम नवा कार्यक्रम से वंदना और पूर्णिमा को इजाजत। नमस्कार।

listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने और देश भर में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए

किए गए। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया जो भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा। यह समूह इस क्षेत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाएगा और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय सुझाएगा। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के मॉडल स्कूल ग्राउंड में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकमाता की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अनावरण स्थल के निकट एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर केंद्रीय जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष निहाल सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लखनऊ मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए आज तेज आंधी तूफान आकाशीय बिजली और वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश के मध्य और तराई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं व आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके चलते लखनऊ कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को के नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से हराकर विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी 12:04 का वक्त और प्रोग्राम वही जो आपको देता है ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर और अपने जीवन में उतार कर आप बन जाती हैं सुपर एक्सपर्ट। जी हाँ, शुरू हो चुका है प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ और बातें करेगी आपसे ढेर सारी। और बातें होंगी ऐसी जो आपको बनाएंगी स्टाइलिश। जी हाँ, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम बात करते हैं फैशन की। तो हम बातें शुरू करें उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लें।

मिनट का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा। और दोस्तों, दिन तो चढ़ गया है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि दिन ना चढ़े, क्योंकि आजकल का ये जो गर्मी का प्रकोप है वो हम सब झेल रहे हैं। लेकिन आज जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा हो गया है और हम लोग का जो दिल है वो भी गार्डन गार्डन हो गया है। तो इस प्यारे से गीत के बाद मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम शत्रुपा में। दोस्तों, हम महिलाओं की एक जो विश होती है वो हमेशा मन में रहती है, और वो विश है कि हम सुंदर लगे, स्टाइलिश दिखें और हर कोई हमारी तारीफ करे, चाहे ओकेजन कोई हो, चाहे वेदर कोई हो। जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है ना, उससे हम सब वाकिफ हैं। सूरज आग बरसा रहा है और गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस पसीने वाली गर्मी में भी हमारा फैशन तो ऑन पॉइंट ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ना जी, तो बिल्कुल रहेगा आपका फैशन ऑन पॉइंट। क्योंकि जब प्रोग्राम शत्रुपा हो और ऐसी चीजें ना आपको बताई जाएं जिससे आपका फैशन ऑन पॉइंट रहे, तो फिर भाई बेकार है सारी चीजें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स के बारे में जिनको अपना कर आप इस सीजन भी दिखेंगे स्टनिंग, स्मार्ट और समर रेडी। तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हेयर स्टाइल हैं, हेयर कट हैं जो आपको दिखाएंगे स्टाइलिश। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए, तो हम वो ट्रैक आप तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी 12:18 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हम बातें करने जा रहे हैं ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स की जो आपको देंगे इस सीजन फ्रेश लुक। तो सबसे पहले जिस कट हेयर कट की बात हम करने जा रहे हैं वो है बॉब कट। जी हाँ, ये आपको देगा एक परफेक्ट स्टाइल। दोस्तों, जो बॉब कट होता है ना वो एक बहुत ही लाइट, स्टाइलिश और बहुत इजी हेयर कट होता है। इस कटिंग में जो बाल होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से जो आपके सर और गर्दन पे गर्मी लगती है, जो आपको गर्मी का एहसास होता है, वो अगर आप ये कटिंग करवाते हैं तो आपको जो गर्मी का एहसास होता है ना वो कम होने लगेगा। और इसे वॉश करना और ड्राई करना भी काफी हद तक इजी है। और हाँ, इनको जो स्टाइल करने में अगर हम देखते हैं ना, कभी कभी जब हम बालों का स्टाइल बनाते हैं कितना टाइम लग जाता है, तो जब आप बॉब कटिंग करवाते हैं और तो आप इनको वॉश तो अच्छे से कर लेते हैं, ड्राई भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनको जो स्टाइल अगर देने की बात कहें तो वो भी बहुत इजिली आप दे सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट जो टाइप होते हैं बॉब कटिंग में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, वो आप अपने हेयर स्टाइल पे अपना सकते हैं। और वो कैसे अपनाना है आपको, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग वो कटिंग अपनानी है। और उस कटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन कटिंग में आती है ब्लंट बॉब, टेक्सचर्ड बॉब और चिन लेंथ बॉब। तो आप इन तीनों ही हेयर कट में से कोई भी अपने फेस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं जो आपको देगा स्टाइलिश लुक। और दोस्तों, जब आप इस तरीके का कट करवाएंगे ना, हेयर कट करवाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपसे लोग क्या कहेंगे। वो ये गाना कह रहा है तो चलिए सुनते हैं। देखिए, ये गाना जो आप सुनेंगे ना वही लोग आपसे कहेंगे।

जी 12:27 और वही दोस्त आपके साथ है। जी हाँ, शिखा आपके साथ है और बातें आज हम कर रहे हैं क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन की। और फैशन की जब बात हो और हेयर स्टाइल और हेयर कट माइंड में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इस गाने ने बता दिया कि जब आप हेयर स्टाइल करेंगी, बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट करवा लेंगी, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई तुम सा नहीं, बिल्कुल सब आपसे यही कहेंगे कि कोई तुम सा नहीं। कि जब हम सज धज के हम तो लगते हैं यूनिक, तो आज जो यूनिक हम लगने वाले हैं वो यूनिक लगेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स को अपना कर, क्योंकि ये सीजन ऐसा चल रहा है कि हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके का हेयर कट हो, हेयर स्टाइल हो, तो वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप दिखना चाहते हैं नए अंदाज में, जी हाँ नए अंदाज में, तो लेयर कट, जी हाँ लेयर्ड कट जो होता है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप बाल छोटे नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बाल भी ना छोटे हों और हम बहुत सुंदर दिखें, स्टाइलिश दिखें, और इस गर्मी में हल्कापन भी महसूस हो, तो क्यों ना लेयर्ड कट की ऑप्शन को चुन लें। तो अगर आप इस समर हल्कापन महसूस करना चाहती हैं और साथ ही बहुत परफेक्ट दिखना चाहती हैं, फैशन आपका ऑन पॉइंट रहे, ऐसा आप चाहती हैं, तो आपको ये जो लेयर्ड कट की बात हम कर रहे हैं वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि ये जो है ना वो आपके बालों को वॉल्यूम देता है, उनका भारीपन कम करता है और लेयर्स जो होती है ना चेहरे को फ्रेम करती हैं, और चेहरे को जब फ्रेम करती हैं जो लेयर्स आपके चेहरे पे आती हैं, तो उसका जो अट्रैक्शन है, आपके जो फेस का अट्रैक्शन है वो कुछ अलग ही दिखता है। तो दोस्तों, अगर आपके बाल लंबे हैं और आप बहुत छोटे कट नहीं करवाना चाहती, हेयर कट नहीं करवाना चाहती, तो बिल्कुल आप जाइए और ये कट करवाइए। और देखिए, आप कहेंगी वाह क्या आज का जो प्रोग्राम था उसको मैंने सुना और मुझे कितनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली और मैं कितना एलिगेंट दिख रही हूँ, तो ये कट आप करवाइए। और साथ ही अच्छा, इस कटवाने

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जी दोस्तों, 12:36 का वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो बस ऐसे ही प्यार और एहसास से जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, क्यों ये रिश्ता ऐसा ही है भाई और ऐसा ही बना रहना चाहिए, जैसे रिमझिम सी फुहार हम सबको खुशी दे देती है ना, वैसे आपका साथ हमें बहुत खुशी देता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कि कैसे किन किन हेयर कट को अपना कर, हेयर स्टाइल्स को अपना कर हम जो महिलाएं हैं वो दिख सकते हैं एलिगेंट, क्योंकि जो एलिगेंट दिखना है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों अगर आप दिखना चाहती हैं एलिगेंट तो एक ट्रेंडिंग हेयर कट लॉन्ग बॉब यानी लॉब कट आप ट्राई कर सकती हैं। कंधों तक की लंबाई वाला ये

जी तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, क्यों रिश्ता ऐसा ही है भाई और ऐसा ही बना रहना चाहिए, जैसे रिमझिम सी फुहार हम सबको खुशी दे देती है ना, वैसे आपका साथ हमें बहुत खुशी देता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कि कैसे किन किन हेयर कट को अपना कर, हेयर स्टाइल्स को अपना कर हम जो महिलाएं हैं वो दिख सकते हैं एलिगेंट, क्योंकि जो एलिगेंट दिखना है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों अगर आप दिखना चाहती हैं एलिगेंट तो एक ट्रेंडिंग हेयर कट लॉन्ग बॉब यानी लॉब कट आप ट्राई कर सकती हैं। कंधों तक की लंबाई वाला ये है।

बाय बाय करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि शिखा अभी रहेगी आपके साथ अगले प्रोग्राम में और फुल ऑन होगा मस्ती और धमाल और ढेर सारी बातें होंगी। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM ब्रेन बोध धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद रामपुर में 690 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विरासत का अपमान होता था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती थी, आज विरासत को सम्मान देकर कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी और उन्हें प्रताड़ित करती थी। डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 यात्री घायल हो गए। हादसा थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4 बजे हुआ जब एक वोल्वो बस पीछे से एक ट्रेलर में जा घुसी। पुलिस के अनुसार वोल्वो बस में लगभग 65 यात्री सवार थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि SDRF और फायर सर्विस की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया जहां उनका उपचार जारी है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा किसानों से मिट्टी में उपज बनाए रखने के लिए अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों को संतुलित उपयोग ने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिख धर्म के 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने धर्म संस्कृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संत सैनिक परंपरा की नींव रखने के लिए हरगोविंद साहिब जी की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 तलवारें धारण करके गुरु हरगोविंद साहिब जी ने यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिकता के साथ साथ अन्याय के खिलाफ निडरता से खड़ा होना आस्था का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि गुरु हरगोविंद साहिब जी की शिक्षाएं लोगों को धर्म की रक्षा, पीड़ितों की सेवा, मातृभूमि की रक्षा करने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

सुबह 1:04 हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। तो आज इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें एक दिलचस्प टॉपिक पर। तो क्या आप रेडी हैं? जी, मैंने क्वेश्चन किया क्या आप रेडी हैं, तो मुझे लगता है जी हाँ, आप सब बिल्कुल रेडी हैं। तो बातें तो हम आपसे बहुत ढेर सारी करेंगे और करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे आपसे बातें करने की, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना आपके साथ जो गुजरता है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा। तो आपसे बातें हम शुरू करें, आज क्या टॉपिक होने वाला है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वो सब बातें हम शुरू करें। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक लगा के रखा है मैंने आप सबके लिए, तो चलिए हम सब एंजॉय करते हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर असेंबली हलकों में 690 करोड़ रुपए से ज्यादा के 102 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है।
0: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार 8 अफराद को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। केस की समाअत कल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजत वर्मा के सामने हुई। तमाम मुलजमीन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमीन का रिमांड तलब नहीं की है। इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी वकील इस मामले में नामजद मुलजमीन की नुमाइंदगी नहीं करेगा। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात में माली बेजाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरख्वास्त में अदालत की निगरानी में होने वाली तहकीकात और माली बेजाब्तगियों के मुकम्मल ऑडिट का मुतालबा किया गया है। जस्टिस एम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने दरख्वास्त की उजलत पर सवाल उठाया और कहा कि गर्मियों की तातीलात के बाद अदालत दोबारा खुलने पर इसे दर्ज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत में 579 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत ने पीलीभीत समेत रियासत के तमाम अजला की तरक्की को तेज करने के लिए आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनाया है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद की पॉलिसियों और गुड गवर्नेंस की वजह से पीलीभीत तब्दील हो रहा है। पीलीभीत के बाद वजीर आला ने भामाशाह की यौम पैदाइश के मौके पर मुरादाबाद में मुनक्किद एक प्रोग्राम में 365 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने मगरबी उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल जंगी यादगार त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मुरादाबाद में तरक्याती कामों, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के ताल्लुक से एक डिवीजनल जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मुतालिक अपने साबका हुक्म को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। स्टैंप और कोर्ट फीस व रजिस्ट्रेशन के वजीर ममलकत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह फैसला एडवोकेट और डीड राइटर्स की खदशात और मफादात की रोशनी में किया गया है।
2: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑन नए रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम किस्ते बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कल 3 जबानों की पॉलिसी पर रहनुमा खतूत जारी किए। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा दर्जा 10 बैच को नई जबान की पॉलिसी पर अमल करने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि दर्जा 7

0: आठ और नौ के तलबा को दर्जा दस तक पहुंचने पर उनकी तीसरी जबान में बोर्ड के इम्तहानात देने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि क्लास के लिए मुनासिब वसायल बरवक्त दस्तियाब कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तहान 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता 36 घंटों में रियासत के कुछ अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत ज़िले में कल रात से हो रही बारिश से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर समेत कुछ दूसरे अज़ला में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दो रोज़ में रियासत में मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे ने आज रियासत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: पर विज्ञापन देना सुलभ

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सही और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:17 का वक्त और एक बार फिर से आपकी दोस्त हाजिर हो गई है आप सभी का वेलकम करने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, और वो टॉपिक ऐसा है जो हम सबके बहुत दिल के करीब है और हम सब वो करते हैं, डेफिनेटली वो चीज करते हैं। तो दोस्तों हम सब कितने सपने देखते हैं, देखते हैं ना, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो कोई क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, कोई सिंगर बनना चाहता है।

तो दोस्तों हम सब कितने सपने देखते हैं, देखते हैं ना। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो कोई क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो कोई बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता है, और कोई चांद पे जाने का सपना भी देख लेता है। तो सपने तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और सभी लोग सपने जरूर देखते हैं और उसको जी जान लगाकर पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, पर कभी कभी वो सपने किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाते। और अगर जब सपने नहीं पूरे हो पाते तो हम कितने दुखी हो जाते हैं ना। पर सोचिए अगर कोई जादू हो जाए, एक जादू की छड़ी घुमाते ही सारे सपने सच हो जाएं, और चलिए सारे सपने ना भी सही, एक ही सपना पूरा हो जाए, तो कैसा लगेगा? दिल तो झूम उठेगा ना, क्योंकि वो सपने जो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं और वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उनमें से अगर एक कोई सपना जो दिल के करीब है वो पूरा हो जाए तो कैसा लगेगा। तो आज का टॉपिक भी हमने इसी से जोड़ते हुए लिया है, और आपको हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर एक जादू से सपने पूरे हो जाए, आपका कोई एक ऐसा जादू की छड़ी घुमाई जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो आज वही ड्रीम आपको हमसे शेयर करना है कि जादू की छड़ी घूमे और आपका वो सपना पूरा हो जाए। तो बस आपको बताना है कि कौन सा वो सपना आप अपना पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमें बताना है, और बताना कहाँ है आपको? बताना है हमें हमारी मेल आईडी पर, और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो भाई आज का टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक हम भेज रहे हैं आप तक। फिर उसके बाद देखिए, कहते हैं ना, जब हमारे जितने भी श्रोता हमसे दिल से जुड़े होते हैं उनका मेल पहले से ही आना जो शुरू हो जाता है, तो हमारे पास मेल आपके आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम आपको और भी मौका दे रहे हैं कि आप सोचिए कि कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप चाहते हैं कि एक जादू की छड़ी घूमे और वो पूरा हो जाए। तो तब तक आप सोचिए, साथ ही एंजॉय करते हैं ये एक गाना।

जी हाँ, ये बेहतरीन सा ट्रैक अभी आपने सुना, फिल्म डुप्लीकेट से इतना बेहतरीन ट्रैक है दोस्तों कि सुन लो ना तो मन झूमने लगता है। देखा, मैं कहती हूँ ना कि आप एंजॉय करियो और साथ में हम भी एंजॉय करेंगे, तो हम भी यहाँ खूब एंजॉय करते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे हमारा और आपका जो साथ है ना, ये एक कहते ना ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है। तो इस जो मतलब साथ को, ये कंपेनियनशिप जो है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार आप हमें देते रहिए अपने मेल्स के थ्रू। और हमारे पास आपके मेल्स आने लगे हैं और आ गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आपके मेल्स। हमारे पास राज कमल यादव जी ने मेल किया है। राज कमल यादव, ग्राम बरैया, पोस्ट सूरतगंज, बाराबंकी। नमस्ते मैम जी, कैसी हैं आप? मैम जी, हमारा सपना है कि हमारा बेटा सावन कुमार यादव, 4 साल का है, वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, बस यही है। मैम जी आशीर्वाद दीजिए। हमारी वाइफ संगीता यादव, रमजान मास्टर समीर भी सुन रहे हैं, धन्यवाद। तो बिल्कुल आपका ये जो सपना है कि आपका जो बेटा है, छोटा सा क्यूट सा, वो आपका जो सपना है वो जरूर से पूरा करे। और अगर वो सपना नहीं पूरा हो पाता तो उसका जो सपना है, क्योंकि कहते ना कि हम अपने सपने दूसरे पे नहीं थोप सकते, तो वो तो छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है, और अगर आपका ये सपना है तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, और अगर अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा करे तो उसको करने दीजिए।

जी सतीश अनीजा जी ने हमें मेल किया है। नमस्कार शिखा बहन जी, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। थैंक यू सो मच। कुछ वर्ष पहले हमारा सपना था कि हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के वासी बन जाएं। जादू की कोई छड़ी तो नहीं घुमाई, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लिया कि ये सपना जरूर पूरा करना है। हर रोज परमात्मा से अरदास भी की और दिलो जान से मेहनत की। और क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है और हमने आखिर में सफलता हासिल की। अब चंडीगढ़ का वासी होने पर और अपनी की हुई मेहनत पर नाज होता है जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बात ना बहुत दिल को छू गई कि आपने सपना तो देखा और कोई जादू की छड़ी तो नहीं घूमी, लेकिन आपने अपने दृढ़ संकल्प से जो अपना ड्रीम था उसे पा लिया। और हमारे पास मोहम्मद साहिर जी ने मेल किया है। मैं अपने बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल भेज रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ। आज शिखा दीदी आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून और शुभ दोपहरिया। आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कहना चाहूंगा कि मेरा ख्वाब है अच्छा नहीं क्यों लिखा, मेरा नहीं कहना चाहूंगा, आप कहना चाहेंगे जी हाँ, ख्वाब है जहां चलने की अगर जादुई छड़ी मिल जाए तो मैं जहां चलने लगूंगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक मेरा दोस्त का नाम लेना, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद शाहिर और कपिल अहमद भाई, शहाबुद्दीन भाई, दीदी मेल पूरा पढ़ियागा व्याड़ी या हमारे गांव का मौसम बड़ा ही खुशनुमा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि आपके गांव का नहीं, आज हमें लगता है कि सभी जगह का मौसम खुशनुमा हो गया है।

इनका थोड़े थोड़े से मुझे वर्ड्स मुझे कंफ्यूजन में लगे, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है कि मेरा जहां जाने का मन हो आई थिंक वहां मैं जाना चाहूंगा। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी आपने चीज लिखी कि आपका जहां जाने का मन हो आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, आपने हमें मेल किया, मोहम्मद साहिर, मोहम्मद फैज आपका नाम है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी फीलिंग्स हम तक कन्वे करी। तो दोस्तों हम मेल आपके पढ़ें, क्योंकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका बेसब्री से वो इंतजार करते हैं कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे होते हैं आरजे, तो उनका ये मन करता है कि भाई बातें तो होती रहे लेकिन साथ में एक म्यूजिकल ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो एक प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, तो उसको इंजॉय करते हैं और फिर लौट कर आते हैं, आपके मेल पढ़ते हैं और बहुत ढेर सारी बातें आपसे करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर।

जी 1:36 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ और बात कर रहे हैं ढेर सारी एक टॉपिक पर। एक बेहतरीन सा टॉपिक आज हमने आपको दिया है कि कोई एक जादू की छड़ी घूमे और आपका वो सपना जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आप चाहें कि वो सपना पूरा हो जाए, तो वो कौन सा ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। और हमारे पास मेल्स तो आ ही रहे हैं और हम पढ़ने भी जा रहे हैं। रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेश आय नमो होठों पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, शहरुख बेग, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, बउआ पाल, संत राम काका, मिर्जा तुराब बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से शिखा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। हमारा सपना है कि हम भी पैसे वाले हों और सभी की मदद करें, धन्यवाद। तो इतना प्यार आपने जो शिखा बिटिया करके बोला ना, तो बहुत दिल को छू जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि आप कितना दिल से हमसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने लिखा है कि हम इतने पैसे वाले हो जाएं कि हम सभी की मदद करें। तो जो जादू की छड़ी है वो सच में हो, तो ये आपकी जो थिंकिंग है

वो बहुत अच्छी है। और राहुल यादव जी ने हमें मेल किया है, हेलो शिखा मैम, दिस इज माय ईमेल टू एफएम रेनबो लखनऊ, प्लीज ईमेल रीड कर लीजिएगा, फ्रॉम गौरीगंज अमेठी से इन्होंने हमें मेल किया है। तो भाई अभी आपका गाना तो हम नहीं प्ले करेंगे, हम प्ले करेंगे, डेफिनेटली प्ले करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम आपका जो आपके फरमाइशी गीत का है वो है हॉटमेल, वो 2 बजे से शुरू होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका ट्रैक आप तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे पास मेल किया है महेंद्र दीपन जी ने, और इन्होंने बड़ा, मुझे लग रहा है थोड़ा लिरिकल वे में लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। शिखा मैम जी को महेंद्र दीपन का सादर प्रणाम और नमस्कार है। गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से भेजा मैंने प्यार है। आपके आपके आपके शो होठों पर तेरी बात ने जगाया है एक नया अरमान। जादुई छड़ी मिल जाए तो बदल जाएगा मेरा पूरा जहान। घुमाकर उस जादुई छड़ी को पहले तो खूब सारा पैसा बनाऊंगा, फिर बिना किसी फिक्र के मैं पूरी दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। पेरिस की गलियां हो या लंदन, हर शहर का दीदार करूंगा। इस खूबसूरत दुनिया का कोना कोना मैं पार करूंगा। लखनऊ एफएम रेनबो के संग मैंने अपनी ये हसरत गाई है। रूड़ गांव की महेंद्र ने आरजे शिखा मैम जी को अपनी दिली बात सुनाई है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात, इन्होंने इतना लिरिकल वे में लिखा है। और मतलब ये जो, मतलब जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे होंगे ना प्रोग्राम, वो भी ये जो आपने इतना लिरिकल वे में अपनी इच्छा जताई, अपना ड्रीम हमें बताया है, तो उसको सुन कर ना वो भी खुश हो गए होंगे। और मैंने भी ना आपके जो ये इतना प्यार भरा आपने जो मेल लिखा उसको भी उतने ही एहसास से पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी ये विश बताई, और हमारी भी ये विश है कि आपकी सच में कोई जादू की छड़ी घूम जाए और आपकी ये जो विश है वो पूरी हो जाए। और प्रवीण जी ने हमें मेल कर दिया है, मुझे दुनिया घूमने का बहुत मन है। अच्छा, तो प्रवीण जी कह रहे हैं कि मुझे दुनिया घूमने का मन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली कोई एक जादू की छड़ी घूमेगी और आप दुनिया जरूर घूमेंगे। और आप अपनी बातें हमसे, इतनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। वकील अहमद जी ने हमें मेल किया है, नमस्ते, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, होठों पर तेरी बात अच्छा लगता है, प्रोग्राम सपना तो सपना होता है, जो जादू की छड़ी से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। किसी के दिल में बसो तो सोच समझ कर बसना, क्योंकि वहां से निकलने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर साहिब अंसारी साजिया अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी गुलफसा सिद्दीकी अमन नवाब, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी। और आप लोग इतना पोइटिक वे में लिखते हैं कि सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेल्स तो हम आपके पढ़ेंगे और हमारा मन करता है कि हम मेल्स ही पढ़ते जाएं, लेकिन भाई आपका तो मन करता है ना कि गाने सुन लें, तो क्योंकि गाने का जो इंतजार होता है ना कि अब कौन सा गाना आएगा, अब कोई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाना जो प्ले होता है वो आपका बहुत फेवरेट होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक, और हम भी एंजॉय करेंगे।

0: बना ले।
1: जी बिल्कुल, अपना बना ले। तो आपकी जो ये मेल्स आते हैं ना, इतने प्यारे, और हम तो आपके हैं ही हैं। हमने कह भी दिया कि भाई जब हम आपके साथ होते हैं और आपसे बात होती है तो आप सबसे ज्यादा खुशी उसी उसी पल होती है। तो अपना और देखिए, ये जो प्यार आपका आपके मेल्स के थ्रू मिल रहा है, और भाई मेरा तो, मैं तो कहती हूँ, मेरा तो गाने भेजने का मन नहीं करता। मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी आपके मेल्स पढ़ूँ, और ये प्यारे प्यारे मेल्स पढ़ना मुझे बहुत खुशी देता है। तो हमारे पास मेल आया है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी ने हमें मेल किया है। मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मेरा तो यही मन है कि जादू की छड़ी घुमाओ और सुंदर महरारू पाओ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये थैंक यू मैं कह रही हूँ, मैं भी खो गई आपकी बातों में। और अच्छा, ये थैंक यू मुझे कह रहे थे, मैं आपको थैंक यू कहने लगी। सो थैंक यू, मेरे कुछ रेडियो दोस्त हैं उनके नाम ले लीजिए। तो भाई आपकी शादी अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपकी कोई जादू की छड़ी तो घूमेगी ही, और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी, जो खुशी में तो मैं खुद को ही भूल गई। और शशि निगम जी का हमारे पास मेल आया है। शिखा जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आपकी सुरीली आवाज कार्यक्रम की जान है। थैंक यू सो मच, मन करता है आप बोलती जाएं और हम सुनते ही जाएं। हमारा स्वप्न है कि ऐसा समाज में माहौल बने कि कोई किसी से नफरत ना करे और सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहें। तो ये तो संदेश आपने बिल्कुल दिल को छू लेने वाला दिया है, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है ना, वो यही ज़रूरत है कि सब लोग मिलजुल कर रहें और ये जो आपसी प्यार है वो कभी ख़त्म ना हो। तो शशि निगम जी, आपने अपना तो एक ड्रीम हमें बताया, लेकिन एक संदेश भी दे दिया कि आपस में प्यार बहुत ज़रूरी है। और आहिल खान जी ने हमें मेल किया है, और इनका मेल है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, उर्फी खान फ्रॉम बुलंदशहर। मैम सच में आज हवाएं रेशम जैसी ही सुकून दे रही हैं, गर्मी से राहत मिली है। मैम मुझे पता है कि ये प्रोग्राम फरमाइशी नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो एक गाना इन्होंने लिखा है वो प्ले कर दें। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक वो गाना पहुंचाएं, लेकिन अगर इसमें नहीं पहुंचेगा तो आपका जो प्रोग्राम हॉट मेल आएगा उसमें ज़रूर पहुंचेगा। और हमारे पास सुधाकर यादव जी ने मेल किया है, हमको तो खेत में काम कौन सा करना अच्छा लगता है और कल क्या काम करना है, ये हमको रात को सपना पड़ता है, सपना देखना पड़ता है। अच्छा, तो कुछ मतलब हमको तो खेत में काम कौन सा करना अच्छा लगता है, कल क्या काम करना है, अच्छा ये सपना देखते हैं कि कल क्या काम करना है। ओके, प्रेम पूर्वक नमस्कार। और इन्होंने बहुत ढेर सारे नाम लिख दिए हैं, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। और थैंक यू सो मच, आपने हम तक अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सपना तो कोई नहीं है, मगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और वो मेरे अब्बू की है, मैं उस पे काम सीख रहा हूँ। बस मेरी ये कोशिश है कि अब्बू जैसी दुकान चला रहे थे इतने सालों से, मैं भी उसी तरह मैं भी आगे चलाता रहूं। तो बिल्कुल आपका ये जो सपना है, क्योंकि ये सपना है और आपका ये डिटर्मिनेशन है, जो आपने दृढ़ संकल्प अपने मन में ठाना है कि जैसे आपके पापा शॉप चलाते थे वैसे आपकी भी शॉप चले, तो ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी है। और कहते हैं जब अच्छी फील होती है तो भगवान भी साथ देते हैं। अमन नवाब ने हमें मेल कर दिया है, हेलो डियर शिखा दी, आज मौसम बड़ा बेईमान है, राहत मिली गर्मी से ऊपर वाले का करम है, अगर मेरे पास जादू की छड़ी हो तो जितनी मैं सोशल मीडिया पर बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस देखती हूँ वो सब ले लूंगी, और मेहंदी की डिजाइन देखती हूँ और लगा नहीं पाती वो सब सीख लूंगी, जादू की छड़ी घुमाऊंगी, जंतर मंतर गिली गिली छू करूंगी और नामुमकिन को मुमकिन कर लूंगी। जी हाँ, तो देखिए ना, एक से बढ़कर एक जवाब हमारे पास आ रहे हैं, टॉपिक हमारे आपकी जो मन की बात है वो हम पढ़ रहे हैं होटो पे तेरी बात पे। और प्रोग्राम जो है ना इतना खास है क्योंकि आपके मन में जो चल रहा होता है, कभी कभी हम अपने मन की चीजें किसी से कह नहीं पाते। तो आपने हमसे शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गाना इंतजार कर रहा है कि हम अपने श्रोताओं तक पहुंच जाए, तो चलिए इंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक।

जी 1:55 का वक्त, और देखिए ना आपसे बातें करते करते आपके प्यारे प्यारे मेल्स को पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, और टाइम जो स्टूडियो क्लॉक की घड़ी है हमारी वो टिक टिक करते हुए इशारा कर रही है कि भाई शिखा वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं पर। लेकिन एंजॉयमेंट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि अगला प्रोग्राम भी होने वाला है फुल मस्ती और धमाल भरा, क्योंकि अगला प्रोग्राम है आपकी ही पसंद का, जी हाँ, रेनबो हॉट मेल, और उसमें बहुत ढेर सारी मस्ती होगी और बहुत ही बेहतरीन से ट्रैक पहुंचेंगे आप तक। तब तक के लिए शिखा को इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले प्रोग्राम रेनबो हॉट मेल में।

0: in a penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in the World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. In another match, Morocco defeated the Netherlands 3-2 on the penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in round of 32 clash today. Morocco's Ashraf Hakimi and Neil Elanoi tested Dutch goalkeeper Bart Verbruggen, while Mickey van der Ven forced a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gakpo scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crescencio Somerville. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Ashraf Hakimi, Ismail Saibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, issued an orange-colored warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, Sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
2: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को

पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 750

0: पत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अल नीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है।

0: प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी।

0: की हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी 2:33 का वक्त और शिखाए आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल में और एक से बढ़कर एक गाने हम सुन रहे हैं। जी हाँ, आपके ही पसंद के गाने आज हम भी सुन रहे हैं और आपके जो मेल्स हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मुकेश कश्यप जी ने हमें मेल किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह किसी भी गीत में शामिल करें। और हमारे पास वारिस अली जी ने मेल किया है, शिखा जी आदाब, ना घमंड में रहिए ना गुरूर में रहिए, बस जिससे दिल ना मिले उनसे दूर रहिए। क्या बात है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले द ट्रैक। बहुत अच्छा सा इन्होंने एक गाना लिखा है, वो हमारा हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। और पवन कुमार जी ने हमें मेल किया, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार ग्राम सिंहपुर सिधौली सीतापुर से। मैम आप कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग बहुत बढ़िया बज रहे हैं जी। तो सॉन्ग तो ये सब क्रेडिट भाई आपको ही जाता है क्योंकि आपके इस वाले प्रोग्राम में तो आपके ही गीत बजते हैं, तो अगर आपके दिल को छू रहे हैं तो। और मेरा एक कहना भी ये है आप लोगों से कि गाने सब इंजॉय करिए क्योंकि एक से बढ़कर एक जो आप लोगों ने फरमाइश हम तक भेजी है वो आप तक आ रही है तो इंजॉयमेंट तो बनता है। सुहाने गीतों के साथ गुरमीत सिंह, मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से इन्होंने हमें मेल किया है गुरमीत जी ने। और हमारे पास नितेश देवांगन जी का मेल आया, सप्रेम नमस्कार, पता पलारी छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन कोई भी गीत में शामिल करें, धन्यवाद। और हमारे पास हरजिंदर शिंदा जी ने हमें मेल किया, रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी सदाबहार गीत में हमें शामिल करें, धन्यवाद। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, रस जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे पास मेल आया है, नरेश जी ने हमें मेल किया है। नरेश जी नमस्कार जी, आपको मान योग्य आरजे जी सब शामिल हो रहे हैं, बस हमें छोड़कर जी हमें शामिल नहीं करोगे क्या शिखा दीदी जी, शुक्रिया फिर भी आपका जी, शामिल करें या ना करें कभी, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए भाई, क्यों नहीं करेंगे, आपका ही प्रोग्राम है। और दीदी जी प्लीज नाम पूरा पढ़ दें, फिल्म इन्होंने एक लिखा है तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं वो गाना। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, और शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। और हमारे पास मोहम्मद शादाब खान जी ने मेल किया है, मोहम्मद शादाब विलेज बिलाई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई, गुड आफ्टरनून मैम, क्या और कैसी हैं आप, मूवी का नाम इन्होंने लिखा है और कोशिश है कि हम आप तक मेल मतलब आपके गाने पहुंचाएं। तो भाई क्योंकि गाना जो पहुंचाना है ना वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी नाराजगी हमें थोड़ी देर में मिलने लगती है। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, आप में से किसी की पसंद का है तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी बात 2:45 का वक्त और पढ़ रहे हैं आपके मेल्स और सुन रहे हैं बेहतरीन से ट्रैक आपकी ही पसंद के और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हॉट मेल जिसमें आज आपकी दो शिकायत आपके साथ और अब बारी है कि आपके मेल्स पढ़ने वही जो मुझे लगता है ना कभी कभी जो मेल्स पढ़ती हूँ तो उसमें नाराजगी झलकने लगती है तो नाराजगी मत झलकाइए क्योंकि हम भाई आपके लिए और आपके मेल्स पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं। रामराज जी ने हमें मेल किया है और रामराज जी का मेल हमें लगता है हम पढ़ चुके हैं और उदय भान जी ने हमें मेल किया है कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार किसी भी गीत में शामिल करें और रजौनी जरा महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया। उदय भान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और परिवार और हमारे पास तुलसी मस्कीन जी ने मेल किया है होस्ट मैडम जी हम ऑफिस में बिजी होने के बावजूद भी रेगुलर कनेक्ट हैं अभी तक नो रिस्पांस एनी सॉन्ग में चलेगा बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन। ये लीजिए तुलसी जी आपका नाम ले लिया है और बिल्कुल भी कह देना नाराजगी मत जताइए क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि एक एक मेल करिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल शामिल जरूर करें। और रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है रिस्पेक्टेड होस्ट टाइम इज रनिंग सो प्लीज सी माई मेल बॉक्स ऑल्सो थैंक यू लीजिए हमने सीन कर लिया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रोजी डिकेस्ट्रो जी आपकी जो मेल है वो हमने शामिल कर ली है। बोधराज खोरवाल जी ने हमें मेल किया फिल्म हाँ बिल्कुल हम आप तक कोशिश है कि हम आपका ये गाना जरूर पहुंचाएं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश जी और हमारे पास ताज मोहम्मद जी ने मिल किया आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार आदरणीय प्रसारक जी हम आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने मेल किया है और हमारे पास

जितेंद्र नामदेव जी ने मेल किया है, तो अभी हम पढ़ते हैं इनका मेल। तो हमारे पास मेल आया है जी, बोधराज खोरवाल का हम मेल पढ़ चुके हैं, तो वही प्यारी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि एक एक मेल भेजिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप सभी का मेल शामिल करें। नमस्कार जी, ओम ओम बगरिया जी ने हमें मेल किया है, गांव बांडी फाला फजल का पंजाब से। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया फिल्म इन्होंने लिखी है, और हमारी कोशिश है कि देखिए गाने सब आपके ही प्ले हो रहे हैं, और हमारे पास समय सीमित रहता है, एक घंटे हमारे पास रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक करके हम आपके गाने ज़रूर आप तक पहुँचाएं। राजकुमार दूधी जी ने हमें मेल किया है, गाँव फ्रांसी हिसार से। राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी, तो एक गाना आ रहा है आप तक क्योंकि ये आपकी पसंद का है, तो हम सब इंजॉय करेंगे, और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, स्पेशली मतलब जो आपकी फरमाइशें आती हैं उनको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आप तक।

तो दोस्तों 2:55 का वक्त, और देखिए ना आपके मेल्स जो हमारे पास हैं, और सभी मेल्स हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सभी के नाम जरूर ले लें, क्योंकि आपकी नाराजगी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते भाई। और हमारे पास कौशिक वधावना जी का मेल आया, नवी हसन जी ने हमें मेल किया, संदीप मकर जी ने हमें मेल किया है, रमेश चौहान जी ने मेल किया है, आहिल खान, संदीप मकर, शहरूर नूर अंसारी, पूनम गगनेजा, बोधराज खोरवाल, तेज बहादुर यादव, और हमारे पास उदय भान जी ने हमें मेल किया है, मनोज बंसल जी ने मेल किया है हमें, मोहसिन हाशमी जी ने, रामराज जी ने मेल किया है, तुलसी मस्कीन जी ने, रोजी रिकेस्ट्रो जी ने, और हमारे पास जितेंद्र नामदेव जी का मेल है, राजकुमार दूधी जी ने हमें मेल किया है, और हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल आए हैं, तो कोशिश है कि सभी के नेम्स हमने शामिल कर लिए हैं। और तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपने हमें मेल किया, और माफी भी हम मांग रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के गाने नहीं पहुंच पाए उन तक, लेकिन आपने डेफिनेटली प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। हमारे पास एक सीमित समय होता है, उसी में हमें आपके गीत भी शामिल करने होते हैं और मेल भी शामिल करने होते हैं, लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका ही है। तो आज आपके गाने अगर नहीं शामिल हुए तो कल हो सकता हो आपका नंबर आ जाए। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM ब्रेन, वो धड़कन लखनऊ की, और अगला प्रोग्राम भी आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो बस बने रहिए एहसास और प्यार से, और साथ ही ये ट्रैक जो आ रहा है वो आप में से ही किसी की पसंद का है, तो चलिए हम सब एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक।

दोस्तों नमस्कार, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप इस वक्त आ गए हैं और दिन के 3 बजने के साथ ही शुरू हो गया है प्रोग्राम म्यूजिक आर। गीत भी होंगे, संगीतमय माहौल होगा और इसी के साथ होंगी आपसे बातें मेरे मन की, और फिर जुड़ने लगेंगे तार आपके मन के भी मेरी बातों से, क्योंकि ख्वाहिशें जो मेरे मन में है मचलती कहीं आपके अंदर भी हिलोरे मारती होंगी। ख्वाहिशें जो ना हो तो जिंदगी का स्वाद नहीं आता।

0: फिलहाल दोस्तों तपते हुए दिनों से है अलग आज का दिन। आज है रिमझिम रिमझिम बरसात का दिन। दोस्तों बरसात और ख्वाहिशें बड़ी पक्की दोस्त हैं एक दूजे की। जी हाँ, बरसात का मौसम आ जाए तो कभी सब काम छोड़कर केवल यूं ही निहारिएगा बादलों, पेड़ों और पंछियों को थोड़ी देर, और देखिएगा ना जाने कितने पुराने नए वक्त के पन्ने आते चले जाएंगे आपकी खुली आंखों के सामने, और आप बिना बारिश में जाए भीग जाएंगे नई पुरानी इन सभी यादों में, और चल पड़ेंगे यूं ही फिर एक बार सिलसिले ख्वाहिशों के।
1: अभी अलविदा।

चाहे मगर मुलाकात तो होगी, बस एक ऐसी ख्वाहिश दिल को हर रोज़ मिलने आती है, और हो भी क्यों ना, ज़िंदगी का शायद दूसरा नाम ही ख्वाहिश है। कोई छोटे से ही एक मुलाकात के पल की चाहत करता है, तो किसी के अरमान बड़े ऊंचे आसमान में बादल जैसे उड़ने के होते हैं। और जीवन का खेल कुछ ऐसा होता है कि बड़ी छोटी हर आरजू किसी को मिल जाती है यूं ही, तो कोई समय की धूल से अपनी हर आरजू को धुंधली होते हुए देखता है।

0: कभी तो हंसाए।
1: जी हाँ दोस्तों, इस पहेली को ना कोई पूरी तरह बूझ सका है आज तक और ना कभी बूझ पाएगा। ख्वाहिशों का संसार भी हमारी उम्र के पहिए के साथ साथ घूमता हुआ नए नए रंगों से सजकर हमारे सामने आता है। बचपन में महज जहाँ एक खिलौने तो कभी कोई पेंसिल तो कभी आइसक्रीम में ही सारी खुशियाँ मिल जाती थी, वहीं अब उम्र बढ़ने के साथ आकार और रंगे ख्वाहिश कुछ यूं बदलता है कि उम्र ही कटने लग जाती है मनचाही आरजू को पानी भर में।

इच्छाओं का जिंदगी से तालमेल ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक पूरी होती इससे पहले दूसरी इच्छा का बीज हमारे दिल की नाजुक जमी पर सांस लेने लगता है। इच्छाओं का कोई आखिरी किनारा नहीं होता, मन का समंदर कभी खारा नहीं होता, वहाँ जन्म लेती रहती है मीठी मीठी ख्वाहिशें जो हमें जीने का हौसला देती रहती हैं।

ख्वाहिशें करना गलत नहीं होता दोस्तों, आखिर यही ख्वाहिशें ही तो हैं जो हौसला दिए रहती हैं हमको जीने का, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बस यही चाहत, यही ख्वाहिश है। गुजरे समय में अगर ना देखा होता किसी ने सपना चांद पर जाने का, तो आज कैसा नज़ारा होता दुनिया का।

दोस्तों जीवन में ना हमें हर नए और पॉजिटिव परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहते पूरी हो जाएं तो अच्छा, और ना पूरी हो तो भी अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वक्त हमें सिखा जाता है कि धैर्य रखना होता क्या है, इंतज़ार में आनंद क्या है। और कई बार ये भी सीखते हैं हम कि हर कुछ आसानी से मिलना सही नहीं है।

दोस्तों, मन के संसार को पढ़ने वाले कहा करते हैं कि जो लोग रोजाना वाली जिंदगी, यानी वो दिन जो नहीं होते बहुत खास, हमारी रोजमर्रा की लाइफ, जो लोग इसमें मिलने वाली छोटी छोटी हंसी, छोटे छोटी खुशी के पलों को भी भरपूर जिया करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उन्हें याद रखते हैं, उनके ही पास बड़ी चाहतें पूरी करने का हौसला खुद ब खुद आ जाता है। खुशियाँ हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा होने की खुद ब खुद आती हैं चलकर उनके दरवाजे पर।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों की एल्बम जब देखते हैं हम, उसमें दिखाई देता है एक लंबा बीता हुआ जीवन। तो सोचिए ज़रा, अगर हर दिन हर पल बिना शिकायत बिना उलझन केवल जो हासिल है उसको देखें, तो ना जाने कितनी हसरतें किसी और रूप में यूं ही पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मौजूद है उसकी खुशी भी आपकी है। केवल तलाशते नहीं रहना है जीवन के सागर से ख्वाहिशों की खुशियाँ, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।

दोस्तों, सपने देखना हर एक इंसान का अधिकार होता है और यकीनन उसको पूरा करना उनका कर्तव्य। लेकिन हर अधूरी तमन्ना भी हमें हौसला ही देकर गुजरती है। तो अगर अधूरी हो आपकी भी कोई ख्वाहिश, तो यकीन मानिएगा जिंदगी के अगले मोड़ पर आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
5: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
4: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
6: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
5: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
4: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
5: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
7: एक आवश्यक सूचना सुनिए।

0: कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी

आपको सुनवाएंगे एक और गाना, लेकिन उसके पहले ख्वाहिशों पर एक और छोटी सी बात। ख्वाहिशें तो लहरें हैं सागर की, एक के बाद एक आती जाती हैं। इन्हीं चाहतों के लिए दोस्तों मिर्जा गालिब ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो साथियों, दम को संभाल के रखिए हरदम, जिंदगी खुद ब खुद एक खूबसूरत सपना है, इसकी चमक बरकरार रखिए। बस याद रखिएगा, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको सुनवा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और मुझे दीजिए इजाजत म्यूजिक आर प्रोग्राम से। आज मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त वंदना, मिलते हैं बस थोड़ी देर में आपकी पसंद कार्यक्रम में।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। और फिलहाल ये गीत इतना खूबसूरत था कि वाकई सबकी शाम खुशियों के रंगों में डूब गई है, ऐसा ही लग रहा है। और आपको बता दें दोस्तों, ये गीत हमें भेजा था इसकी पसंद दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अन्विका, तनुश्री। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत सा गीत हम सभी को सुनवाया। और अब शामिल कर रहे हैं अपने और भी बहुत सारे श्रोताओं के ये ईमेल्स जो हमें मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, आप बहुत ही प्यारा हर बार ये मेल लेकर भेजते हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा हो और खुश रहो, खुशियां बांटो। तो आपके लिए भी यही बात हम कहना चाहते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और कुम्भार गली कोलगांव से हमें ये मेल मिल रही है पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्भार की। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल, आपने हमसे फरमाइश करी आपकी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए। तो लीजिए, हमने आपका ये जो ईमेल है बहुत ही खूबसूरत से गीत में शामिल किया है। और ये एक और ईमेल हमें मिली है बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान। तो आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये अगला गाना और बताएंगे किसने भेजी है इसके लिए फरमाइश।

वाकई ये फरमाइशें आपकी इतनी खूबसूरत हैं कि दुनिया ही हसीन लगने लगी है। दोस्तों, हमको आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपकी पसंद 102.2 रेनबो कानपुर के संग। और आपको बता दें, कबूतर जा जा जा ये मैंने प्यार किया फिल्म से बहुत ही खूबसूरत संगीत

की पसंद 102.2 रेनबो कानपुर के संग। और आपको बता दें कबूतर जा जा जा ये मैंने प्यार किया फिल्म से बहुत ही खूबसूरत संगीत पसंद किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम शामिल करते हैं अपने और दोस्तों की फरमाइशें। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हमें ईमेल कर रहे हैं रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति, कमलेश कटेरिया, निशा प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। आपने लिखा है बहुत प्यार से, धन्यवाद बहन जी। तो भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूबसूरत सी ईमेल हमें भेजी और शामिल हुए हमारे इस कार्यक्रम में। गुरमीत सिंह मीता इनकी ईमेल मिली है, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आई है ये ईमेल। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा,

और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से ईमेल भेज रहे हैं। सईद भाई, सुफियान अनस, आयजा, अल्फिया, सदफ, सरोज चौक से, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान और हदिया खान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, आपकी भी ईमेल शामिल कर ली गई है दोस्तों। और एक हमारे श्रोता हैं संदीप मक्कर, ये हमें कहाँ से ईमेल कर रहे हैं, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। साथ में हैं इनके साथी ज्योति मक्कर, मन्नत, भारत मक्कर, कमल सानी, और इन्होंने एक बात ये लिखी हुई जी, आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। अरे बहुत बहुत बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से संदीप जी आपको। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और हमेशा आप यूं ही गाते गुनगुनाते और मुस्कुराते रहें। अनारकली बाजार जगराव से हमें ईमेल मिल रही है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा गव्या और भाई सच्चा सिंह पाठक की।

निकाह फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ महेंद्र कपूर की थी और ये गीत सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने सुनवाया आप सभी को। और लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी की ईमेल आई है। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बहुत सारी ईमेल्स साथियों हमें मिलती जा रही हैं इस कार्यक्रम में और हम लगातार आपकी ईमेल्स शामिल भी कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार हर बार लगातार आपसे अनुरोध करते ही रहते हैं कि कृपया आप एक बार ईमेल भेजिए और थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपकी ईमेल ज़रूर ज़रूर शामिल की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका नाम शामिल ना किया जाए, लेकिन अगर बार बार आप एक ही स्क्रीन पर बहुत सारी ईमेल्स लगातार आपकी होंगी तो हो सकता है कि आपकी ईमेल एक भी बार ना पढ़ी जा सके और आपका नाम शामिल ना हो सके। तो प्लीज़ साथियों एक बार ही मेल भेजिए और इंतज़ार करिए कार्यक्रम पूरा होने तक, आपकी फरमाइश आपका नाम कहीं ना कहीं शामिल जरूर किया जाएगा। फिलहाल हम शामिल कर रहे हैं संबलपुर कांकेर से ये ईमेल आई है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की ईमेल। मोताला बाजार से हैं बबलू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान। मोहाली पंजाब से हमें ईमेल भेज रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आपने लिखा है किसी भी गीत में हमें शामिल करें जी, तो हमने एक बहुत ही प्यारे से गाने में आपको शामिल कर लिया है जी। और नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से ईमेल मिल रही है। मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां,

हत जहां सारिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज और आपने लिखा है हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और शुक्रिया अदा करने का मौका दें। तो जी करिए शुक्रिया अदा। और फिलहाल हम आपको कर रहे हैं शुक्रिया, आपने ईमेल हमारे प्रोग्राम में भेजी। और अब ये ईमेल आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान शिपा और पूजा परिहार की। और अब बढ़ते हैं आगे, सुनवाते हैं आपको एक और बहुत खूबसूरत सा गाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाया हमने, आप सभी की पसंद पर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की ये पसंद थी। ये पसंद, ये जो नाम मैंने बताया दोस्तों, ये शालीमार फिल्म का गीत, जो भी इसकी गीत के पहले आपने सुना उस फिल्म के हमारे पसंदकर्ता श्रोताओं की के ये नाम थे। और जो ये गीत अभी आपने सुना कन्यादान फिल्म से, ये हमें इसकी फरमाइश भेजी थी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन और अमन दीपांशु खोरवाल ने। और अब बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास और आई हुई हैं, इनको हम शामिल कर रहे हैं। आप राजी शर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी शर्मा, सौरव साइना शर्मा और निर्वाण शर्मा, आपकी ईमेल शामिल हो गई है दोस्तों। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और कलीम अंसारी। सहारनपुर से आशा देवी नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पथिक, आपने बहुत ही खूबसूरत सी सजा धजा कर ईमेल हमें भेजी है और बहुत सारी इमोजीज, उसमें सुंदर सुंदर हार्ट्स और उसमें कुछ फ्रूट्स और फल सब कुछ बना के भेजा है जी। बहुत ही प्यारी सी ये ईमेल लग रही है। और

बहुत मेहनत करी है आपने इस ईमेल को लिखने में, और अहमद फूल वाले इनकी ईमेल में मिली है। आप लिख रहे हैं, डियर होस्ट बहन जी आदाब और नमस्कार। जी आपको भी आदाब और नमस्कार। बेहतरीन प्रोग्राम और प्यारे प्यारे नगमे सुना रहे हैं आप, आपका दिल से धन्यवाद। मेरी मेल को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। जी हमारी पूरी कोशिश रहती है साथियों की, आप सभी की, जितने भी हमारे श्रोता हमें ईमेल भेजें, एक प्रोग्राम में हम उन्हें ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। और अगर आपके गीत हम शामिल ना कर सकें तो कम से कम नाम तो ज़रूर शामिल हो जाए। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ एक ही बार अपनी ईमेल भेजिए और फिर वेट करिए, आपका ईमेल ज़रूर शामिल होगा। और आप सभी श्रोता हैं हमारे छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कॉपर सिटी बॉर्डर न्यू दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन। दोस्तों आपको ये बिटिया बहू ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम आप लिख दीजिए। और आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूलवाले फैमिली। छत्रपति शंभाजी नगर से हमें एक ईमेल मिल रही है, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से, सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी। ओ माय गॉड, बहुत छोटा छोटा आपने लिखा है साथियों, बहुत ही छोटा फॉन्ट आपने यूज़ किया है। और लेकिन देखिए मैंने फिर भी आपकी ईमेल पढ़ ली, और आगे से प्लीज़ इसको, इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए और तब भेजिए। बहुत ही प्यारी सी आपने सजा धजा, आपने भी सजा धजा कर ईमेल भेजी है। और हम अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत इस कार्यक्रम का, प्यार झुकता नहीं फिल्म से।

गीत मैंने आपको सुनवाया दोस्तों, मेरठ कैंट से हमारे श्रोता एक हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इनकी पसंद पर ये गीत आप सभी सुन रहे थे। आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं और भी अपने श्रोता साथियों को। मुल्लापुर दाखा से हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से हमारे साथी हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, आप लिख रहे हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। मोताला बाजार से हैं बबलू शेख, शागिर शेख, वजीर सोहेल शेख, सैयद तैमूर, ये ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ दोस्तों। और चौटाला हरियाणा से हमारे साथी हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ईमेल आ रही है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, आपकी ईमेल हमें मिली है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, आपकी भी ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ। गंज डुंडवारा से शमशुल, कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और अनु खान की ईमेल हमें मिली है।

पटेल नगर मलोट से इस गीत को सुनना चाहते थे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। और साथ ही ईमेल शामिल की जा रही है हमारे आप सभी श्रोताओं की। संभाजी चौक न्यू सिडको नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति आशा गायकवाड़, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहान आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ईमेल भेज रहे हैं। मेहरनगर उमड़ खेड़ महाराष्ट्र से ईमेल आई है अभिजीत गमाड़कर राही, श्रीमती सरिता गमाड़कर, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से, प्रणिता सिद्धांत टुक टुक गमाड़कर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से, वैशाली शैलीश, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गमाड़कर परी की। शास्त्री नगर बीड़शहर से ईमेल हमें भेज रही हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल।

साथियों, इस गीत को हमें भेजा था फरमाइश गांव जा खुद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक। और बहुत सारे ईमेल्स हमें लगातार मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, तो सुनवाएंगे अब हम आपको इस प्रोग्राम का आखिरी गाना और बाकी के सारे ईमेल्स शामिल करेंगे इस गीत को सुनवाने के बाद।

साथ ही शामिल कर रहे हैं इस गीत में आप सभी श्रोताओं की फरमाइश। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश और प्रीतेश संघई के साथ पूरा संघई परिवार, और सुधाकर गायकवाड़, ये ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही। पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लाखन लाल, सावित्री बाई देवांगन।

अंश बघेल परिवार की। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार डूडी और बहुत सारे श्रोता हैं जो अभी भी हमें लगातार ईमेल कर रहे हैं। साथियों, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और अब हम ले रहे हैं आपसे अनुमति। मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेनानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों के अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहबाद में आयोजित जनसभा में कहा कि बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी और पानीपत से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रोजेक्ट अलंकार से पुराने विद्यालयों का जीर्णोद्धार और ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए बेसिक स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है। रायबरेली जिला अस्पताल में अर्धविक्षिप्त मरीज को महिला कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आज आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने वाले 8 निवेशकों को औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। ये परियोजनाएं ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, कॉस्मेटिक्स, पीसीबी निर्माण और स्टील फर्नीचर जैसे विविध क्षेत्रों में स्थापित होंगी, जिससे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण प्रदेश में निवेशकों के लिए पारदर्शी, त्वरित एवं उद्योग अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महोबा की जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर सभी गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित शिकायतों और असंतोषजनक फीडबैक पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बिल्कुल, ये है धड़कन लखनऊ की। सलाम नमस्कार, फिर से आपके पास, आपके साथ, आपके रेडियो सेट पर हाजिर हूँ। आपके दोस्त चंद्रकला। 5:04 हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। FM Top 10 आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है, साप्ताहिक हिट गीतों पर काउंटडाउन शो है, यानी कि आज के खास सुपरहिट 10 गाने अपनी लिस्ट के हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं। और आज जो सुपरहिट सेगमेंट है और जो सुपरहिट एफएम टॉप 10 सॉन्ग्स का सेगमेंट है, इसमें मैं किस को लेकर के आई हूँ और कौन से गाने होंगे वो टॉप 10 सॉन्ग्स, जैसा कि हम हमेशा आते हैं और नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉप 10 गानों में से नंबर 10, मतलब सबसे टॉप का जो गाना होगा वो आखिरी में आएगा, तो इसके लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा। लेकिन आज एक रूहानी आवाज हम आपके लिए लेके आए हैं। रूहानी आवाज इसलिए क्योंकि वो जो आवाज है ना, वो लोगों को दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। वो ऐसी आवाज है जो दुनिया के सभी, लगभग सब लोगों के दिलों में राज करती है। ये खूबसूरत आवाज जिसने अपनी आवाज से दिलों को रोमांस सिखाया, अपनी आवाज से लोगों को रुला दिया। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चला कि अरे हम तो प्यार मोहब्बत में थे ही नहीं, तो रोना क्यों आ रहा है अचानक। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आवाज सुनने के बाद आप खुद जान जाएंगे। तो आज के एफएम टॉप 10 प्रोग्राम का ये जो पहला, यानी कि लिस्ट का 10वां गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है, आप इसे सुनिए और तुरंत वापस आएंगे हम नंबर 9 सॉन्ग लेकर।

और ये खूबसूरत आवाज जो आपने सुनी, ये आवाज जो है वो थी अरिजीत सिंह की। और आज एफएम टॉप 10 में अरिजीत सिंह के हम 10 सुपरहिट सॉन्ग्स लेकर के आए हैं, जिनको सुनने के बाद लोग एक अलग सी दुनिया में तो पहुंचे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, जिन गानों को सुनकर के रूहानी सफर में दौड़ जाता है दिल, वो है ये गाने कुछ खूबसूरत आज के प्रोग्राम एफएम टॉप 10 के। नंबर 10वां गाना तो आपने सुना, लेकिन जो नंबर 9th गाना है वो आपकी रेडियो सेट पर आने को है बेकरार। और ये रहा 9वां गाना आपके रेडियो सेट पर फिल्म केदारनाथ से।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: और इसी खूबसूरत म्यूजिक के साथ एफएम टॉप 10 का नंबर 8 गाना आपके रेडियो सेट पर आ चुका है।

बिल्कुल पता चलना चाहिए कि जालिमा क्यों कहलाई आखिर। और ये नंबर 7वां गाना आपके रेडियो सेट पर था और अब आपके रेडियो सेट पर नंबर 6 गाना आ चुका है और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, चंद्रकला है आपके साथ।

और इसी के साथ पिन कोड का नंबर शेयर करते करते, ख्वाबों के अंबर को शेयर करते करते हम पहुंच गए हैं सॉन्ग नंबर 5th पे प्रोग्राम आज के FM टॉप 10 के। और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आज के FM टॉप 10 का 5वां, कहीं खो तो नहीं गए आप।

और इसी गहराई में डूबते डूबते हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं सॉन्ग नंबर 4 पे। और चौथा सॉन्ग आज के एफएम टॉप 10 का एक अलग सी बात कह रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये बात। और ये हालचाल पूछने का अंदाज जो रूहानी है, सुन लीजिए।

और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के FM टॉप 10 के सॉन्ग नंबर 3 पे, और ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
7: बेशक आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा और मुस्कुराते मुस्कुराते आपको इस सफर में हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सफर है FM रेनबो का 100.7 की, आपकी ट्यून की हुई फ्रीक्वेंसी का। और ये फ्रीक्वेंसी आपसे सिर्फ मोहब्बत की, प्यार की, खूबसूरती की और पॉजिटिविटी की बातें करती है और करती है आपके काम की बातें। जैसे ये प्रोग्राम FM टॉप 10 आपके मन का, यानी कि बैक टू बैक आपको इतने खूबसूरत गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का नंबर 2 सॉन्ग ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के

0: डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: शरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: पांच बजकर के 55 मिनट हो गए हैं। FM टॉप 10 ये सुन रहे थे आप। प्रोग्राम आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय है, लेकिन FM टॉप 10 सॉन्ग में से आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का जो नंबर 1 यानी कि टॉप सॉन्ग है, शो स्टॉपर है, वो आपके रेडियो सेट पर रहा ये। और इसी गाने के साथ अब प्रोग्राम FM टॉप 10 को यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो अगला प्रोग्राम है वो आपका अपना है, अपने शहर का है, वो है शाम अवध। बस ट्यून इन करके रखिए, न्यूज ब्रेक के तुरंत उस पार आपसे मिलते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक, स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों या नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्टव्य असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को लेकर विभिन्न माध्यमों में प्रसारित हो रही चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विधान भवन के समक्ष स्थित अंबेडकर महानसभा परिसर में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश के संबंध में संस्कृति विभाग अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का स्थानांतरण संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अस्थि कलश अपने वर्तमान स्थान पर पूरी गरिमा के साथ यथावत सुरक्षित है और इसे स्थानांतरित किए जाने संबंधी समाचार पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। पहली जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित होने वाले वन महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर जिले में 55 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर वन विभाग के संयोजन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर के प्रभागी वनाधिकारी शुभम सिंह के अनुसार सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। एथलीट और निशानेबाज लखनऊ की रचना गोविल ने 49वीं उत्तर प्रदेश राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता दिल्ली के तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में चल रही थी। प्रतियोगिता का समापन आज 30 जून को हुआ। रचना गोविल की इस उपलब्धि पर खेल जगत की हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही।

0: समझे जनाब अली,
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार आप सभी को। प्यार भरा ये खूबसूरत शाम का जो सलाम मैं भेज रही हूँ उसे स्वीकार कीजिए। 6:05 हुए हैं, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, फिर से आ गई हूँ, हाजिर हो गई हूँ आपके रेडियो सेट पर ही सीधे। प्रोग्राम शुरू हो चुका है शाम अवध, ये समय प्रोग्राम शाम अवध का है और हमारी अपनी जमीन का है, अपनी गलियों का है, अपने शहर का है और अपनी धरती का है। ये शहर बहुत कुछ कहता है, ये अवध की शाम बहुत कुछ कहती है। खूबसूरत है, सुकून भरी है, दिन भर की थकन के बाद वापस लौटते परिंदे जो ठंडी ताजी हवा महसूस कर पाते हैं इतनी गर्म दोपहरी के बाद भी, वो और कहीं नहीं इसी अवध की शाम में है। तो बस हम भी हाजिर हो गए हैं इस खूबसूरत और प्रोग्राम शाम में अवध की शान में आज जो पहला गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है वो है ये खूबसूरत सा, इसे सुनिए। तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं अपने शहर की, आपके अपने काम की, खबरों की।
2: दगाबाज रे होए दगाबाज।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: 6:12 हो गए हैं। देखिए, मैं तो एकदम खो गई थी आपको खुशखबरी देते देते, मैंने ऐसा खो जाना था, अभी मैंने बता दिया था आपको कि 12 बज गए हैं, लेकिन 6:12 हुए हैं, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। तो पहली खुशखबरी तो मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि आज से जो है लू का असर खत्म हो जाने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। देखिए, सुबह सुबह सरोजनी नगर हो गया, गोमती नगर हो गया, और बहुत सारे कई सारे इलाके थे जिनमें बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी, और हवा भी चल रही है, और दिन भर आपने देखा होगा कि बादलों की वजह से धूप तो दिखाई नहीं दी। और मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की प्रबल संभावना है आज से, जो है वो लगभग मानसून जो है अलर्ट होने की संभावना है। लखनऊ का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री दिन में और 27 डिग्री के आसपास शाम के समय रहने का अनुमान है। लू का असर आज से खत्म हो जाने वाला है, जिससे जो भीषण गर्मी थी, बाहर निकलते ही मुंह नाक सूख रहा था, उससे राहत मिलने की संभावना है। और आपको पता है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। ऑब्वियसली कहीं कहीं बूंदे आई हैं तो हवाएं ठंडी ही होंगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमने सोचा है कि जब इतनी खूबसूरत हवाएं चलने ही वाली हैं, शाम के समय इतनी खुशी का मौका है कि मॉनसून आ गया। देखिए, इस मौसम का सबको होता है बेसब्री से इंतजार। तो खूबसूरत सा गाना इन हवाओं का असर देखते हुए आपके रेडियो सेट पर तुरंत वापस आते हैं अगली अपडेट लेकर।

और यूं ही जरा जरा हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं समय के उस मोड़ पे जहां पे समय बता रहा है, घड़ी बता रही है कि 6:19 हो गए हैं और खूबसूरत शाम आपकी है और जरा जरा आप बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का आपको पालन तो करना ही होता है। बाकी आप सतर्क हैं, सावधान नागरिक हैं और FM रेनबो से जुड़े हैं तो रोज तो हम आपको याद दिलाते ही हैं। एक खबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं। अब आपको जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लखनऊ के जो भी एप्लीकेंट्स होंगे ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, बंथरा में एक नया ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बना है, वहीं आपको जाना होगा। आपको पता है आज ही से इस सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन जो है होने के बाद यहाँ पर जितनी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस आएंगी वो सब यहीं पे टेस्ट किए जाएंगे। जी हाँ, ड्राइविंग टेस्ट कराने की जिम्मेदारी ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट DTTI को सौंप दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि आवेदक अगर आप हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के तो ये टेस्ट जो है मॉडर्न ट्रैक पर जो भी आपके मानक होंगे उसी के हिसाब से कराया जाएगा। आप जब टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो जाएंगे ना तभी आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दिया भी जाएगा। और ये खबर

और आपको ये भी बता दूं कि आवेदक अगर आप हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के, तो ये टेस्ट जो है मॉडर्न ट्रैक पर जो भी आपके मानक होंगे उसी के हिसाब से कराया जाएगा। आप जब टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो जाएंगे ना, तभी आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दिया भी जाएगा। और ये खबर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी तो बंथरा में ही ये ट्रेनिंग सेंटर बना है, लेकिन पहला सेंटर तो यही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे। लगभग 4 सेंटर ऐसे खोलने की संभावना है। हम सोच रहे हैं कि ऐसे मौसम में और ऐसी बातों में, जहां पर इतनी भीषण गर्मी के बाद थोड़े से मानसून की बात हुई हो, दस्तक दी हो, इतनी खुशी में अपनी खुशी बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए। तो एक खूबसूरत सा गाना फिर से आपकी रेडियो सेट पर, इसे सुनिए, झूमिए, तुरंत वापस आते हैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ।

6:27 हुए हैं और ठीक 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच का आंखों देखा हाल।

0: आकाशवाणी है। आईसीसी वीमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज।

0: अच्छा बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं। देखिए ये ट्वेंटी ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें वेस्टइंडीज पे प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। और यही प्रेशर उनको, यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर टेस्ट खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्टइंडीज जीतते मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो यही मुझे लग रहा था प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं।
1: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी। बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा कैसे देखती है ऑस्ट्रेलियन साइड को?
2: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस्ड टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो।
3: Right, I'll come to you, Rakesh. Since Asha just now mentioned that West Indies is heavily dependent on 3 of their main players, one captain, Hale Matthews, second we have DeAndre Doughton, and third of course we have Stephanie Taylor. Majority of them have not even been able to perform throughout the season pretty well, but they're still the big names. How much of the load will be resting on their shoulders today to shine and prove something for the team? Definitely.
4: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you. One. So, and they have only 2 individuals who've crossed 100. So, there are only 2 guys who've scored over 100 runs. One of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor, so this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they're ruthless. They come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day. History has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. That's why they have such a fantastic record. 6 times they have already had 2 hat-tricks of wins in the same tournament, in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India, they chased down a pretty challenging score, and they did that. So it seems to be quite influenced by that decision.
1: जी बिल्कुल, और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फोन कीजिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342-1085। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने 5 मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस। वहीं वेस्ट इंडीज ने, आशा, पहले 3 मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम 2 मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं, तो 2 लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं। कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
2: मुझे जहाँ तक लगता है उनको, अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी, उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैम्पियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने 1 बार इसको ले रखा है चैम्पियनशिप को, तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है, अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे।
3: ओके, यस अमित, आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस ऑन द लाइन। नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
5: जी राम, स्वागत है,
3: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं?
5: अरे रविंद्र सर, नमस्कार, राजेश राव, नमस्कार,
3: हमारे सारे पैनलिस्ट आपको नमस्कार कर रहे हैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज आप कॉल करने के लिए?
5: हम कहना चाहते हैं कि

0: जितना स्कोर मतलब जो अच्छा रहेगा जीतने के लिए।
1: जी शुक्रिया। कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
2: देखिए स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है, क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है 20 ओवर में आपको पता कुछ भी। लेकिन ये जो अब वेस्टइंडीज के लिए टारगेट है, वेस्टइंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है तो। 150-170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला, तो 180 रन का टारगेट होगा। लेकिन देखिए सेमीफाइनल ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेशर गेम है आपको पता, एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर।
1: राकेश जी दोनों ही सेमीफाइनल केनिंगटन ओवल में होने हैं और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में।
2: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है
1: जी,
2: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्टइंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी दोनों सेमीफाइनल्स में हारे।
1: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहां पर कितना स्कोर बन सकता है वेस्टइंडीज का?
3: मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है, मैं इसको वेस्टइंडीज की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है, और पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पे हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ स्कोर, होना चाहिए 180। अगर आप एक वेस्ट इंडियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे, लेकिन विमेंस क्रिकेट इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसलिए मैं IPL के यार्ड सिक्स से या मेंस क्रिकेट के यार्ड सिक्स से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ लेट्स बी फेयर प्रैग्मैटिक होके अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160।
4: राइट, और एक श्रोता हमारे साथ अमित है।
1: हेलो।
5: हेलो
1: नमस्कार जी।
5: नमस्कार सर,
1: अपना नाम बताइए।
5: हम अमित कुमार बोल रहे हैं नालंदा जिला बिहार से। जी
1: जी, क्या पूछना चाहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं।
5: जी बोल रहे हैं कि सर 140-145 के बीच का टारगेट मिलेगा सर ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए। सर
1: फिर जीतेगा कौन?
5: ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सर, एक तरफा मैच चला जाएगा सर, ये मजबूत टीम है सर वो।
1: आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती?
5: अच्छी लगती तो सर दो मैच ये हार गया हुआ है अभी इंग्लैंड से और आयरलैंड टीम से सर, छोटा छोटा फॉर्मेट में सर ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करता है, भारत हारा सर धीमा बैटिंग करने के वजह भारत हार गया।
1: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
4: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई, और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
1: तो आशा आपको लगता है विमेंस क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
6: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है, बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
1: मैं बता दूं 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन आशा रावत।
6: थैंक यू
4: वाओ नॉट बैड। आपके पास आते हो रवि क्विकली, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करें और सीजन में देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी स्पिन है, 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पड़वाए हैं इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो वेस्ट इंडीज ने लिए हैं सीजन के अंदर वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स। क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
2: देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है, 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक डे की बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, अच्छी फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मिराकल्स होते भी आए हैं।
1: जी थोड़ा बॉलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की, हमें सोफी मोलिनी तो पता है उन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं, पर जैसे किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, किस तरह की वैरायटी है इनके पास?
3: बहुत वैरायटी है, देखिए अगर आपको टेस्ट चाहिए स्विंग बॉलिंग है आपके पास, स्पिन ऑप्शन है आपके पास, देखिए विमेंस क्रिकेट में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर जिस दिन एक बॉलर चल गया, बैटिंग में हम कहते हैं दो बॉलर आपको एक एक बहुत है,
1: पर अलाना किंग को अंतिम 11 में ना रखना, टाइलर मैग्रा
3: लॉन्गर, इट्स बिकॉज़ आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। जिस टाइम इंडिया को हराया और आप सडनली आप किसी को विदाउट रीजन अगर आप किसी को ड्रॉप करते तो सोचिए यहीं पे हम दोनों अभी कुछ और बात कर रहे होते, क्या जरूरत थी। देखिए आप रिपेयर तब करते हैं जब डैमेज हुआ हो, जब बॉल डाउन हुआ हो तो आप अपने घर को रिपेयर करने नहीं जाते, तो ये उनका घर अच्छा है, सेट है सब कुछ, तो आप उसमें क्यों चार्जेस लाएंगे? पॉपुलर डिमांड पे तो आप यू नो चार्जेस नहीं करते हैं।
4: पॉइंट वेल मेड। आशा, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑलरेडी हैवी फेवरेट्स के तौर पर उतर रही है फर्स्ट सेमीफाइनल के अंदर, अगर वेस्ट इंडीज उनको हराना चाहता है आज, तो किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज वेस्ट इंडीज को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ अपनी बैटिंग में बल्कि बाद में जब वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे भी?
6: सबसे पहले तो उनको मतलब ऑब्वियसली उनको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर सेमीफाइनल का प्रेशर लेंगे तो मे बी नहीं होगा, बट वो जैसे मैच खेलते आ रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं, वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो जादू कर सकती है वो, जैसे अगर सब कह रहे हैं कि स्टैट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है पल्ला, उनकी तरफ भारी है, बट अगर उन्होंने कुछ वो कर भी सकती हैं, वो अभी सब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, मैच ऐसे पड़ाव में आ जाएगा कि लगेगा ये वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहा है,
4: कर रही है। हाँ, राइट,
6: हाँ जी, हाँ जी, वही वही मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो, मैं वही कह रही हूँ, मेन जो दो तीन प्लेयर हैं उनकी टीम में जो शेमन कैपेबल है, डी डॉटिन है, और मेन जो कैप्टन है, तो इनमें बहुत दामोदर आज मतलब इनको करना पड़ेगा, अगर ये करेंगी तो आप देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है।
1: तो अगर राकेश हम इस वेन्यू की बात करें, थोड़ा आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए कैनिंगटन ओवल के बारे में, और यहाँ जो दर्शक आ जाएंगे वहां पर मैच देखने, वो इंग्लैंड तो सेकंड सेमीफाइनल में है, आज किसको सपोर्ट कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे,
7: ऑस्ट्रेलिया को नहीं। सीधी सी बात है, देखिए आप अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी होम टीम खेल रही है, होम टीम का फाइनल मुकाबला है, स्ट्रॉन्गर टीम से क्यों, वीकर ऑफ द टू टीम,
1: सो दे वुड सपोर्ट वेस्ट इंडीज, तो एडवांटेज है फिर ये वेस्ट इंडीज के पास,
7: वेस्ट इंडीज के पास क्राउड सपोर्ट चाहे जो भी हो, उनको एक चीज करनी है, अगर आज वो रियली जीतना है तो मेरे ख्याल से उनका जो माइंड सेट होगा, उनका माइंड सेट ये हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत बहुत अटैकिंग में खेलना पड़ेगा, आप डिफेंसिव मोड पे नहीं जा सकते हैं, उन्होंने इंडिया का मैच देखा है,
1: ओके,
7: इंडिया का डिफेंसिव माइंडसेट ने उस दिन इंडिया को मैच हरवा दिया।
1: आपको लगता है ऋचा घोष को पहले खेलने के लिए चाहिए था इंडिया मैच?
7: अब वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, ऋचा घोष ने जब वो ऊपर आके खेली है पहले दूसरे मैच में, अगर आपको याद है पाकिस्तान जो वो खेली है, कमाल खेली है, लेकिन उसके बाद हमने वो रूप उनका देखा नहीं, तो वो तो एक दिन की बात है कि होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ अगर हम वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, उनको पहली बॉल से एक तो अटैक करना है, कैचेस पकड़ने, विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो प्रैक्टिस में जितना पकड़ते हैं उतना वो फील्ड में नहीं पकड़ते,
1: उसका एक परसेंटेज इंडिया में खिलाफ कैचेस बहुत छोड़े हैं,
7: वही मैं कह रहा हूं, मैं विमेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एक पर्टिकुलर टीम की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे उस दिन पाकिस्तान की अगर आप फील्डिंग देखते हैं, कैचिंग सुपर्ब थी उनकी,
4: राइट,
7: कुछ नहीं छोड़ा उस दिन उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया, सो विमेंस क्रिकेट इज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करेगी, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री से हम अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट 11 लोग जो खेल रहे हैं वो एक उस मेंटल स्पेस में है कि वो तैयार है, इंडिया को हरा के आ रहे हैं और एक उस टीम से खेल रहे हैं जो अपने पिछले दो मैच हारी हुई है,
4: राइट, एंड उस इंडिया को जहां पर हम बता दें अपने श्रोताओं को भी कि उस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन बोलर्स आउट देयर, वर एबल टू एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट द ऑस्ट्रेलियंस टू नॉट वेरी फैमिलियर स्पेस ऑफ गोइंग ऑल आउट इन द पावर प्ले। इस हेड स्पेस की जब हम बात करते हैं, हमें बताया जा रहा हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं, मैं सवाल को भी आगे ले जाऊंगी, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।
8: गुड इवनिंग मैडम, मैं राजस्थान की झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ। मैडम
4: अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं?
8: पहले तो आपको T20 विश्व कप के प्रसारण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे इतने लॉयल श्रोता हैं और आप हमारी उस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, शुक्रिया। बताएं क्या पूछना चाहते हैं?
8: मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम को ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आज के मैच में।
4: जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। वेल, द वेस्ट इंडियन टीम नीड्स टू बी माइंडफुल एंड केयरफुल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम। रवि, आपके पास आती हूँ। राकेश उस समय एक पॉइंट रख रहे थे, विच वॉज अ गुड पॉइंट, कि वेस्ट इंडीज को अगर आज जीतना है तो अटैक मोड पे खेलना पड़ेगा। जब हम अटैक मोड की यहाँ पर बात करते हैं, वेल 20 ओवर गेम है, मैं आपका नजरिया या पर्सपेक्टिव चाहूंगी, क्योंकि अटैक मोड पे खेलने में कई बार होता है कि विकेट्स गिरते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप पार्टनरशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू वांट टू गो ऑल आउट, मारते रहना है, मारते मारते भला ही आपके विकेट्स गिर जाएं। कौन सी रणनीति को आप सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट के एंगल से?
2: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते हैं या 20 ओवर तक मारते चले, ये क्रिकेट कभी नहीं होती। पावर प्ले इंडिया का अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे आपको, लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए दोनों जब ऑस्ट्रेलियंस ने जो मैच जितवाया है, 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते। 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग, 10 रन की एवरेज तो कहीं पे भी चेस करना मुश्किल होता, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में डिपेंड करता है आपकी

0: बॉलिंग कैसी है आप में, जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपके बॉलर सेट नहीं थे। अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे तो 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए। पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इस वजह से मैच जीत गए। बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट लूज नहीं करिए। उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60-70 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप पहली बार 2-3 विकेट निकल गई तो आपको जो 180 रन का टारगेट वो 100 रन का टारगेट।
1: देखा इंडिया मैच में जिमीमा खेल रही थी लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हुई ताकि रिचा आए। क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज, जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
2: देखिए वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूँ अटैकिंग दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद करके बल्ला घुमाना है।
1: ओके
2: मेरा मतलब ये है कि आपको आपको डॉट बॉल्स नहीं छोड़नी है। डॉट बॉल क्राइम है। आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को अटैक करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप चेंज करते रहिए। वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे। ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से। यू हैव टू कीप देम यू नो इन सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है।
1: आशा कैसे क्रिकेट बदला है, और राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं।
2: एक नहीं, मैंने कहा डॉट बॉल्स कम से कम।
3: ये T20 आ गया ना, तब से तो डॉट बॉल मतलब जिसने डॉट बॉल खेली वो क्राइम है।
1: नहीं पर करेक्ट, पेड़ तो
4: स्ट्राइक रेट डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी खास तौर से। ट्रू इट कम्स इनटू प्ले,
1: बट सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे पेड़ लगता है।
4: गुड पॉइंट अमित, वेल मेड। वेल ओके, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है। डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल्स हिट करते हैं। वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल्स हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं। मैं मेल क्रिकेट की बात कर रही हूं, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ दूसरी तरफ रवि कहते हैं फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें?
5: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो सिचुएशन में करता है सबसे पहले। फिर ऑब्वियसली T20 खेल रहे हैं तो आपको लॉफ्ट ये सब कुछ चीज़ करनी ही पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है आपका गेम। कब आपको, अगर आपको लग रहा है कि सिंगल से बन रहे हैं रन तो आप सिंगल करेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं है।
1: और आशा आज ऐसा नहीं है कि इंडियन एंगल नहीं है, अभी जब दोनों टीमें बाहर आ रही हैं, एम्पायर्स आ रहे हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी है वहां पर, हमारे जो अंपायर हैं, मैच रेफरी।
3: अच्छा वो
4: इंडियन रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं।
3: राइट राइट राइट।
1: राकेश
5: और ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही हैं, रेलवे से खेली जब मैं, तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर हैं।
1: थोड़ा उनके बारे में बताइए।
5: ये लक्ष्मी, ये बहुत अच्छी स्विंगर बॉल थी, बहुत अच्छा बॉल करते थे, मतलब इनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है, पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने नॉर्दर्न से और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से।
1: और राकेश पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो करता है जब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता है, खिलाड़ी के साथ साथ चाहे मैच ऑफिशियल्स हों, सारे अवसर मिलते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए अभी मुझे याद आ रहा था जब हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप विमेंस का, लेट 1997 में जिस हफ्ता टूर्नामेंट शुरू होना था उस टाइम होता था विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन WCA, उनके पास होटल बुक करने को या उनको एडवांस देने के पैसे नहीं थे, सो दे वेंट टू हीरो एंड उन्होंने कहा कि अंकल हमको कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो पवन मुंजाल के जो डैड हुआ करते थे, उन्होंने कहा बेटा इनको कुछ पैसे दे दो। तो सेक्रेटरी और वो थे, उनको पता नहीं लगा क्या दिया जाए, एक 50 लाख का चेक दे दिया गया था, अकाउंट नहीं किया गया था, उन्होंने कहा बेटा पहले आप होटल बुक करो। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, WPL आ गया, वुमेन्स क्रिकेट के वुमेन क्रिकेटर्स को लोग पहचान रहे हैं, यू नो। और ये जो चेंजेस मैंने देखे हैं, मैंने एक ज़माने से मैंने देखा है, यू नो शांति रंगास्वामी के टाइम पे जो हम सुना करते थे डैन एडिल जी, उसके बाद एक न्यू जनरेशन के आए, यू नो 90s में अगर आप देखें, लेट 90s में विनोदी देसाई कैप्टन, इंडियन टीम वाज डूइंग वेल, एयर इंडिया की टीम अच्छी हुआ करती थी, ये सब। अब आप देखिए, आप लोकल टीम्स या स्टेट टीम भूल गए, अब आप WPL की टीम्स को याद रख लें।
1: yes.
2: So, पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, तो तब से हुआ है जब से BCCI आई, और जब से जयशा आए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मूव. उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को जो फायदा हुआ है उसका फायदा हमें अब मिल रहा
4: है. राइट, एंड जस्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड, वी टॉकिंग ऑफ इकोसिस्टम ओवर हियर, द होल स्पिरिट ऑफ द गेम, दैट द विजुअल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेडियम राइट नाउ, वेल सरप्राइजिंगली एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज, हमारे सारे लिसनर्स के लिए हम आपको बताएं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट नहीं आया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट इंडियन सपोर्ट भी आज देखने को मिल रहा है. रवि, क्विकली आपसे पूछूंगी, एक बहुत खूबसूरत टीम है जब आपके सामने एक ऐसी दिग्गज टीम हो जो हैवी फेवरेट्स हो, लेकिन सपोर्ट के नाम पे आज इतना ज्यादा वेस्ट इंडियन सपोर्ट और क्राउड टर्न आउट हुआ है टू सपोर्ट देयर फेवरेट्स आल्सो.
0: डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, अपनी टीम को सब सपोर्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फेवरेट से खेल रहे हैं कोई भी खेल रहे हैं. आयरलैंड की टीम ने आपने देखा कैसे सब उनका आए और कैसे इंडियंस को कैसे हरा के गए हैं. होम टीम है, उनको सपोर्ट करना चाहिए. और अब बाकी आप थोड़े दिन देखते हैं कि मैच का क्या रिजल्ट
1: आता है. जी आशा, जब ये फ्लैग्स ले आउट करते हैं गूज़बम्स आते हैं जब राष्ट्रगान होता है तो?
5: बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं होती ये चीजें. ये बस आपका जिस जज्बे से आप खेलते हैं ना इंडिया के लिए, बस वही जज्बा रहता है.
1: आशा को जब इंडिया कैप मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, तब क्या यादें हैं?
5: वो यादें क्या है ना कि उस समय मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा चाव नहीं था कि मतलब क्या होता है, मतलब खेला, रिप्रेजेंट करा, उसके बाद धीरे धीरे लगा कि यार किस मुकाम में हम, हमने इंडिया खेला है. उस समय ऐसे लगता था अच्छा खेला, ठीक है, गुड
1: जी. बस चलिए अंतिम सवाल आप सबसे, राकेश आज कितने रन बन सकते हैं वेस्ट इंडीज के और कौन जीत रहा है आज, क्या कुछ हो सकता है?
2: मैन ने तो ऑलरेडी कहा है कि 150-160 मैक्सिमम, 8 रन एज एन एवरेज में लेके चल रहा हूं, एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन.
1: ऑस्ट्रेलिया विल विन. रवि जी,
0: लगता तो ऐसे ही है कि 140-150 बनाएंगे, अगर 180 तक बनाते हैं तो एक मैच अच्छा हो सकता है.
1: आशा जी?
5: मेरा भी यही है, 160-165 चाहिए अगर अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा हमें.
1: और बीच वाला जो मैच है राकेश, उसे हम कहते हैं फ्री हिट 20. आपको लगता है नो बॉल होंगे, कुछ फ्री हिट्स भी मिलेंगे?
2: बिल्कुल मिलेंगे.
1: जब फ्री हिट होती है तो बल्लेबाज क्या सोचता है, क्योंकि आप तो राइट हैंडेड टॉप बैटर है,
5: तो वो जो सब सोचते हैं ऑडियंस सोचती है ना, वही बैट्समैन भी सोचते हैं.
1: लेकिन उसमें स्टंप हो सकते हैं क्या फ्री हिट पे?
5: उसमें रन आउट होता है केवल,
1: स्टंप नहीं हो सकते, नहीं. सिर्फ रन आउट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है. पर आप क्या सोचते हैं कि छक्का ही मारे कोई भी बॉल आए?
5: नहीं, हाँ मतलब उस बॉल में तो सब सिक्स मारने के ही सोचते हैं ना.
1: चलिए जब फ्री हिट 20 आएगा तो उसमें देखेंगे कितनी नो बॉल हुई. फिलहाल इस कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव आपका और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच.
6: First ball 20.
7: For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action.
8: Good evening, and we have reached the business end of this World Cup. The semi-finals, much awaited action begins at the Oval. The former champions Australia and West Indies, who had the 2016 win defeating Australia, but it's been Australia who'd been champions for a very long time. So it's going to be an intense battle between these two sides. And this morning the temperature at the Oval, it's about 23 degrees Celsius, might reach up to about 27-28, but then a look at that pitch really made a statement that it could probably have a variable bounce. The spinners might have some kind of a role to play, and the top surface remains a bit greenish, but underneath that it's going to be a dry surface. And must say that the team that wins the toss, it was almost a foregone conclusion that they will bowl first, and it's Australia bowling first on this particular ground. And just to say this, that when we look at the two sides here, the Australian team has gone completely unchanged, whereas the West Indies side had one change as far as the spinners are concerned. Let me look at the Australian side for the moment right now. Beth Mooney, Georgia Wall, Lynchfield, Elsie Perry, the most experienced cricketer. We'll be looking forward to seeing her again here. And then Ashley Gardner, Georgia Wareham, Annabel Sutherland, Nicola Carey, Sophie Molyneux, the captain, Lucy Hamilton and Kim Garth. So this is the Australian team, and the West Indies team, if I look at, there's been one change. One of the spinners, who was Ashwini Munisar, has been replaced by Karishma Ramharak. And the reason for that is because there are a good number of left-hand bats that batters in the Australian side, and that's the reason why we find that the off-spinner has been introduced. And talking of introduction, let me introduce our senior commentator with us, Sanjay Banerjee, to take you through those few moments of excitement before the first ball is bowled. Hello, Sanjay.
6: नमस्कार प्रेम और बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं. सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के सामने हैं, बहुत बड़ा मुकाबला है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए. अगर वो जीतते हैं तो ये उनका

0: This is an outside the leg stump delivery, should be a wide definitely. Mooney had to really go to her right and pick up the ball. She's a good keeper behind the stumps, very, very flexible and very agile. And she saves the blushes because that is wide outside the leg stump. And the score remains with one more to 8 for the loss of no wicket. So one extra delivery, one extra wide. Here is Hamilton bowling this one, which is just about on the off stump. The loosely held bat played onto the offside to the backward of point. And the score is 8 for the loss of one wicket after one over.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Over to Sanjay. Sanjay, wonderful first over.
4: बिल्कुल, अगर आप वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो एक अच्छा ओवर, और जहां तक शुरुआत का सवाल तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को, ऑन द स्टंप्स फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला शुरुआती ओवर में। हालांकि हवा तेज है वहां पर, किम गार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है, दूसरा ओवर है, और मैथ्यूज जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी। पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं। अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स। उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का, और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है। वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में, और किम कॉटन है उनके साथ जो कि न्यूजीलैंड की, 8 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी। मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, किस्मत अच्छी। और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे। समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी। शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through the third man region, through the slip cordon, and that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder, Sanjay, that was close.
4: एक नजदीक मामला हो सकता था, और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेम को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं। लेकिन पावर प्ले है, और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप पर टप्पा डाल रही हैं, और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर। एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए, और आप उसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे स्लिप के, और वहीं से उन दोनों के बीच से वो कैच निकलता हुआ। गार्थ ने अब तक 5 रन दिए हैं, वेस्ट इंडीज ने 13 रन बना लिए। अच्छी शुरुआत वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और खासतौर पर मैथ्यूज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमती हैं तो फिर किसी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जोसेफ उनका कितना साथ देंगी। 3 गेंदों पर अब तक 1 रन बनाए हैं, मैथ्यूज ने 7 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर ये जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी नहीं तोड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सफर आसान नहीं रहने वाला है। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल मानी जा सकती है, हारने के लिए किसी भी कमजोर टीम से हार जाए और हराने के लिए दुनिया की मजबूत टीमों को भी शिकस्त दे दे। हल्के से इस गेम को खेलना चाहती थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाई, लेकिन कोई रन नहीं, सुरक्षित अपनी जगह पर। तो इस लिहाज से गार्थ का ये बेहतर ओवर, अच्छा ओवर कम से कम। जो स्टंप्स लाइन की डिलीवरीज लगातार मैथ्यूज के लिए डाली जा रही है, और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बैटर को बहुत ज्यादा खेलने की आजादी दे देंगे, स्ट्रोक्स की आजादी दे देंगे, तो फिर रन्स बनने की शुरुआत होगी और फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा। जोसेफ एक रन

0: और मैथ्यूज 11 पर ये गेंद और इस बार मोड़ दिया है, गेंद फिर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद फील कर ली गई। मौका यहां पर रन बनाने का, दौड़ करके दो रन पूरे किए 15 दो ओवर के बाद।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: The first two overs we've seen the West Indies batters playing with consumaties. They're not in any kind of bother. They are playing with comfort, and I think the Australian bowlers have to now apply themselves and pitch the ball in the right area. This is more important on a pitch where, you know, the first half you will have to keep the batsmen or the batters guessing and keep them in business. Both Hamilton and Garth have tried their best. Hamilton looking a bit pedestrian today, but Garth did bowl well. But the batters were even cleverer. They overwhelmed and made sure that they took advantage of the ball being slightly short, go back into the crease and play the ball. Here is Mullinox coming in, the captain of the side now, left arm. And that ball comes in with the arm. And the batter was so clever. Matthews off the back foot plays it down into backward point. The ball hits the fence, 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: संजय, व्हाट अ शॉट,
0: कमाल के स्ट्रोक्स। और जो भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो विकेट के पीछे, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि रन्स बन रहे हैं। अभी तक स्ट्रेट नहीं खेला है, वी पर नहीं खेला है।
2: But then that ball was an arm ball, but then going back into the crease and cuts it brutally through the backward point region. Here's Molyneux. Next one. This time she steps and plays it across the line. That ball sure going to the square leg fence. 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
0: कप्तान का जबरदस्त इस्तकबाल किया, लगातार दो गेंदों पर दो चौके। रफ्तार बहुत नहीं है, 78 के आसपास, और उसका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़िया शॉट खेला ऑन साइड पर, लगातार दूसरा चौका।
2: Matthews' highest score this World Cup has been 48. She's played all the 5 matches, averaging 23, strike rate of 97. She has to keep that better. Here's Molyneux bowling in. This is striking a pads outside the leg stump. And I think Matthews is clear in an intent that she is going to strike and make sure she exposes the fielding side in the first 6 overs and gets all the gaps through and playing in the areas where the fielders are not there on the fence. This time bowling and pushing the batter on the back foot, but she's clever enough to play it across the line to mid-wicket deeper. And there is a fielder outside the 30-yard circle who picks it up, and one more run taken. The strike rotation is very important because you've got a right and a left-hand batter in the center. And this over has seen a couple of boundaries which the captain won't like, Molyneux. And she's now placed the fielder there on the fence at the long on and one at the deep square leg. Rest all inside the 30-yard circle. There is no slip at all. The keeper right up to the stumps. Here's the left-handed Joseph facing the next delivery. Slightly back of the length. Plays it down into mid-on. Crosses over for a single. Takes the score up by one more to 25 for the loss of no wicket. One more delivery to complete the third over. So far, the run rate looks to be pretty healthy. 8.82. We are in the third over. And till the sixth over completes, you can't have more than 2 fielders outside the 30-yard circle. Here's Molyneux bowling this one outside the off stump, and the batter goes, creates width, plays it down into backward point, well fielded. End of the third over. West Indies 25 for no loss.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। वेस्ट इंडीज ने अब तक एक भी विकेट गवाया नहीं। एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। थोड़ा सा परेशानी का सबब है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसके पास बल्लेबाजों की एक सॉलिड फहरिस्त है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन, 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने। अब वेस्ट इंडीज का वही मिला जुला प्रदर्शन, 2 मैचेस हार गए, इंग्लैंड से हारे चलिए अलग बात थी। जहां अच्छी शुरुआत की कोशिश, गार्थ का दूसरा ओवर, और ये एकदम सेट पैटर्न है ऑस्ट्रेलिया का। शुरुआत में वो अपने दोनों ओवर से, दोनों गेंदबाजों से दो दो ओवर्स करवाते हैं, फिर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। हल्का सा केवल गेंद को प्लेस किया था, कोई रन नहीं। चौथा ओवर शुरू। मैथ्यूज, आपको याद होगा 2023 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन किया था। रेबल सदरलैंड को दो विकेट चाहिए 50 विकेट्स पूरे करने में T20 इंटरनेशनल में, और इसी तरह से कैम्बल को 13 रन चाहिए 500 रन बनाने में T20 वर्ल्ड कप के बीच। सॉलिड शुरुआत वेस्ट इंडीज की। पहला सेमीफाइनल विश्व कप का गार्थ, और इस बार अपने स्ट्रोक को चेक किया, काफी धीमी गेम अपेक्षाकृत, और पहले ऐसा लगा कि जैसे वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया। डॉटिन को किसी तरह की चोट दिखाई दे रही है प्रेम, ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं पैर में, मांसपेशियों में खिंचाव है।
2: बट डजंट लुक टू बी वेरी सीरियस बिकॉज़ वी प्रोबब्ली हैवंट गॉट एनी अपडेट ऑन हैज दैट बीन एनी सीरियस, बिकॉज़ हैड इट बीन सीरियस आई थिंक देयर शुड हैव बीन अ क्लियर अपडेट। संजय,
0: बिल्कुल इंतजार है उसका, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाज है टीम की, और इस बार शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ा सा लेट आई स्ट्रोक के ऊपर, और इसीलिए कनेक्शन सही मिला नहीं, गेंद को बल्ले के बीचों बीच मेडल किया नहीं, सिर्फ एक लौता रन। मैथ्यूज अब स्ट्राइक लेंगी 20 की व्यक्तिगत रन संख्या के साथ 12 गेंदों के बाद। गार्थ की गेंद सीम के सहारे आमतौर पर टप्पा डालती, और लगातार एक हल्का सा मूवमेंट, पिछला ओवर भी हमने देखा था, उनकी गेंदों पर हरकत है और उसका वो पूरा फायदा लेना चाहती हैं। रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी 7.5 के आसपास का औसत है, एक बेहतर स्थिति कही जा सकती है, बशर्ते कि आपने कोई विकेट ना गवाया हो। देखिए मिडिल स्टंप पर एकदम स्टंप टू स्टंप अटैक, बिल्कुल आजादी नहीं दे रही है दोनों बैटर्स को, और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज का स्कोर थोड़ा सा रुक रुक कर बढ़ रहा है। जिस तेजी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेजी फिलहाल नदारद है। हालांकि पावर प्ले चल रहा है, पहले 6 ओवर्स में आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, उठा करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार स्टंप्स पे अटैक करेंगे तो फिर मुश्किल होता है। और वैसे भी हेली मैथ्यूज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, खासतौर पर गेंदों को उठा करके खेलने के लिए जानी जाती हैं, आज थोड़ा संभल कर खेलती हुई। कप्तानी की पारी 2023 का मैं जिक्र कर रहा था, 64 गेंदों में 132 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। सिर्फ 2 मैचेस वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, एक तो विश्व कप का फाइनल। ओहो, इस बार फिर गेंद को थोड़ा सा उन्होंने रोक करके डिलीवर किया गार्थ ने, काफी इंटेलिजेंट बोलिंग आप कह सकते हैं, और तमाम खिलाड़ियों ने उसकी दाद दी। बढ़िया गेंदबाजी, अब तक सिर्फ 1 रन इस ओवर में, और जब आपके रन नहीं बनते हैं तो बैटर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। समझ नहीं सकी थी गेंद को क्या करना चाहती हैं, एन वक्त पर किसी तरह से रोकने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी, हवा में थी, लेकिन किस्मत साथ थी कि कोई भी नजदीकी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, मैथ्यूज 20 पर और जोसेफ खेल रही है 5 पर। वेस्ट इंडीज ने अपना कोई विकेट अब तक गवाया नहीं, 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रही है वेस्ट इंडीज की टीम। गार्थ इस ओवर में आखिरी बार, उनकी ये गेंद और इस बार थोड़ी सी शॉट, और गेंद को हल्के से केवल खेला स्क्वायर लेशा में एक लौते रन के लिए, 4 ओवर के बाद 27 बिना नुकसान।
2: So well, we've seen 4 overs 27 without loss, and I've seen that last over from Garth, she was able to at least take the pace of the ball and confuse the batter, and the captain of the West Indies side, she was a bit surprised in their very fifth delivery where there was a bit of a variable bounce. Lucky she is still on the crease. Just to tell you something interesting, as far as West Indies and Australia are concerned, they have clashed against each other 19 occasions in T20s, whereas 17 occasions Australia has won, and just 2 occasions where West Indies have won against them, including the famous 2016 World Cup where West Indies were the champions. So they will have to recreate the scenario. I mean, there is no good or a bad team on a day. It's how you take the opportunity. Here's the first delivery from Hamilton, from over the wicket, bowls in to Matthews. Matthews a little surprised at the way the ball just rushed into her. There was a low bounce and she just plays it down into the bowler who collects it from slightly wide off the pitch there, and no runs taken. Fine, wonderful weather at the Oval. England experiencing almost 23-24 degrees with a good amount of breeze, cross breeze.

0: end of the bat and goes up in the air. Very lucky to survive. There were three fielders. If that had come into the palms of any one of them, it would have been curtains for Matthews. She had a rush of blood, adrenaline rise there, and that made her play. So we had Ash Gardner who picked up the ball at the fence area, but then that just fell about a couple of feet ahead of her. Here is Hamilton bowling over the wicket, and this time again a shot which was uncontrolled, trying to play slightly more straightish, but gets the inner edge of the bat and goes down into the square leg region, back of the square to be perfect, and no runs taken. Well, Hamilton may not look to be has the tricks up her sleeves, and I'm sure that they can trouble the batters. But what you've seen so far in the fifth over, which is ongoing, that West Indies batters have at times been bothered. But here's the next one to the left-handed Joseph. The ball goes very close to the bat, almost over her right shoulder after pitching on the short of a length spot, and no runs taken. There was a mild appeal, a faint appeal by the keeper, but the captain has decided now there's probably no edge from the bat there. And just to be very careful, because they got two reviews each in this match here, both the sides, and they have to very cautiously use that. Hamilton, who's a left-armer, did pitch that ball, the last one on the seam, and that went over the shoulder of Taylor, and rather Joseph, and it wasn't far away from the edge of the bat, and that really had called for a good appeal, but no, that hadn't contacted the bat. It just went slightly over. Here's Hamilton for the fifth time in this over into Joseph, and Joseph plays that one almost dragging the ball from outside the off stump to a short pitch delivery, but just couldn't put sufficient energy behind that, and the ball goes into the mid-on region, and no runs taken. So well, West Indies, who had lost two matches earlier in the league stage, who would have really known that they would reach the semi-finals? It was a clash between India and South Africa on that final match, but then Australia won comfortably against India. Here's the next delivery, which is again going across, but then misses, and the fifth over completes, and Joseph on 5, Matthews on 22, West Indies 28 for the loss of no wicket.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: चलिए, नए ओवर की शुरुआत हो रही है। जहां तक वेस्ट इंडीज का सवाल है, ऐसा लग रहा है कि जोसेफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है रनों के मामले में। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। 13 गेंदों में सिर्फ 5 रन बना सकी हैं जोसेफ। 28 है वेस्ट इंडीज का स्कोर। ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 ओवर्स में रनों की जो रफ्तार है वो लगभग थम सी गई है। पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 रन बने हैं। हमारी स्कोरर शमा सानी की ये जानकारी, और जाहिर है कि एक प्रेशर बिल्कुल साफ दिख रहा है जोसेफ के ऊपर। खुल करके खेलना होगा, ये पावर प्ले है। अगर आपने इसका एडवांटेज नहीं लिया तो फिर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, इस बात का ख्याल रखना होगा। रनों की जो रफ्तार एक समय 7.5 के ऊपर थी, अभी 5.6। चलिए, बढ़िया प्लेस। हालांकि डाइव किया था गेंद के लिए, उनकी पहुंच से बाहर, चौका।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: Well, that was the fourth boundary and escaping the outstretched hands of Georgia Wall. Well, a far distance away from her, there was nowhere close to that, but good thoughts, Sanjay. She just played it very late.
4: चौका मिला गार्थ की गेंद पर। गार्थ का पिछला ओवर याद होगा प्रेम, सिर्फ इकलौता रन बना था उनके पिछले ओवर में। तो बहुत ही किफायती और अच्छी गेंदबाजी कर रही है, इंटेलिजेंट बोलिंग लगातार वेरिएशन के साथ, विविधता है उनकी गेंदों में। और इस बार पैट्स पर गेंद देने की कोशिश, लेकिन हल्की बैकलिफ्ट के साथ सिर्फ अपने से दूर धकेला इकलौते रन के लिए। हैली मैथ्यूज, अगर आप इनकी मजबूती का जिक्र करें तो उठा करके स्ट्रोक खेलती हैं, लेकिन अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही। 2016 वर्ल्ड कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप इनका औसत देखें तो वो 100 के आसपास है। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा रन 6 मैचेस में। तो हेली मैथ्यूज

0: बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं ऑस्ट्रेलियन बोलर्स पर, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भले ही विकेट नहीं निकाला हो लेकिन रनों की रफ्तार पर अंकुश किया। इस बार लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और इसे हल्के से केवल खेलना चाहती थी। जाहिर है अगर लेग स्टंप से बाहर जरा भी गेंद आएगी तो वाइड का इशारा आएगा। एक अतिरिक्त रन अतिरिक्त बढ़ते हुए पहुंच गए हैं 2 पर 19 गेंदों पर 27 मैथ्यूज के, और 14 गेंदों पर सिर्फ 5 रन हैं जोसेफ के। तो ये स्थिति कतई अच्छी नहीं है जोसेफ के लिए। एक अच्छी ऑलराउंडर के तौर पर उनका शुमार है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज शायद डॉटन का एक बेहतर विकल्प यहां पर हो सकता था अगर आप उनसे पारी की शुरुआत करवाते, क्योंकि डॉटन भी अपनी लिए पारी की शुरुआत करती। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी लेकिन कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जगह पर खड़े होकर के गेंद तक जाने की कोशिश की। रिफ्लेक्सेस बढ़िया नहीं दिखाई दे रहे हैं आज कम से कम कियान जोसेफ के। अच्छी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया विकेट्स की तलाश, वेस्ट इंडीज को रनों की जरूरत। 6 ओवर चलता हुआ, पावर प्ले अब खत्म होने को है और सिर्फ 33 रन बोर्ड पे लगे हैं। जोसेफ तैयार, गार्थ का ये इस ओवर की 5वीं गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और लगातार उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर रखी है गेंद। काफी ज्यादा विड दी थी, स्ट्रोक खेला और उस विड का पूरा लाभ लेने की कोशिश की। गेंद हवा में थी, कोई खिलाड़ी वहां था नहीं और गेंद जब तक फील करती मॉलिन्यू, रन वहां पर पूरी तरह से दौड़ करके हासिल किया। पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं, लेकिन एक गेंद के बाद जब फील्ड थोड़ी सी फैल जाएगी तो फिर आपके लिए गैप्स होंगे रन लेने के लिए। आप एक एक सिंगल्स करके या 2 रन की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उछाल करके स्ट्रोक खेलना आपके लिए जोखिम से भरा हो सकता है। 34 बिना नुकसान वेस्ट इंडीज। आखिरी गेंद गार्थ के ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी और लगातार गेंदबाजी कर रही गार्थ, और इस बार फिर पटका है गेंद को, निकाल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। डाइव किया था गेंद के ऊपर, उसकी गति को कम जरूर करने में कोशिश की हैमिल्टन ने। 6 ओवर के बाद 35 बिना नुकसान वेस्ट इंडीज।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: The power play completed and it's not been a good performance by the West Indies batters. 17 deliveries for Joseph to get those 6 runs. That will tell you the state of affairs, that she's been rather struggling to play the seamers and the spinners. So the power play sees 35 for no loss, just 4 boundaries in that, which means the Australian fielding had also been very apt for the bowling. There were obviously some of the deliveries which were considered to be not so appropriate, but the fielders have overcompensated for any of those deliveries which the batters were trying to play on. And now the fielders will go out of the circle 2 more to make it 4. And now, as Sanjay said earlier also, that you can really now pick up the gaps, because now the power-packed offside field will get slowly spreading off, fielders getting to the fence. And now let's see what kind of field setting is she going to have, because
3: the cricket commentary.
4: Perkins at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Germany head coach Julian Nagelsmann wants to continue in his job despite his team being knocked out by Paraguay. The South American side won 4-3 on penalties after a 1-1 draw in Boston. It means Germany have failed to reach the last 16 each of the last 3 World Cups. Nagelsmann's insisting the future is positive.
5: We have a lot of talented players, young talented players, but they will need time. It's the same like in the clubs as well. When you look at Manchester City, Liverpool, took a long period of time until they can achieve big things. And sometimes if you do big changes, it took time and then it could be better in the future.
4: Paraguay will face either France or Sweden in the last 16. They play later on Tuesday. South American football.

0: Expert Tim Vickery says Paraguay have recovered well from their 4-1 defeat to co-host USA in their opening game.
1: The Paraguayan defensive line, they're like a collection of nightclub bouncers. Your name is not on the list, you're not getting into the penalty area. And then they chose that game to take a collective night off. But so often, not only in football but in life, a huge part of a success story is failure. And that defeat, I think it did them the world of good. And the whole team became nightclub bouncers against Germany.
0: Morocco are celebrating penalty shootout success too. The semi-finalists from 4 years ago eliminated the Netherlands on spot kicks after a 1-1 draw in Monterrey. Tuesday's other ties in the last 32 see Norway play Ivory Coast for the right to face Brazil and co-host Mexico take on Ecuador. The winner of that match will play the winner of England's game with DR Congo, which takes place at the tournament on Wednesday. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: World Football Update from the BBC.
3: From the opportunity, Gardner comes in. Ash Gardner, again a very good bowler, as she comes in over the wicket and bowls into Matthews, wrapped on the pad, but the line is clearly outside the leg stump and no use even appealing, not even looking at the umpire for that. She was trying to play across the line. So we've got four fielders, one backward or square on the onside, mid-wicket, long on, long off, protected. We've got a leg slip, three on the offside, on that is the backward of point, covers, extra cover. Here's the next delivery, bowled on the off and middle stump, played across the line by Matthews for the fielder at the backward of square to pick it up. There is protection there. And one more run taken to move the score at snail's pace up to 36. As we said, five boundaries. That's absolutely really unexpected of a side which is reaching the semi-finals, because if you don't score about 45 plus in the first six overs, then certainly you're going to be under trouble. Here is Gardner bowling around the wicket to the left-hander. This time a smashing stroke and straight into the hands or dropped. Goodness me, it was into the hands. And Wall dropped an opportunity. Sanjay, that is absolutely a regulation catch gone down.
4: बहुत ही आसान कैच था, बहुत ही आसान कैच था. ऐसा लगा था कि वो शायद गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन कैसे बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर के उसे पूरी तरह से हाथ से छोड़ दिया.
3: That was the inverted cup catch that the Australians are good at. And Joseph gave a wonderful opportunity, and she was almost 5-6 yards inside the fence. As here's the next delivery, by the time the batters have taken a single, and Matthews faces the next one absolutely on the stump line, plays it across the line, and no runs taken. What an opportunity. Both of them have been dropped once, and this was the easiest of all. I'm sure Wall will certainly have to rethink. This should not get expensive. The fifth delivery of the over, Gardner comes in over the wicket, balls in to Matthews. Matthews of the back foot wants to strike on the offside, but then misses the line of the ball completely. Probably that extra little bounce of that ball took the ball over the bat there, and no runs taken. So very good over so far from Ash Gardner. Last delivery, here's the one which is given a bit of a bit, but what a feeling there at point. And once again Wall picks it up, and 37 for the loss of no wicket after 7 overs, just about 2 singles in this over.
5: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
6: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
5: तुम हो ही भुलक्कड़.
6: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
7: ली. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
7: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
8: तो निश्चित तौर पर अब तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों का पलड़ा आप कह सकते हैं भारी है इस मुकाबले में. पिछले 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 12 रन बने हैं. कोई सिक्सर, कोई छक्का देखने को मिला नहीं अब तक इस मुकाबले में. और जैसा कि हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुमड़े ने बताया कि कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 103 छक्के लग चुके हैं, लेकिन आज एक भी छक्का नहीं लगा है. और 37 रन बिना किसी नुकसान के 7 ओवर के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप पर सदरलैंड की, और उसे हल्के से केवल प्लेस किया इकलौते रन के लिए मूनी के दस्ताने में. अब रनों की रफ्तार बढ़े कैसे? लगातार प्रयास कर रही हैं जोसेफ, और ये जो कैच छूटा था एकदम ऐसा लगा कि जैसे शायद वो निश्चित तौर पर हाथ पर आना चाहिए था. एक आसान सा कैच, और इस तरह की जीवन दान देना आपको कई बार परेशान कर सकता है. तो बड़ा जीवन दान वहां पर जॉर्जिया बॉल ने दिया। आठवां ओवर पारी का सदरलैंड का। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार रक्षात्मक तरीके से केवल खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवल का जहां तक सवाल, इससे पहले एक मुकाबला यहां पर खेला गया जो कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को चेस करते हुए पराजित किया। 164 रन बनाए थे इंग्लैंड ने उस मुकाबले को जीतने के लिए। 5.18 का औसत, ये औसत कतई ऐसा नहीं है जो वेस्ट इंडीज को इस मुकाबले में फ्रंट सीट पर खड़ा कर सके। बड़ा स्ट्रोक लेकिन टप्पा खाते हुए गेंद सीधे गई बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की दहलीज पर, वहां जाकर के फील्ड हुई और इकलौता रन वहां पर। तो अब बढ़कर के 39 रन हुए हैं। स्ट्रगल कर रहा है वेस्ट इंडीज लगातार रन के लिए और ये दृश्य कतई वेस्ट इंडीज के इन दोनों बैटर्स के लिए अच्छा नहीं है। मैथ्यूज ने जमकर के शुरुआत की थी, धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे अपने साथी का प्रेशर उन पर भी आता जा रहा है। अगर कैच की एफिशिएंसी देखें ऑस्ट्रेलिया की तो कुल मिलाकर 58% के आसपास है। एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए अगर आप ये रेशो देखें, ये औसत देखें, तो शायद बहुत अच्छा नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और इस बार भी बल्ला भर चला और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब ऐसे में जब जोसेफ का बल्ला चल नहीं रहा है, जोसेफ चल नहीं पा रही हैं, खेल नहीं पा रही हैं, कप्तान के पास क्या विकल्प है? क्या जोसेफ को अपनी पारी में आक्रामकता और लानी चाहिए? अगर विकेट गिर भी जाए तो इस समय कोई नुकसान नहीं। और ये बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा स्ट्रोक, पहला छक्का जोसेफ के बल्ले से। संभवतः इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत थी। ये निकल गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से, कोई मौका नहीं।
9: ये लगा आभा का छक्का।
3: A very first confident stroke over the long arm region because she found that it was in the slot and no great effort, very little effort, most best productivity achieved. Sanjay, very good confidence.
8: Badiya stroke. Kya ye bada stroke aapko aur ek aur bar ye gend tappa kha kar ke upar zarur gayi thi, duri tay nahi kar payi, lekin do run lene ke liye paryapt mauka। सदरलैंड का ओवर इसके साथ ही समाप्त हुआ। 8 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 47 पर नुकसान।
3: सो वेल वेस्ट इंडीज दिस ओवर हैड बीन रादर अ बिट ऑन द एग्रेशन मोड फ्रॉम जोसेफ हु वेंट फॉर अ बिग सिक्स ऑन द ऑन साइड टू द लॉन्ग ऑन रीजन एंड शी मेड श्योर दैट शी कनेक्टेड द बॉल वेल। But what I've seen so far is that this pitch, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on to the bat because sometimes the ball just holds up. And this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization. And that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere. And the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds. And Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but it all depends on the last delivery bowl. It is Wareham being brought into bowling attack. 6 matches, 5 wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one she's trying to play, that scoop! And the wicket falls and one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
8: Matthews ka wicket chala gaya. और ये परेशानी का सबब है वेस्ट इंडीज के लिए। मैथ्यूज बेहतर खेल रही थी, जोसेफ नहीं चल पा रही थी। इस बार इस गेम को आगे बढ़कर के हल्के से केवल प्लेस करना चाहती थी लेकिन गेंद टप्पा खा करके अंदर की ओर आई और पूरी तरह से लाइन को मिस किया मैथ्यूज ने। पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिरा 47 के स्कोर पर। 9वें ओवर में हेले मैथ्यूज 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर वारहम का शिकार बनी। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, वारहम लाई गई और आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली।
3: संजय, इफ यू रिमेंबर व्हेन द इंडियन टॉप ऑर्डर वाज बैटिंग Smriti Mandana, she tried to similarly play a stroke like this when she was very well entrenched. And sometimes when the ball is tight on the stump line, if you take a risky shot like this, want to scoop

0: the ball or paddle sweep the ball. If you miss it, certainly it will knock your stumps.
1: बिल्कुल इस तरह के स्ट्रोक खासतौर पर जब गेंदबाज अपनी शुरुआत कर रहा हो, पहली एक दो गेंदे हो, आपने अगर उसका तीन चार गेंदे या एक ओवर नहीं खेला हो तब रिस्क नहीं लेना चाहिए। कम से कम इस तरह के स्ट्रोक जब आप विकेट खुला छोड़ देते हैं, बल्ला चलता है आपका और अगर टप्पा खा करके वो गेंद आपने मिस की तो फिर विकेट गिरता, और वही हुआ मैथ्यूज के साथ।
0: So Campbell comes in, faces the first delivery, a little awkward, but then slightly plays on the onside. But then I must say that the way Matthews played that last one, she went outside the off stump line. As here's the next delivery from Wareham, and that's been played onto the onside to the backward square, and that hits the fence for sure. Four runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: बेहतर रणनीति, आपको स्ट्रोक्स की जरूरत है अन्यथा आप फील्डर्स आप पर हावी होंगे। थोड़ी सी फ्लाइट कराने की कोशिश थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई चार के लिए।
0: Another delivery now outside the off stump, and Campbell, who is a daring batter, she doesn't mind playing those strokes initially. She doesn't take time to settle down, and the way she played that sweep stroke, almost like a slog sweep on the own side, and got a boundary. The next one is defensive. The ninth over underway. Wareham comes and bowls. She's a leg spinner, bowls wide outside the off stump. That goes further away and off the back foot, just about plays the ball into the extra cover region. No fielder there, and that's another boundary. Four runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: चलिए, विकेट कीपर कैम्बल ने आने के बाद दो स्ट्रोक्स लगाए हैं, दो चौके लगाए हैं, और वेरहम को जो सफलता मिली थी शुरुआत में, उस सफलता पर थोड़ा सा पानी फेरने में सफलता हासिल की है। लेग ब्रेक गेंदे आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि कैम्बल को कोई परेशानी है।
0: Here's the next delivery. That's on the middle and leg stump, and the batter plays it, offering the full face of the bat, and plays it down back into the hands of the bowler. No runs taken. Nine overs gone. A successful over. 55 for one. West Indies.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: नए ओवर की शुरुआत, एक विकेट गवा चुका है वेस्ट इंडीज। हैली मैथ्यूज के तौर पर काफी अनुभवी टीम की कप्तान, 9 ओवर के बाद 55 एक विकेट पर, रनों का औसत थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.11। सदरलैंड की जगह पर गेंदबाजी के लिए अब मॉलिन्यू आई हैं। बढ़िया स्ट्रोक गेंद का, ओ हो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर, यानी कि सलामी जोड़ी बाहर हुई। वेस्ट इंडीज की जोसेफ का विकेट भी गिर चुका है।
0: Well, this is once again taking a chance and trying to play across the line. A premeditated stroke went up in the air to the mid-wicket region, straight into the hands of the waiting fielder. Didn't have to do much about it. And a wicket comes in the very next over. So two consecutive overs and two consecutive wickets. Quite a juice of Scott Gardner. Bowled Molyneux. So Molyneux gets another wicket, and this probably may just set a different run rate once a new batter comes in. Both openers going back to the pavilion.
1: बिल्कुल, प्रेशर अब जबरदस्त होगा क्योंकि आपने दो विकेट भी गवा दिए, रन्स भी नहीं बने, स्ट्रोक पड़ा था लेकिन शायद फील्ड का तरीके से मुआयना नहीं किया। जहां पर गेंद गई वहां पर बहुत इत्मीनान के साथ वो कैच पकड़ दिया गया, तो दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गवा दिया है। सलामी जोड़ी जा चुकी है, कियाना जोसेफ और हैली मैथ्यूज दोनों इस समय वापस पवेलियन में लौट गई हैं। कैम्बेल आई हैं, अब कैम्पेल के बाद कौन आता है खेलने के लिए? डॉटन आज पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रही, स्टेफानी टेलर।
0: बट संजय, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ अ बैटर इज स्ट्रगलिंग एंड गेट्स आउट, अ न्यू बैटर कम्स इन, देयर कुड प्रोबब्ली बी एन इंप्रूवमेंट इन द रन रेट्स।
1: ऐसा लगा था खासतौर पर जब कैम्पेल खेलने के लिए आई, दो बड़े स्ट्रोक लगाए उन्होंने, लेकिन एक के बाद एक दो विकेट गिरने के बाद एक प्रेशर तो अनावश्यक तौर पर उन्होंने ओढ़ ही लिया है क्योंकि रन्स भी नहीं बन रहे और दो विकेट भी चले गए। अगर रन्स बनते तो शायद बेहतर स्थिति होती। मॉलिन्यू को यहां पर सफलता मिली और एक अच्छी

0: सफलता। स्टेफनी टेलर आई हैं, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। 3,666 रन हैं इनके कुल मिलाकर। 90 की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस बार, हल्के से ऑफ स्टंप पर। मॉलिन्यू का जहां तक सवाल, काफी कसी हुई और अच्छी लेंथ पर गेंदें डालती हैं लगातार। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदें उनकी, और उसको समझना कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, क्या टप्पा लेग स्टंप के बाहर था? यह टप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था और इसीलिए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 3 हुई है और वेस्ट इंडीज अब तक स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए, आधा सफर बीत जाने के बाद अगर आपके स्कोर बोर्ड पर 57 रन है और 2 विकेट आपने गवा दिए हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मोड़ना चाहती थी, बल्ले के मुंह को उन्होंने मोड़ा जरूर था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा टर्न ली, उछाल था, टप्पा लगा और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर थोड़ी देर हवा में थी, अपनी जगह पर सुरक्षित। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया। मॉलिन्यू बहुत ही बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी डाल रही है, खासतौर पर उनकी लेंथ लगातार परेशान कर रही है कैंबल को। पिछले ओवर में जब लेग ब्रेक के खिलाफ उन्होंने 2 चौके एक के बाद एक लगाए, वही ऑफ ब्रेक के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार स्वीप शॉट खेला था, लेकिन गेंद सीधे गई चौचिया बॉल के पास, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा। भारत अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार कर एक कड़े मुकाबले में बाहर हुए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके और इस बार बैकफुट पर गई, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। 10 के बाद 58 पर 2 वेस्ट इंडीज।
1: सो 10 ओवर्स एंड द रन रेट 5.8, which is certainly not a par score for the moment, because if you have to literally make sure that you get a win here, the par score there should be about 165 plus, to say the least, because Australia is in tremendous form. And Sanjay, if you look at the Australia side, there are 7 all-rounders. You see, that is one of the strengths.
0: Prem, agar aap all-rounders ka zikr karein to ऑस्ट्रेलिया के पास तो 7 ऑलराउंडर हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ऑलराउंडर्स की अगर आप उस लिहाज से देखें, और वो कितने गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे ये आप देखिएगा।
1: वेल आई अंडरस्टैंड दैट, बट द बिग क्वेश्चन हियर इज हाउ इफेक्टिव आर दे, बिकॉज़ समबडी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, समबडी इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट इफ यू लुक एट द कैप्टन हरसेल्फ, शी इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर, शी इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, शी बैट्स वेल, बॉल्स वेल। एंड कैंपबेल ऑन 9, टेलर on no score, Campbell faces the next delivery, which is Gardner's first one, plays it down onto the onside, the ball picked up there at deep mid wicket, Annabel Sutherland the fielder, and one more run on the scoreboard. It's going at snail's pace. If you are 59 for 2 at 10.1 overs, well, I think even God can't save you if you score about 120-130, because you have to be there with about 165-170, which now looks like an Herculean task, a precipice to climb. Gardner just one delivery, here she bowling the second one, which is wrapping on the pad, suddenly kept low, and has it got the bat? We'll have to wait and watch, because the players are celebrating, and Taylor walking back. Yes, that's a wicket for sure. Tried to play the ball edge from the bat, leading edge, straight into the hands of the fielder.
0: जब आप दुविधा के शिकार होते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं। स्ट्रोक खेले ना खेले, बैकफुट पर गई, हल्के से मोड़ना चाहती थी, लेकिन एक आसान सा कैच हवा में, न तो अपने आप को पोजीशन कर पाई और बल्ले को भी तरीके से गेंद के पीछे नहीं ला पाई, बल्ले का जो सिरा था उससे जाकर के गेंद टकराई और इसीलिए वो जो उसे मोड़ना चाहती थी हाथ से वो मोड़ नहीं पाई। तीसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गवा दिया। स्टेफनी टेलर, एक अनुभवी बैटर, वो भी बाहर जाते हुए, वेस्ट इंडीज के लिए अब मुश्किलों का पहाड़।
1: वेल दैट्स रियली miseries compounding for the West Indies side. Stefani Taylor going back into the pavilion, getting the leading edge, just closing the face of the bat when the ball was slightly on the middle stump. And I was scared that if the ball hadn't got the bat, it would have certainly got her leg before. But then trying to just about turn the ball on the onside across the line, got a leading edge and the ball went an easy catch into the mid-wicket region. And another wicket falls, so

0: Now the Australian side must be really gung-ho about it, and their confidence level must have really gone skywards, because they now look to be a very confident side, the Australian team. And we have seen, whether it be the men's side or the women's side, the Australians are always capable of a comeback, however you score against them. Here is Gardner bowling to Claxton, who's a new batter. The first delivery around the wicket, right on the middle and leg, keeping low, and she can't take a chance against her, and the ball played forward in defense and no run results. But Taylor's, I think, exit would have certainly put enough pressures on the West Indies side. Gardner comes in for the fourth time, this time on the middle and leg. The batter unable to play the ball. It's a productive stroke, plays it down into the hands of the fielder in the mid-wicket region, and no runs taken. So all the bowlers look to be wicket-taking bowlers as far as Australia is concerned. The last two deliveries of the 11th over bowls from the corner of the crease. This time the batter steps up. Goodness me. Another wicket goes. Trying to play the ball into the cover region. Keeps it up in the sky. And the fielder once again getting a regulation catch right in front of the chest. And wicket number four goes. Claxton also going without scoring.
1: गार्डनर ने दूसरा विकेट निकाल लिया इस ओवर के अंदर और उसी जगह पर पकड़ी गई क्लैक्सटन। आगे बढ़कर के स्ट्रोक खेलना चाहती थी, हवा में स्ट्रोक था और उसे कोई गलती नहीं की पकड़ने में। तो अब वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किलों का समय। 59 रन पर चार विकेट गवा दिए, गार्डनर को दो विकेट मिले, शानदार सफलता।
0: Well, West Indies going from misery to misery, and these two wickets are both batters going at no score, certainly would put a compounding pressure on the West Indies side, whereas the Australians are now looking pretty happy and they're celebrating. And as I was telling you, Sanjay, a little while ago, that all the bowlers look to be wicket-taking, because one of the strengths I find by the bowlers is that they're bowling stump to stump. They're not varying their line or length so much. They're just bowling the right delivery, right on the stump line. If the batter makes a mistake, there you are. So now, a big question, how many more runs before the 20 overs get completed, because we haven't seen the kind of boundaries, except for 1-6 earlier from Joseph. There's not been great batting potential from West Indies.
1: बहुत हैरत में डाला है वेस्ट इंडियन ने। अब तक ये आखिरी गेंद है गार्डनर की।
0: Next one, which is outside the off stump, and a bit of bounce collected over the stumps there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ले। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तो अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। वेस्ट इंडीज ने अपने चार बैटर्स गवा दिए हैं और शुरुआती अगर बैटर्स इस तरह से चले जाएं कोई बड़ा स्कोर किए बिना, तो प्रेशर नीचे के लिए आता है। शिनेल हेनरी आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि डॉटन आज मैदान के ऊपर अब तक दिखाई नहीं दी हैं। एक दृश्य में हमने देखा था कि वो थोड़ी सी इंजर्ड दिखाई दे रही थी, अब उनकी वापसी होगी या नहीं। पिछली 18 गेंदों में चार विकेट गिर चुके हैं और रन्स तो नाम मात्र के ही बने हैं। वेरहम 12वें ओवर की पहली गेंद डाल चुकी हैं। हेनरी का जहां तक सवाल, 5 मैचों में 82 रन, स्ट्राइक रेट 137। वेरहम की एक गेंद और स्पार्क आउटपुट पर जाकर के गैप्स तलाशा एक रन के लिए, अपनी दौड़ पूरी की वहां पर जब तक गेम को फील्ड किया जाता, ये एक रन और पूरा किया। फोयबे लिचफील्ड वहां मौजूद थी और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंच गया है 61 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका। खेल की जो गति है वो तकरीबन वेस्ट इंडियन बैटर्स की वजह से बहुत धीमी होती हुई, न तो रन बन रहे हैं न विकेट सुरक्षित हैं, तो एक ऐसी स्थिति में हैं जहां से शायद उन्हें उबर पाना कोई आसान काम होगा नहीं। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं। गेंद सीधे फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें इस विश्व कप में, तो दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराया, बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, इसके अलावा नीदरलैंड्स को 98 रन से, ये स्ट्रोक खेला वेरहम की गेंद पर कैंपबेल ने, इकलौते रन के लिए, एक एक रन आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पर 113 रन की शानदार जीत और उसके बाद भारत को उन्होंने पराजित किया। 3.882 का नेट रन रेट था और वो तब था जब ज्यादातर टीमों का नेट रन रेट माइनस पे था। 12वें ओवर की आखिरी गेंद वेरहम की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, अब तक 3 डॉट बॉल डाली उन्होंने। रनों का औसत लगातार नीचे जाता हुआ 5.24 पर। तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए, फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया, हालांकि गेंद की एकदम जो टर्न थी उसके नीचे नहीं पहुंची थी, गिल्लियां बिखेरी गई, लेकिन रन यहां पर पूरे हो गए। और इस रन के साथ, हालांकि ऐसा भी लगता है कि शायद बिल्कुल एक रन दिया गया है, 12 ओवर के बाद स्कोर है वेस्ट इंडीज का 63-4।
5: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: West Indies in dire straits, 63-4, and a scorer Shamal says that in the last three overs, 12 runs were made. I'm repeating, 12 runs, 4 wickets lost. What a deadly combo of the Australian bowlers. They really bowled well. Here's Gardner coming into bowl to the right-handed Henry, who gets the ball to come in plays it down into the mid-off region, and easy-looking tap shot, and ball collected there, and one run taken. Henry goes into three. She'd taken a couple of runs earlier. Campbell on 12. So we've seen most of the batters struggling. Most of the batters are really been struggling on the pitch. Here is Gardner coming into ball, this time into Campbell. Campbell goes forward, daringly plays the ball across the line into the mid-wicket region. And before you could say Jack Robinson, she's crossed over for a single. So that is what they should be doing. They should get every opportunity, convert ones into twos, pick up the gaps, and not just keep batting on and play their shots. Pick up the gaps. This one, next one, around the wicket, over the wicket, correction there. And Henry plays it across to the offside, moving away from the line of the ball, but then can't beat the fielder at wide-ish mid-off. Here's another delivery that comes in, keeps low, and Henry plays it down into the mid-off region. Good call by the known strike, Campbell. They cross over for a single, taking the score up by one more to 66-4. What a score this is. I mean, it is moving at worse than snail's pace. 66-4 in almost the 13th over. You've got 7 overs to go. Now, how much more really are to play out of the skins? And here's the next delivery, wrapping on the pads. And umpire Kim Cotton says, nothing doing. And would that mean that they take a review? They're still talking to each other. The ball came in quite sharply, Sanjay. That was very close.
1: अगर रिव्यू नहीं लिया तो शायद इसलिए कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही, रिव्यू ले लिया गया है।
0: The review has been taken. Quite an afterthought. You get 30 seconds for that one, and if you don't get that right, then you're gone. So all the players coming in. This shows that the captain has the confidence on the bowler Gardner, and why not? The West Indies team is in dire straits, and the Australian side looking really, really good. So they've taken the review, and the third umpire, the Pereira, she is going to look into it. The only question here is, was the bat involved? Because the ball wasn't going very far away. It was almost like kissing the bat, but only the ultra edge might tell us what's really happened, because that's the technology coming into play. The umpire had declared not out, so there should be a compelling reason for the batters to get out if the ball is hitting onto the stumps. We'll have to wait and watch. Where was the ball pitching and where was the ball going? Sanjay, you were probably looking at that option. Was it coming out of the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll, and it appears that she's safe because there is a spike when the ball crosses the bat, and that's the reason the umpire did not give it as out there. And Kim Cotton was absolutely on the target, absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews. They just got one more review. That was close, Sanjay, but except for the edge, she was absolutely beaten.
1: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था.
0: Next delivery outside the off stump, a bit of width off. wicket over from Gardner, just three singles given away, 66 for 4 after 13 overs, West Indies.

0: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
1: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
0: तुम हो ही भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
2: जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
2: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए। ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर, यहां 66-4। और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4।
5: ये लगा आभा का चौका।
6: This one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take, pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
4: Sutherland ki is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे। स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125। और अगर आप वेस्ट इंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं, 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड पॉइंट की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर। डॉट बॉल, डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं, 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। 71-4, रन रेट 5.26, ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है। कैंबल जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं, और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया। तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं। सदरलैंड का जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला, लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित। और ये 72-4, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है सदरलैंड, बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 14 के बाद 73-4।
6: So well now, what we've seen is 14 overs, 73-4, time for drinks in the center, and I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it, quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd, but now in the next 7 to 14 overs just 38 runs scored. And Shamas Sani says that last 5 overs 18 runs and 3 wickets. So what kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
4: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं, भले ही विकेट ना गिरे, गिरे, तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन्स नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
6: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely, on a tension mode. And once those first two wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
4: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज़्यादा खेला जाता है। जब आपके दो विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज़्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाएं।
6: बट लुक एट द अदर थिंग, लुक एट द बॉलर्स, दे ऑल्सो बोल्ड वेल। यू सॉ एशली गार्डनर कमिंग विद सम वेरी गुड बॉलिंग। ऑफ कोर्स गार्थ एंड हैमिल्टन started off seamers, but the spinners were more effective because they're bowling stump to stump, bowling the wrong ones and letting the ball come onto the stump line, and the batters, they make a mistake, and more often than not you have seen most of the wickets fall when they're trying to play the ball across the line.
4: बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खास तौर पर शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और ज़रा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा। और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज़ की। और वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है दो मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
6: एशली गार्डनर रियली बोल्ड वेल, आउट ऑफ द थ्री ओवर्स शी हैज गॉट 12 डॉट्स इन दैट, टेकन टू विकेट्स ऑफ 6 रन्स। She is the one who literally made that, you know, move to put them under trouble. Here's a first over after drinks, and this is up in the air, goes high in the air. The fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland. And another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the fifth wicket goes.
4: आसान मौका, गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील किया, बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं। और वेस्टइंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई, हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही हैं। मुश्किल का समय है, क्या वेस्टइंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, ये रन्स मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई चुनौती देने वाले हैं।
6: That's right, and I think they've just invited pressure on their shoulders to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking their wickets.
4: शुरुआत के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज़्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ, तो अब करें तो करें क्या? अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
6: Being played by Campbell, because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74. And West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery, and the batter has to literally smash this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single, and now boundaries have become a kind of a precious item, and I'm sure Chama will just now tell me as to how many deliveries since we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our score is going work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there, and the batter off the back foot just punches down to the wide-ish mid-off region, picks up a single, easy-looking single, and that takes us snailing up to at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets.

0: wickets. 15th over, just two deliveries more. As here's the next one, that slightly short, plays it across the line, a sweep shot, but there is a superb piece of fielding there at Backwood Square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs, and that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
1: वेस्ट इंडीज भी शायद उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे एकदम सीधे, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई थोड़ा सा ऑन साइड में कहीं डीप में विकेट पर गेंद फील्ड हुई सदरलैंड के हाथों, लेकिन रन वहां पर मिल गया.
0: All right, so well, Sanjay, if you look at the last three or four overs, the batters are literally struggling to get even singles and twos. Wherever they're playing the ball, they get the ball fielded.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली. जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: We start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for four runs at the whitish long off region. So this boundary, Sanjay, coming after two overs.
1: T20 international semi-final mukabla aur do over ke baad ek boundary West Indies ke batter se.
0: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls and in the slot played onto the wide-ish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell, of course, playing on 22 of 24. But it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one. She daringly steps up and oh, that ball. Is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there. And that ball went as a very low catch, trying to step out and play. Just couldn't get in the middle of the bat. Low toe end of the bat. And the catch coming into the whitish mid-off region.
1: एलिस पेरी ने बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा नीचे झुकते हुए. तारीफ करनी होगी उनकी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी, लेकिन कैच छोड़ा नहीं. छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा. कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया. और अब डॉटेन आ रही हैं. डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती हैं, एक अच्छी बैटर हैं टीम की. लियंड्रा डॉटेन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन हैं उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटेन का कद क्या है. लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई है.
0: संजय, अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत.
1: बिल्कुल, चिड़िया तो चाहिए.
0: Absolutely.
1: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते.
0: Well, Dotton comes. He's in a bit of a bother as Wareham's first delivery plays on the offside and no runs taken. We earlier saw how Dotton was carried from the middle of the ground where she was practicing. This was not in the game. So here is the next delivery, which is outside the off stump. And once again, just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stroke on the offside, moving away from the line of the ball. And no runs taken. We have 6 fielders on the offside, 3 on the on, 4 on the fence, 2 in the V, 1 on the mid-wicket region, 1 on the backward square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside, and that ball goes straight into the hands of Molyneux, and a very good chance of a run out goes out of hand for Australia, but I don't think they will mind ever. 16 overs gone, West Indies now 84 for 6.
5: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: तो डॉटन अब क्रीज पर आ चुकी हैं, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी, क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, चार ओवर्स यानी कि 24 गेंदें बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे, क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। ग्लासगो हैं, फ्लेचर मुनीस, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे। गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने, आज ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए। डॉटिंग ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया इकलौते रन के लिए। गेंद बल्ले से लगी और डॉटन ने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए। 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की 5 लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं। जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं। इस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। तो गार्डनर की 2 गेंदों पर 2 रन, वेस्ट इंडीज 86/6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में 1 रन, ये 2 रन के लिए जा रही है। थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, लेकिन आपको बिन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा। गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का। अगर आप देखें कुल मिलाकर 4th ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86, T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लिए हैं गार्डनर ने। तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 17वां ओवर चलता हुआ ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के 3 ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा, क्या डॉटन का बल्ला चलेगा। और इस बार गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, इकलौता रन। और इस 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर। डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से, ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 17 के बाद 91/6।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: West Indies in dire straits and Kamal Sanjay says proudly that, you know, 50 dots have been bowled. So Sanjay, imagine 8.2 overs of dot deliveries, 9 boundaries and a 6. That says the story.
1: बिल्कुल, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स डालते हैं, गार्डनर ने देखिए 24 में से 12 डॉट बॉल्स डाली, गार्थ ने 18 में से 9 डॉट बॉल डाली, तो हर बॉलर ने यहां पर अपना काम किया। हैमिल्टन ने 12 में से 7 डॉट बॉल डाली। और क्षमा के साथ साथ हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है प्रदीप कुमार तुम्बड़े, उनकी कलम भी बहुत तेज चल रही है ये बताने के लिए कि डॉट बॉल्स का हिसाब क्या है।
0: Well, what can Pradeep Tumde do if you don't really get the runs on the scoreboard? Here's the first delivery of a fresh over off the back foot, just tears it down into the back foot point, the ball running to the fence, that's 4 runs.
6: ये लगा आभा का चौका।
0: 10th boundary संजय,
1: अच्छा चौका, थोड़ी सी राहत और उछाल लेती हुई गेंद थी, और उस उछाल लेती हुई गेंद का पूरा फायदा लिया चुके, ऑफ स्टंप से बाहर थी, मौका मिला उसके ठीक पीछे जाते हुए गेंद को केवल खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक डॉटन का।
0: Almost reminds you of Chris Gayle playing the uppercut as he has the next delivery that's played awkwardly on the onside. Didn't get the proper center of the bat there. The ball goes into Sutherland and one more run on the cards. The West Indies team has to literally play out of the skins, and I think if they get about 110 odd runs, 120 maximum, and just about daydreaming on that, I think that would be certainly

0: The stump takes the catch and Sutherland gets a wicket of the last delivery. So West Indies completing 20 overs with 125 for 7. Dottin not out on 26 of 16. Glasgow on 15 of 13. So good recovery action by these two for the 7th wicket with 45 runs of partnership. And now Australia will have to score 126 in those 20 overs, and that's going to be a good contest on the anvil. We're just waiting for our team in the studios to start a program immediately after this called a free hit for this 20 over match here. Free hit 20, and I leave you to the anchors and the experts to handle the program.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

0: वो मैच हारने के बाद भी ये लोग पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है केक वॉक ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
1: लेकिन आशा जी, अगर हम गेंदबाजी में देखें, 6 एक्स्ट्रा थे, 2 लेग बाय, 4 वाइड, नो बॉल तो हुई नहीं, प्रोग्राम फ्री है, 20 है।
2: वो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है सुन लिया, इसलिए उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी।
3: लेकिन अगर आज हम आशा यहाँ पर बात करें, जिस तरह की आज गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की, 47 पे पहला विकेट गया, लेकिन असली कमर जो कहते हैं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज की, तब टूटी जब अगली 4 गेंदों में उन्होंने 3 और विकेट्स अपने गवा दिए। एंड टू टॉप इट ऑल, उसके साथ अगर देखें तो आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हम राउंड अप देखते हैं, उसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने आज 54 डॉट बॉले डाली है। T20 के मुकाबले में जहाँ 120 गेंदे होती है उसमें 54 डॉट्स,
1: और राकेश कहते हैं एक भी नहीं होनी चाहिए,
3: मतलब कमेंडेबल थिंग कर दिया आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ओवरऑल अगर देखे आज तो।
2: हाँ वही ना, पहले सबसे पहले आप T20, मैं वही बोल रही हूँ, सारे क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे, अगर वो बॉल की लाइन में आके खेलते तो जो रन 125 बने हैं मे बी वो 140-150 के करीब चले जाते, पर आपने स्टार्टिंग में जब हमारे ओपनर आए तो वो ओपनर भी जो थे क्रॉस, सब क्रॉस खेल रहे थे, किया जो सर्व, ये सब इन्होंने क्रॉस खेला, जबकि मैथ्यू बहुत अच्छा खेल रही थी, बट वो उसने जो बॉल चूज करी वो बहुत ही गलत, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, सबने क्रॉस खेला, उसको स्ट्रेट खेलती तो मे बी वो बाउंड्री हो जाती।
1: राकेश, टू मेनी डॉट बॉल्स फॉर कम्फर्ट,
4: या बिकॉज यू नो इफ यू कांट प्ले स्पिन, you have lost 6 out of 7 wickets to spin, and overall when you look at it, you always struggle, you're not able to read the length, you're not able to gauge the turn, and it wasn't turning viciously, I mean it was just another typical England wicket where it doesn't spin so much, there is an extra bit of bounce I thought sometimes every time the ball hit the seam, and the batter struggled, any delivery which had a bit of bounce and that too just a bit short of the length, you know, back of the proper in-length length, they struggled.
3: Right,
4: the timing wasn't right, and as Asha very rightly said, cross-batted shots you see so many times and you are not able to clear the infield, 30-yard circle, you are not even getting a single there. So unless you pierce the, you know, the field, go for the gaps, and the whole idea was to hit over the top. Right. And they struggled.
3: I think some of the irony is that when we're talking of that the West Indies couldn't play spin very well, they are the team that actually also bowl spin very well. And Ravi, aapke paas aaunge is baat pe, ki ab West Indies ko 125 run ka target defend bhi karna hai, to kya unke spinners is match mein kuch bhi kamal kar payenge, aapko lagta hai ab?
0: देखिए मुश्किल है मैच इस समय, क्योंकि रन उनके पास इतने हैं नहीं इससे उसमें, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही 6 ओवर के अंदर ही काफी 50-60 रन बना के मैच को एक वन साइड ले जाएगा, क्योंकि ये विकेट जो है इतना, जिस हिसाब से बॉल किया है उस स्पिनर्स ने, उससे बहुत ही स्लो बॉल किया है, और वेस्ट इंडीज को भी अब, लेकिन बॉल तो स्पिन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो डिफेंड करने के लिए उतना रन नहीं है, 160-170 रन बनते तो फिर शायद थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि मैच
1: आशा डिएंड्रा डॉटिन जो है वो पहले लग रहा था थोड़ा इंजरी स्केयर हो गया मैच से पहले, और वो खेलने भी बहुत नीचे आई, लेकिन फिर जब आपने उनको देखा खेलते हुए, 26 रन नाबाद, 16 गेंदों में 4 चौके, तो फिटी लगी या फिर कुछ अभी कैरी कर रही है इंजरी?
2: नहीं, फिटी लग रहे थे जिस हिसाब से, बल्कि मुझे लगता है जो ओपनर ने नहीं करा सिंगल, वो लास्ट के बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, तो वैसा गेम अगर वो पहले खेलते अगर ओपनर तो मे बी स्कोर और अच्छा होता।
1: ऊपर खेलने क्यों नहीं आई राकेश?
4: चाहिए था उनको रिकवर होने के लिए, इसलिए बिल्कुल नीचे आए।
3: So somewhere do you think it played against the West Indies?
2: Yeah.
3: Because Deandra Doughton wasn't available. Absolutely. And come to think of it, she made 26. Yeah. A very important contribution.
4: Yes. I mean, she didn't have the time also to settle in. She just came and just used the long handle. And she did it very effectively. So you have to give it to her. Brave effort. But I think before her, whosoever came, they didn't do enough. Because you didn't rotate the strike. That beats me completely.
1: लेकिन अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो जो विकेट कीपर है उनकी लेफ्ट हैंडेड बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल, कैसे देखते हैं आप सलामी जोड़ी को आशा?
2: जिस हिसाब से वो पहले भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, पांच मैचों में अभी तक कोई उनकी मतलब हारे नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है
3: मार्क उतनी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बोलिंग उनके बोलर्स ने आज करी है, वेस्ट इंडीज को 125 में उन्होंने

0: आपको लगता है वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी अपने इस गेम को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है या अपना सकती है?
1: बिल्कुल, इसमें देखो शुरुआत की जाए दुरंत से, और उसमें अगर कुछ एक आध कोई गलती वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बैटर कुछ कर सके तो कर सके, क्योंकि इस विकेट पे जो मुझे कुछ ज्यादा दम लग नहीं रहा कि बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा दम है, अगर वो अगर ये चाहते तो थोड़े से मतलब सिंगल सुंगल निकाल के 160 तक पहुंचाते तो मैच में फाइट बनता, लेकिन अब तो मिराकल से हो सकता है अगर कोई दो तीन गलतियां करें और दो तीन विकेट निकाल जाए तो शायद प्रेशर बन जाए।
2: जी राकेश, ये जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज के पास, अश्विनी मुनीसर, एफी फेचर, आलिया एलेन, जेनिलिया ग्लास्को, तो इनके पास भी है विविधता?
3: बहुत शार्प नहीं है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट फिर भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगर वो इंडियन स्पिनर्स को देखने के बाद तब भी मैच निकाल सकते हैं, जितना भी इंडिया वाला मैच अगर आप याद करें तो उसमें स्पिनर्स ने जितना इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इंडिया के पास पेस अटैक उतना इफेक्टिव नहीं है, कहने को तो बॉलर्स हैं लेकिन वो जान नहीं है, तो यहाँ पे भी उनके पास वो वेराइटी क्लास नहीं है, स्पिनर हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिन इफेक्टिव स्पिनर्स होंगे, वो क्लास है नहीं इनके पास।
0: राइट, एंड आई थिंक समवेयर टुडे इफ यू वर टू टॉक अबाउट दिस हाउ द गेम प्रोग्रेस्ड आल्सो, Australians were just way too good for the day for West Indies today, Rakesh. Matlab, they did not err much from their strategy apart from the fact that yes, in fieldings we could pick out nitpick that there were dropped catches, dropped missed opportunities, but still the fact that they were able to hold their nerves together under extreme pressure in a match like a semi-final, much appreciation and kudos and a round of laurels should go for Australia today, do you think? So
3: Sakshi,
0: far?
3: Sakshi, what happened was that, you know, barring that one dropped catch in the outfield, Australians held everything, you know, when the ball fell in no man's land, then it was beyond them. But overall, I would say that West Indies did nothing to put pressure on the Australians. That 47 run start was too sedate, you know, it should have been a little more, you know, in the face, which it wasn't.
2: Gee.
3: So when you are maintaining a run rate of around 6-7 initially, not good enough. Gee. Because if you want to put pressure, you have to be off to a flyer. And that we didn't see.
2: Gee.
3: And that is where I hold Campbell responsible to a large extent. She stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain 100% strike rate.
2: Gee.
3: So that is disappointing.
2: Gee, Hayley Matthews, who is captain of West Indies, ki unhone sarvadhik 28 balls kheli, halanki unhone highest score bhi banaya 30, lekin jab wo jump gayi thi to bahut zaruri tha, acha khelti, lekin women cricket ko star ambassadors chahiye, star players, aur agar aap Australia ke khiladi ki baat kare, Elise Perry, wo bahut hi akramak khelti hain, kya special banata hai Perry ko?
4: पेरी को तो सबसे पहले वो जो ऑलराउंडर, उनकी बॉलिंग और बैटिंग जो दोनों हैं, और वो जो बैट करती है, ऑफ साइड भी इतना अच्छा खेलती है, पुल भी इतना अच्छा मारती है, तो वही उसको एक अलग बनाती है। जो फील्डिंग में जो वो सपोर्ट करती है, मतलब फील्डिंग में जो वो नो अपने बॉलर की जब बॉल में वो कैच पकड़ती है, स्टॉप करती है, तो वो एक उसको अलग बनाते हैं।
0: राइट रवि, आपके पास आऊंगी, कम टू थिंक ऑफ इट, टी20 के खेल में हम कहते हैं स्ट्राइक रेट कितना जरूरी है। आज एक डियांड्रा डॉटन जो काफी नीचे आई, 162.5 का स्ट्राइक रेट लेके चली, उसके बाद सिर्फ एक जेनियल्स ग्लास्को जिनका स्ट्राइक रेट रहा 115.38 का, एंड हेली मैथ्यूज 107.14, बाकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट तो छोड़िए रन्स तक नहीं थे। क्या ये इस समय प्रेजेंट स्टेट में, प्रेजेंट टाइम्स में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को दर्शाता है?
1: देखिए, शुरुआत उनकी टॉस हारने से ही हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो भी चेस करना चाहते थे, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करने पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, मैंने पहले ही बोला था आपको कि एक बड़ा स्कोर चाहिए, उसी स्कोर के जो प्रेशर में वो लोग तेज मारने के चक्कर में आउट हुए, और शुरू में जो उनकी कप्तान थी वो अच्छा खेल रही थी, एक गलत शॉट बहुत महंगा पड़ गया, डॉटिन उनकी इंजर्ड हो गई बीच में, अगर ये डॉटिन ऊपर खेलते और मैथ्यू थोड़ी बैटिंग करते तो शायद 160 रन का स्कोर बनता, लेकिन बीच में लगा नहीं मुझे कहीं भी इनकी कोई रिदम बन गया, एक मोमेंटम बना हुआ, इसी वजह से ये 120 रन पे धराशायी हो गई।
0: राइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू राकेश, थैंक यू आशा फॉर ज्वाइनिंग अस इन फ्री हिट 20, एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस मिड इनिंग्स ब्रेक शो, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेट हैंड ओवर द एंटायर कमेंट्री to a commentary panel who shall be joining you shortly. Thank you so much.

0: जानिए माँ,
1: जानिए आभा के बारे में।
0: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी फारी की शुरुआत उन्होंने की है। जॉर्जिया वॉल जिस तरह की बल्लेबाजी करती हैं, काफ़ी आक्रामक और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि वेस्ट इंडीज़ के बोलर्स किस तरह से अपने स्कोर को डिफेंस करने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि इतना कम स्कोर डिफेंड करना कोई आसान बात नहीं, वो भी जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मशीन की तरह खेलता है, वो आपके सामने भले ही एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, कई टीमें ऐसी होती हैं जो शुरू से ही बहुत आक्रामक होने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनके बैटर्स गेम को मेरिट के हिसाब से। मैथ्यूज ने बॉलिंग की शुरुआत की है और ये उनका पहला ओवर है मूनी के लिए। मूनी ने हल्के से केवल गेंद को खेला था, कोई रन बनाने की वहां पर कोशिश नहीं। अपनी जगह पर वापस क्रीज पर लौटी मैथ्यूज, तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉल और इस गेंद को उठा दिया है। पावर प्ले है, आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए आजाद हैं। शानदार चौका,
3: ये लगा आभा का चौका।
4: Mooney taking full advantage of that and makes hay while the sun shines. Off the back foot, goes deep into the crease and plays that ball across the line into the square leg region. No fielder there. And a very good well-earned boundary.
2: यहीं पर शायद गलती की थी वेस्ट इंडीज ने जब उन्होंने पावर प्ले का समुचित इस्तेमाल नहीं किया था। आपको रन्स बनाने की जरूरत थी, शफल किया और हल्के से गेंद को निकाल दिया सीधे फाइन लेग की दिशा में। और ये गेंद भी ऐसा लगता है कि चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के एकदम नजदीक रुकी। अच्छी फील्डिंग, एक पल के लिए लगा था कि जैसे ये चौका होना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन फ्लेचर वहां पर मौजूद थी, बढ़िया फील्डिंग की उन्होंने और जो चौके की संभावना थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। गेंद को सीम के सहारे पकड़ करके हल्का सा ब्रेक कराने की कोशिश की और पूरी तरह से जो उसकी लंबाई है उसको भापा। 9 गेंदों पर अब तक 16 रन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यूज ने अब तक 3 गेंदों में 7 रन दिए हैं, पिछली गेंद पर दौड़ करके 3 रन पूरे किए। ओवल में मौसम बिल्कुल साफ है, शुरुआत में थोड़ी सी हवा चल रही थी और इसीलिए टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इस बार गेंद को जो के मिडिल स्टंप पर थी हल्के से केवल शफल करते हुए खेला, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। अगर आप स्पिन गेंद पासों को बेहतर तरीके से स्वीप लगा सकते हैं तो फिर वो आपका एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। वेस्ट इंडियन बैटर्स की शायद ये कमी रह गई, बहुत अच्छे स्वीप शॉट देखने को नहीं मिले आज। मैथ्यूज की गेंद थोड़ी सी पहले टप्पा खा गई और इस गेंद का इंतजार किया, बैकफुट पर गई और गेंद को सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ दिया एक रन के लिए। रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही, पहले ओवर में 9 रन बने और दूसरे ओवर में 9 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी कि 18 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का सिलसिला जारी, वेस्ट इंडीज के पास विकल्प बहुत सीमित रह गए अब उस लिहाज से। और इस बार तकरीबन फुल टॉस हो सकती थी ओवर पिच, लेकिन उसका इंतजार किया। 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 18 बिना नुकसान।
5: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: Third over in progress and Australia looking to be very confident, in contrast with the kind of batting we saw by the West Indies. They were under pressure. We saw

0: कॉल करें 1-4-4-7-7।
1: जॉर्जिया वॉल बाहर चली गई है, पहला विकेट गंवा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को वापस ला सकता है? क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों में एक नई जान फूंक सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो उनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो दुनिया की तमाम टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा है। जॉर्जिया वॉल 153, मूनी 126, लिचफील्ड 140, पेरी 120। इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ जब आप T20 इंटरनेशनल खेलते हैं तो जाहिर है आपकी टीम का पल्ला हमेशा भारी रहता है। तो पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा जॉर्जिया वॉल। ये उनका 18वां मैच था, कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है अभी उनके पास और एक बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाई। अच्छे खेल रही थी, तमाम जो भी स्ट्रोक उनके बल्ले से निकल रहे थे वो सधे हुए स्ट्रोक दिखाई दे रहे थे। लिचफील्ड आई है, अब स्ट्राइक लेंगी और पहली गेंद को लिचफील्ड ने निकाल दिया, गैप्स का इस्तेमाल किया, बढ़िया चार।
2: ये लगा आभा का शो।
3: That the first delivery she got in the slot, just played that inside out shot into the extra cover region, and the very first productive strokes and the confidence. Sanjay, look at that. She leaves the stump to the onside, creates width, plays that one inside out, and welcomes on the scoreboard the very first boundary of the very first ball that she faces.
1: बिल्कुल 33 रन एक विकेट के नुकसान पर ये स्कोर है।
3: मूनी करेक्शन ना,
1: बिल्कुल मूनी के बल्ले से स्ट्रोक, 8 गेंदों पर अब तक 16 रन। और इस बार फिर बल्ले को हल्की बैकलिफ्ट के साथ गेंद के ठीक पीछे लाई और हल्का सा केवल पुश किया। ये पहला विकेट गिरने के बाद अब लिचफील्ड खेलने के लिए आई हैं, हालांकि अब तक उन्हें स्ट्राइक मिला नहीं है। और इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल मूनी का, मूनी को शायद जमने के लिए टाइम नहीं लगता। कवर्स की दिशा में एक और चौका उनके बल्ले से,
2: ये लगा आभा का चौका।
3: So this ball again, Ram Harrick being brought into bowling, and that was outside the off stump, steps out, and once again an inside out shot into the extra cover region. Very confident looking, as Sanjay, you explained that shot. She looked the confidence oozing out of her, consummate ease with which she played that boundary.
1: 124वां मुकाबला खेल रही है T20 International. 3,658 रन मूनी के बल्ले से इससे पहले निकले, 117 नॉट आउट उनका सर्वाधिक स्कोर है। T20 क्रिकेट में अगर आप सेंचुरीज लगाते हैं तो वो बताता है कि आप किस कद के बल्लेबाज हैं। 126 स्ट्राइक रेट मूनी का, यहाँ पर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं, 10 गेंदों पर 20 रन बना चुकी हैं। दो चौके लग गए हैं रामारक के इस ओवर में, 3 गेंदों में अब तक। और इस बार गेंद का इंतजार किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ना चाहती थी, क्या पैड पर लगी गेंद, इंतजार करना होगा, शायद बल्ले से ही लग के गई है। 37 रन एक विकेट के नुकसान पर यह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। चौथा ओवर चलता हुआ और जहां तक इस स्थिति में वेस्ट इंडीज का सवाल है, उसने 26 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के, पावर प्ले में ही पूरी तरह से वर्चस्व हासिल कर लिया था वेस्ट इंडीज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पावर प्ले में जब आप रन नहीं बना सके, कुल मिलाकर 35 रन बनाए, लगातार डॉट बॉल्स खेली, तो फिर आपके लिए मुश्किलों की दावत आप खुद दे चुके थे। इस बार रक्षात्मक तरीके से रोका, जरूरी नहीं कि आप हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक लें। और लिचफील्ड पहली गेंद पर स्ट्राइक ले रही थी, लिचफील्ड का जहां तक सवाल है अपना 36वां मैच खेल रही है, 140 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि आक्रामकता में कोई कमी नहीं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाला बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। चार ओवर समाप्त हुए और रन बने 39 एक विकेट के नुकसान पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: 10 runs of the last over, that was the productivity, and it was Beth Mooney everywhere. She never, you know, hesitated playing those shocks.

0: bowler is concerned. Even the wicket keeper, she also said yes, take the review. And so their two reviews are still intact. The Australians will have to rethink now. Don't go for indiscreet stroke play. Don't throw caution to the wind just because your run rate is more, just because you think that you may be winning the match. You never know. As here is Matthews now bowling over the wicket to the right-hander. That ball played onto the back foot, waited for the ball, short of a length, played on, misfield at the mid-wicket region, eventually picked up at the deep mid-wicket, and the batters have taken advantage to cross over for a single, taking the score up by one more. But one thing one must say very, very carefully, that, you know, no match is over till the last ball is bowled. Go back to the World Cup 1983, that Indian score of 183, West Indies probably underestimated and lost that match. So 44 for the loss of two wickets in 4.5 overs. Litchfield was out for four in the same very over, and off the fourth delivery, just about 6 runs given so far. Good bowling by Matthews. Last delivery, and the left-handed Mooney just tucks it away, playing it on to the onside. The wicketkeeper had to come to the short mid-wicket region, pick it up, take a single. 5 overs gone, and Australia now 45 for the loss of 2 wickets.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: तो पावर प्ले का भी एक ओवर बाकी है और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 45 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट हासिल करना पावर प्ले में वेस्ट इंडीज की निश्चित तौर पर सफलता है, लेकिन चूंकि उनके पास इतना बड़ा स्कोर नहीं है जिसे उनके बोलर्स इस सफलता के बाद भी आसानी से डिफेंड कर सकें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ये क्रिकेट है और यहाँ पर आखिरी गेंद तक आप कह नहीं सकते कि मुकाबले का परिणाम क्या होगा। क्लैक्सटन अब आई हैं गेंदबाजी के लिए। 6th ओवर पहली गेंद, टारगेट है 126 का, शॉर्ट गेंद, और इस गेंद को गैप्स का इस्तेमाल किया, बढ़िया निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए।
0: जेंटल लुकिंग स्ट्रोक, एंड दिस इज क्लैक्सटन्स फर्स्ट ओवर इन दिस वर्ल्ड कप। If you bowl that kind of a delivery, Sanjay, which is short enough, so short that the batter can at ease pick up that one and just about play it down using the pace of the ball for 4 runs.
4: Pehli game thi, shayad game ki lambai par us tarah se niyantran nahi le payi. Lekin yahi mauke hote hain batters ko kisi bowler ka confidence todne ke liye. Claxton, 6th over ki dusri game, ardhashatak ke nazdeek pahunch rahi hai. Australian batters, कुल मिलाकर 6 चौके और 1 छक्का अब तक लग चुका है इस पारी के अंदर। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जब विश्व कप जीता था तो पेरी ने विनिंग स्ट्रोक लगाया था चौका, और वही पेरी आज भी अपनी टीम के साथ यहां मौजूद।
0: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मूनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मूनी के पास और उस तजुर्बे का यहाँ पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका, और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर 4 दिया, दूसरी गेंद पर 4 दिया, और ये 3rd गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है अब तक, अगर आप देखें तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं, और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद, और जब आप इतनी विड देंगी तो ये 4 लगेगा। बैक पर पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए।
5: ये लगा आभा का चौका।

0: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम,
1: very cleverly puts it across and uses the pace of the ball there and extends the bat to her left, far away from the body, in control of the shot and just plays it very late and the ball squeezes through the gap. That is a very well placed shot.
0: Claxton काफी खर्चीली साबित हो रही है, अब तक 3 चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। आए हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगी? उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। 1 और 4।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: So 6 was gone, 63 for 2, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the 2 most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had 2 half centuries and Mooney had 1 half century this particular series, so they are in a perfect mode to strike, and why not?
0: बिल्कुल, खास तौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी, ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं, तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
1: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज़ द ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीस 2 बैटर्स मूनी एंड पेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
0: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप 5 के 5ों मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये 6ठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता
1: हो। एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन देयर गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा सैनी सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63 for 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन्स ऑफ 4s एंड 6, सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a 6, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic cricket. They haven't played more often than not across the line. They have selected the right shot, maybe over the 30-yard fielders, or picked up the gap well and played with a certain level of accuracy and commitment.
0: निसंदेह तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की। अब देखना होगा कि फाइनल में कौन पहुंचता है, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड, और उन दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। 2010 पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 7वीं बार वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर ये टूर्नामेंट को जीतते हैं, खिताब जीतते हैं। और तमाम जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हैं सब में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन का उनका सिलसिला जारी।
1: एंड इफ इंग्लैंड विंस, आई एम सेइंग अज्यूमिंग, then it will be another women's ashes repetition. And if South Africa comes in and they play against Australia, Australia has already defeated South Africa once in this tournament, being from the same group. So one must say that it's going to be a contest either way. But England has really done well for itself this entire tournament. And if England and Australia clash, I'm sure it's going to be a marquee kind of a match in the final. It's going to be a great crowd catcher. So 6 matches, 8 wickets for Elia Eleni.

0: shot, but well picked up there at backward point. So while this conflict goes on, so the halfway mark has been reached as the next delivery. Once again, the fielder there is Stefani Taylor at the backward point region and picks up no runs taken. We are 63 for 2, and Shama just reminds me that it's halfway through. Another 63 more runs, and that will take them to the finals once more. But the West Indies will have to do something really out of the skins if they have to bring in some kind of positivity, which now looks slightly diminishing with each run scored. As here is Aline coming into bowl over the wicket to Perry. Perry of the backward strikes. The ball goes into the extra cover region. There's a fielder there who picks it up. Joseph, and no runs taken. The West Indies have a reason to worry. Obviously, if you just put about 125 on the scoreboard and see the difference in batting styles, they were struggling with the strokes, trying to play more often than not across the line, whereas Australians are very disciplined in the stroke play as well. Shot selection is very good. As here is Aline bowling, another back of the length, and the batter goes on the back foot and thumps the ball into the mid-wicket region. Once again, the captain comes, Matthews picks it up, and allows not even the thought of a single on that occasion, and the score still remains. So well, Australia looking confident. They have maintained the momentum. They're making sure that they move in a very structured way. They don't have to commit harakiri. They don't have to manufacture a stroke or play indiscreet cricket. They just have to pace their innings properly, and they will cross over that 125. Here is Aline bowling in the next one, and this time she once again bowls a slow delivery, and the batter very unable to strike. And what a wonderful over so far. The best of the overs from West Indies, Aline. Five dot deliveries, and if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over, and a T20 to have a maiden over, obviously not at this time, because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Aline comes into ball over the wicket to the right-handed Perry, who's on one of six balls of next, the last delivery, and this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single, obviously not a maiden over, and that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट।
5: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64 for 2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः पेरी को, और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस बार ऑफ स्टंप टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती, दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी

0: जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए 66 पर 2। फ्लेचर को लगाया गया है, फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली, कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67 2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेम को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफ़ी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
1: 71 for 2 एंड 7.4 ओवर्स। फ्लेचर हुज गॉट 4 विकेट्स फ्रॉम 5 मैचेस, बट फॉर द मोमेंट द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द बैटर साइलेंस्ड। You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6. So another batter with a very, very devastating kind of a strike rate.
0: The Fletcher अब तक कुल मिलाकर 7 रन दे चुकी हैं उनकी ये गेंद। इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हल्का सा शफल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, इकलौता रन, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश। रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती हैं। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ 29 गेंदों पर, वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। वक्त पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73 2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी, और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेम को लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास, कोई रन नहीं।
1: 73 for 2 and they're cruising except for that one over which almost went as a maiden. Perry was playing those 5 deliveries as dot ball, and thereafter, immediately after that over, she went back. She was uncomfortable. Some minor niggle around, as here is Ellen coming into bowl over the wicket. Straight run up and balls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side. And crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get 4 more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a

0: very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians, who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket. And that's width offered, and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region. The ball rushing to the fence, cruising past the field of 4 runs.
1: बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे 4 रनों के लिए.
0: व्हाट अ वेल प्लेस शॉट, दैट वाज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द पिच एंड एलिन कुडंट बिलीव इट. ऑब्वियसली इफ यू ऑफर दिस काइंड ऑफ अ विड्थ, हु इज गोइंग टू स्पेयर यू. That was almost like a hit me delivery, as here is she running in away from us over the wicket. Almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at wide-ish long off region, picked up there. But in the process, they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single, but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end. So the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46, and those 4 runs will take her to the score of a half century. A higher score this season had been 74 not out. As here is the next delivery, which is right outside the off stump, plays it down into backward of point. The ball picked up there and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Munisar. Of course, she couldn't do much with the ball. As here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries. As Ellen comes in and bowls the last delivery, wide outside the leg stump, and the wicketkeeper misses. That's wide, and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up. So that's 2 runs, but then a wide. That was a completely offline, rank bad delivery. The keeper misses, and lucky that the fielder was out there, and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia because they are not in a great hurry. Of course, they want to complete the process as soon as possible, not linger on and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs, need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery, strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder. So dot delivery, 7 runs of the over, 81 for 2 after 9 overs, Australia.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
4: जानिए आधा के बारे में. यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ले. जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: दसवें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर. फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए. लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया. जहां तक मूनी का सवाल है, मूनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई. गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लटने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं. टी20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का

0: इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए एक
1: ये लगा आभा का छक्का
2: और ग्रेट शॉट एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस यूजिंग and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
0: To badhiya stroke aur ek bada sixer. Aaj match mein bahut zyada sixer dekhne ko nahi mile, mujhe lagta hai ki Australia ka dusra ya zyada se zyada teesra chakka hoga shama is samay. बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से, एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सेस, 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइटेड गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
0: Austin ke bahar lagatar vitti hai Fletcher ne aur uska bharpoor istemal kiya hai. Gardner ab 9 gendon par 19 run bana chuki hai. एक बार फिर फ्लाइट, लगातार फ्लाइट करा रही, लेकिन अगर आप स्टंप पर फ्लाइट कराएं तो चलिए उसको रोकने में आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल कुछ था इकलौते रन के लिए, हर गेंद पर रन देने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्रीज ओवर में आई है फ्लेचर की, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 32 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर, 46 रन बना चुकी हैं मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेम को मोड़ दिया, 1 रन लेना चाहती थी लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन, दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को, इकलौता रन और ये आखिरी गेम थी। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: has won, Perry has won, Taylor won, Dunkley won, and Mooney. This is the half century she's got for the first time here. As here is the first, the third delivery from Matthews over the wicket, tries to spin it across and plays it onto the own side to the mid-on region, and picks up a single on that occasion, and the score reaches 99 for 2. So second half century for Mooney. That will certainly bolster her confidence and give her the much required energy to enter into the finals. As here is she bowling around the wicket, changes the line of attack for the left-hander, and this is driven into the extra cover region. The fielder will miss it, and that's four runs. All efforts by the fielder there to pick up that ball, and that was Deandra Dottin, and a boundary, four runs.
1: Ye laga abha ka choka.
0: The Australian batters absolutely professional in their way of looking at it. So the 100 runs coming in 10.4 overs, whereas the West Indies got the 100 in 17.5 overs. That's the difference. 7 overs clearly the difference, as the next delivery from Matthews played onto the offside, gently tucked in away by Mooney, and crosses over for a single, taking the score up to 104 for the loss of 2 wickets. So this partnership has already yielded 40 runs of 26 deliveries, and both these are still going strong. They've played some very authentic bona fide cricket, not making any obvious errors. They're selecting the right shots. The next delivery, which is ball short and a bit of bounce onto that one, shoulder height, and the right-handed Gardner plays it down into Joseph, standing there at short fine leg, picks up a single to end up the 11th over. Australia now 105 for the loss of 2 wickets. Mooney 55, Gardner 22.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: 12वें ओवर की अब शुरुआत हो रही है और गार्टनर 22, मूनी 55, दोनों सॉलिड तरीके से इस विकेट पर अब टिके हुए हैं। कोई ऐसा लगता नहीं कि अब मुश्किलों का दौर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुकाबला तकरीबन फाइनल में दस्तक देने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पैरों पर गेंद थी स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद वहाँ पर फील्ड होती, अलेने के हाथों दौड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज़ को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्टनर 23, मूनी 55, और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ बॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी, लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदे बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए, और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता, क्योंकि हेनरी वहां मौजूद, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था, और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए

0: क्वालिफाई नहीं कर पाया, बल्ले के निचले हिस्से से लगा, लेकिन रन जरूर मिलेंगे यहां पर, एक रन की गुंजाइश थी, लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला अब उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे, तो उसका असर यहाँ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
1: सर्टेनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन, 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर, एंड द स्कोर नाउ रीचेस नेल्सन एट 111 विद दैट सिंगल जस्ट टक्ड अवे ऑन साइड, एंड ग्लासगो द फील्डर एंड राम हैरक गिविंग अवे 6 रन्स ऑफ 5 डिलीवरीज, अ बेटर ओवर फ्रॉम हर कंपैरेटिवली, बट नाउ ऑस्ट्रेलिया जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम winning this match. Here's the next delivery from Vantarek, plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here is the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra cover region, picked up, and the batters... Mooney has crossed over for a couple of runs, taking the score of hers to 59 and the score to 113 for the loss of 2 wickets. Slowly but steadily, Gardner and Mooney taking Australia to the step closer to another finals. They won 6 of them in the T20 format, and entering the finals once again, and to face the winners between the England-South Africa match in the second semi-finals. 13 runs of 47 deliveries. Now you can see the equation reverse. How easy that's going to be, because they got wickets in hand. Second delivery of the fresh over, and that's been played onto the own side to the backward square. Before the ball's picked up, the batters have comfortably crossed over for a single there. So runs are coming in at ease. They're picking up the gaps well. They're playing some daring looking shots, and I've seen most of the shots are in the right place and not to the fielder. The batters are executing the strokes to perfection. Shot selection seem to be pretty good. Okay, they're playing in front of the square of the wicket, using footwork, playing late, or pulling or cutting the balls with so much of perfection. And still a few more runs before Australia gets to win. Henry, the bowler. The partnership in the meantime of 35 deliveries, 50 on the scoreboard. The partnership between Ash Gardner and Beth Mooley, and both of them making sure that they torment the bowlers and kept on denying any wickets. As here is Henry over the wicket bowling in, and that's a full toss outside the leg stump. Rank bat delivery played onto the onside to the back of the square, and before the fielder could come and pick it up, the batters have easily scrambled for the second run as well, and that takes the score up 2 more. And reaches up to 116 for the loss of 2 wickets in 12.3 overs. And at this rate, I think talking about 20 overs is a far-fetched dream for the West Indies. Maybe another 2 to 3 overs. That's what they required to get the winning runs on the scoreboard. Target 126, the 116. 10 more runs to go. 60 to Mooney, 26 to Gardner. 10

0: the ongoing ICC presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहां तक वर्ल्ड कप फाइनल्स की बात है, वहां पर एक टीम तो तय हो गई, ऑस्ट्रेलिया. आज बहुत ही डोमिनेंट जीत, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहां आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हैली मैथ्यू, डॉटिन, इनको स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने, कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: Right, and Beth Mooney, since you just spoke about her, put up an exceptional knock today. 36 balls, 61 runs, which included 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125, we all knew, were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
3: Absolutely, because there was no first up. I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you are up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team there's a difference between us.
1: Gee.
3: And the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: Aap teeno se hi ek sawal, Ravindar ji, aaj player of the match kaun banega?
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है, बॉलिंग में तो ज्यादा दो उसमें उन्होंने 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में, मुझे लगता है मुनी की चांसेस लग रहे हैं.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, विच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूँ एश गार्डनर हो सकती है क्योंकि दो विकेट लिया है और नॉट आउट रही है और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
2: मुझे संकट में डालती है.
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
2: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50, बेथ मॉनी ने 50 करा है, तो
1: और विकेट कीपिंग भी तो की है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
2: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मॉनी को बोलती हूँ.
0: राइट, ओके. क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है. क्या आपको ऐसा लग रहा है आशा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है, जिसको शायद कोई भी ना हरा पाया?
2: हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम,
0: या फिर साउथ अफ्रीका.
2: हाँ, अभी तो चलिए, हाँ वो तो गेम अभी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा 2 तारीख को ही करेगा. पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज का भी मैच उन्होंने जो खेला है, तो उनकी जो सारे, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटिंग है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है, सबने दिया है. बॉलिंग में भी देखिए आप या फील्डिंग में भी देखिए, हाँ एक दो कैचेस उनसे भी छूटी हैं, बट ये है कि उनकी जो साइड है वो एक, अगर आप वेल, मैं एक बिल्कुल, मतलब पैक्ड है कि बैटिंग भी है उनके पास, ऑलराउंडर भी है उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं. तो जैसे बेथ मॉनी, और इवन सब फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे अगर आप बेथ मॉनी की बात करें या एश गार्डनर की बात करें या पैरी की बात करें, तो सारे अच्छा कर रहे हैं. किम ग्राथ हैं जो बॉलर हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है.
0: राकेश, योर टेक ऑन इट, दैट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस लुक इनविंसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम?
3: Yes, but they are yet to play the home team. And where you have conditions which are a little

0: फिटनेस में तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर ध्यान नहीं दिया जाता। और फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को, तो
1: नहीं भले ओडीआई टेस्ट हो, फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब?
0: नहीं थी।
1: आज है,
0: आज T20 है, तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती, मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है, जो फिट है। सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे, अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे? अब आप देखिए, कैच बनानी पड़ती है, कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको कैच बनाना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा। तो एफर्ट तभी मारेंगे ना जब आप फिट है। T20 इतना फास्ट गेम होता है ना, उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना, बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है, कहाँ पे बॉल आ रही है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है।
1: तो कोच साहब से पूछते हैं, सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से?
2: देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है, तो अच्छे बड़े अच्छे फील्डर्स भी कैच छूट सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं, आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, मैं देख उनको सुना, मैंने पढ़ा भी, देखा भी है, वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं, उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में उनके साथ ही चिपक जाती है। तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है।
1: राकेश, हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे थैथेली खोल कर सूरज की तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में?
3: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं, उनकी आदत है, उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, ऐसा नहीं है, बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है, फिंगर्स बाद में आती हैं, आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले। हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है, उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले, जो थंब है वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके, हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली, तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें। इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है, और अगर आप वही चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जैसे ट्रेन किया जाता है उसी हिसाब से चलता है। उसी चीज ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था, वेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है, हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक जमाने में, हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे। मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे, मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ, आबिद अली, कुसोलकर, इन लोगों के हम नाम ले सकते थे, बाकियों के नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग। स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे, आउटफील्ड नहीं होते थे हमारे पास फील्डर, और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था। इन्होंने अभी कहा कि 400-400, 500-500 कैचेस लेते हैं, अजहरुद्दीन का जमाना ले लेते हैं 90s का, जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को, वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था, एंड ही वांटेड ऑल दोस कैचेस, और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा हो,
4: राइट,
3: कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा हो, मतलब ऐसे थे, इनकी ट्रेनिंग मेथड्स अलग होते थे। लेकिन हाँ, आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है, तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
4: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ? बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एक ही जीते थे 2016 का एडिशन। What does it speak of the West Indies cricket now?
3: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They're only playing T20 cricket at best. That's why their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning those big ones. So their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash trapped, you know, association, doesn't have that kind of money. The sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them, they don't come here with a sponsor, they come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
1: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par. Hello, namaskar ji.
5: जी नमस्कार सर, खैरियत है?
1: जी बिल्कुल खैरियत है, आप अपना नाम बताइए।
5: जी सर, मेरा नाम मोहम्मद हमरान बेग है, मैं अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश।
1: क्या सवाल है आपका?
5: जी सर, मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, ऐसी क्या खुसूसियत उनके अंदर खासियत है जिसकी वजह से जो बाकी टीमों में नहीं है, कि बड़े मोर्चे में वो आगे निकल जाते हैं, बाकी टीमें पीछे रह जाती हैं? खासतौर से मैं अपनी इंडियन टीम के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सुविधाएं भी

0: ज्यादा है, खिलाड़ी भी ज्यादा, उसके बावजूद क्या कमी रह जाती है आखिर?
1: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
2: इंडियन टीम जैसे
3: क्वेश्चन में रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम, जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर? ये हमें आसानी से हरा देते हैं।
4: देखिए, अफ्रीका के इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे तीन कैचे छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग आपके पास अच्छे

0: जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे तीन कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग फील्डिंग और फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग में आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं।
1: पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने।
2: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया। बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों को हमसे और अच्छा हो गया है। तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है। तो वैसे ही फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अगर हम यहां से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक। ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड। आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
3: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहाँ कंडीशंस में ज्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है। इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। न्यूजीलैंड और यू नो साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
4: ओके, रवि आपके पास आती हूँ। चलिए, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आम तौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगी?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के भी लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही। अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छे तरह, लॉरा जब बैटिंग करती हैं तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती हैं, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला। एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं। इसी को
1: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवा तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
2: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे ही नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में, एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को, माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज़ क्या, मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई, तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस, उनको लगा T20 है बस। तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना, वो मैच निकाल लेगा।
4: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू,
0: एडवांटेज इंग्लैंड का, नो डाउट
3: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी टीम मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन टीम की जब बात करते हैं, बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफ़ी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ ज़रूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है।
4: और आशा,
2: मैंने बोला ना, जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन, वो जीतेगा,
4: क्योंकि टीम दोनों में नहीं दे रहे हो,
2: नहीं दूंगी
1: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं, वो चाहे वुमेन क्रिकेट हो, मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े

0: खिलाड़ी
1: जी।
0: और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
1: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परमेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम। और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफ कोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 29। बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
0: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, आप एनी प्रेडिक्शंस?
1: आई थिंक इंडियंस विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू विन,
0: स्पेशली आफ्टर डिफीट विद आयरलैंड।
1: नो, दे वोंट लेट दैट हैपन बिकॉज़ द कंडीशंस आर डिफरेंट, बट वेरी चैलेंजिंग टेस्ट फॉर इंडिया।
0: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
1: शुक्रिया।
2: And on that note, thank you to all our listeners for joining in. This is me, Sakshi Mandwal, and Amit Arora saying goodbye, but also giving a heartfelt thank you to our technical team, Jayaram, Aniruddh Gupta, Nagendra Kumar Patil, Prasoon Kumar, our production team, Swati Kapoor, Tanmay Bhatt, Vidwan Vas, and our producer, Shahnawaz Khan, the team, the people, the men, and of course, all of us who bring you the shows back to back and also the commentary. Thank you so much to all our listeners for tuning in. This is Amit Arora and Sakshi Mandwal saying good night, goodbye.
3: Player of the match. अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
4: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

तुम्हारे प्यार में बेकरार होके चले, तुम्हारे प्यार में बेकरार होके चले, शिकार करने को आए थे, शिकार होके चले। 10:35 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपके रजा के साथ।

अच्छा, अगर गौर से देखें ना तो फिर यही तो खूबसूरती है उस मोहब्बत की, या फिर यूं कहिए कि इस मोहब्बत का ही ये असर है कि शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है, और मजे की बात ये कि जानते बूझते हुए ही ऐसा हो भी जाता है और उसे कोई एतराज भी नहीं होता। अचानक कहीं दिल में कोई हल्की सी खलिश महसूस होने लगती है जो पहले नहीं थी, वो खलिश जो अपने साथ उस एहसास और उस डर को भी साथ ले आती है जो कहीं इस दिल से प्यार ना हो जाए इस बात से डरता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे आपके कहने से तो अगर ये बातें हो जाती मोहब्बत की तो फिर क्या ही था, सब कुछ सबके इख्तियार में होता, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, इसीलिए शायद उस खलिश के साथ साथ वो डर भी साथ साथ आता है।

ये खलिश भी आपको तब महसूस होती है जब आप मोहब्बत के फेर में होते हैं। यकीन मानिए, जब मोहब्बत का सुरूर चढ़ता है ना, तो बस इसका असर दो प्यार भरे दिलों को ही हो सकता है। उस वक्त दुनिया के रंग और नज़ारे जैसे एक अलग ही तरीके से आप महसूस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चांद सितारे रोज़ नहीं आपको दिखते या रोज़ नहीं मिलते, लेकिन जब आप मोहब्बत के फेर में होते हैं तो नज़ारों में, फिजाओं में, बहारों में, सब तरह

एक अलग ही रंग, एक अलग ही रंगत होती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग नजर आता है, जिसे हम प्यार, इश्क, मोहब्बत कहते हैं। फिर भले ही चाहे हम इस बात से इनकार भी कर दें कि हमें मोहब्बत की जरूरत नहीं, लेकिन सच पूछे तो कहीं ना कहीं ये चाहत हर दिल की होती है कि कोई तो हो जो उससे बेपनाह मोहब्बत करे, कोई तो हो जो इससे जो जिससे वो कहे कि हाँ आओ और आकर मेरे साथ इस मोहब्बत को पूरा करो, मुझे अपने गले लगा लो, और फिर वो जो मोहब्बत का एक दौर है ना, उसे हम जिए। हालांकि इस बात को सिर्फ हम ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कई बार आप जिंदगी में उसको उतारा भी होगा कि कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद आती है, कई बार जिसे आप बेहद चाहते हैं या जो आपके लिए बहुत ख़ास होती है, आप उसे दुनिया से छुपा कर बचा कर भी रखना चाहते हैं, सहेजते हैं उसे ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे, और फिर चाहे वो आपकी मोहब्बत हो या कोई और कीमती चीज़। लेकिन मुझे लगता है कि बात जब मोहब्बत की आती है ना, तो उससे कीमती, उससे प्यारा एहसास तो यकीनन कोई और हो ही नहीं सकता, जिसे आप दुनिया की नज़रों से बचा कर छुपा कर रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा।

रात के 10:56 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगले घंटे भी हम चाहते हैं कि आप रहें हमारे साथ, क्योंकि अगला घंटा है बेहद खास, क्योंकि आज भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत को लेकर अगले घंटे में आपके साथ रहेंगे। जब बात संगीत की आती है, उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं की आती है, तो यकीन मानिए हर बार जब उनका नाम आता है तो आप उनकी धुनों को गुनगुनाते से कभी रुकते नहीं हैं। कौन है वो अजीम शख्सियत, हम जानेंगे अगले घंटे में। बस आप मेरे साथ भी बने रहें, दिल से इल्तजा गुजारिश आपसे।